मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। इस समय हमारे शुरू की घड़ी में 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज

0: गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण के साथ और ईश्वर के स्मरण के साथ श्रद्धा, समर्पण और विश्वास। कहते हैं प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। एक बार किसी ने पूछा भगवान से, मैं कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तो खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दी। बस हो गई पूजा। तो ईश्वर को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सिर्फ सादगी, सरलता और समर्पण की आवश्यकता है।

ये संसार मोह माया का घर है और ईश्वर एक सच्ची राह दिखाने वाला हमारा मार्गदर्शक है। कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो, वो तुम्हारे जगने से पहले माफ कर देगा तुम्हें। और ईश्वर की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, एक ऐसी रास्ता है जिसमें चलकर हम अपने बुरे कर्मों के फल को नाश कर सकते हैं और अच्छे कर्मों के फल को संचित कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। और उनकी कृपा सदैव आपके अच्छे कर्मों के साथ आप पर बनी रहती है, न केवल आप पर बल्कि आपके संतान पर, आपके परिवारजनों पर, उस हर व्यक्ति के ऊपर जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए आप ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हैं। और इस भक्ति को दिखाने के कई सारे मार्ग हैं, आप अपने अनुसार उस मार्ग को चुनकर ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं।

0: भक्ति रस की धारा में कुछ और गोते लगाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। स्वागत है आपका एक बार फिर भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। श्रोताओं, प्रकृति वो किताब है जो ईश्वर ने स्वयं लिखी है, और उस प्रकृति के संपर्क में जब आप आते हैं तो निश्चित रूप से उस परमात्म शक्ति के दर्शन होते हैं। आप नदियों की कलकल में ईश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं, आप प्रकृति की

0: ये जो शुद्ध हवा है उसमें उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, और जो पेड़ों की परोपकारी प्रवृत्ति है उसमें आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास समय हो, आप प्रकृति के संपर्क में जाएं, उसका संदेश आप तक पहुंचेगा। आप सिर्फ ध्यान थोड़ा सा उस प्रकृति के संपर्क में आकर के करेंगे तो निश्चित रूप से उसका संदेश, उस ईश्वर की दर्शन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और इसके लिए आपको करना सिर्फ एक काम है, समर्पण भाव के साथ प्रकृति के संपर्क में कुछ देर बैठें, और वो सबसे बेहतर समय होता है प्रातःकाल का समय। प्रातःकाल 5 से 6 के बीच में यदि आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो खुली हवा में बैठ जाएं, किसी वृक्ष के साए में बैठ जाएं, घास के ऊपर चलें, निश्चित रूप से आपको एक अलग ही अनुभूति होगी और पूरे दिन आप उस भक्ति के संचार को अपने मन में और मस्तिष्क में महसूस करेंगे। आइए सुनते हैं एक और भक्ति रचना।
1: दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। धन्य था वो राम राज, धन्य था वो राम राज। एक संत अयोध्या का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे आता है। ये वही सरयू नदी है जिसमें भगवान राम ने जल समाधि ली थी। उसी सरयू मैया को अयोध्या का दुखड़ा सुनाता है और कहता है, सरयू मैया, तेरे जल में ही राम समाये थे, आज अयोध्या रूपी मेरे देश को राम की बड़ी आवश्यकता है।

ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपके मन में शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करें कि इस संसार में कोई दुखी ना हो और हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो कि गलती से भी किसी को कष्ट पहुँचे। हमारे मन में शुद्धता हो, पवित्रता हो, तभी ईश्वर की कृपा मिलती है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें, कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना और इतनी मेहरबानी रखना कि हमारे किसी भी कर्म से किसी को कोई भी कष्ट ना पहुँचे।

हे प्रभु, मुझे अपने आप में कुछ यूं बसा लो कि ना रहूं जुदा तुमसे, खुद से तुम हो जाऊं। इसी भावना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है विचार बिंदु कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जयप्रकाश नारायण के विचार।
1: श्री जयप्रकाश नारायण में शारीरिक और नैतिक साहस, बौद्धिक ईमानदारी तथा अपने राष्ट्रवासियों के लिए ऐसा प्रेम था जो सारी मानवता को एक परिवार मानता है। सार्वजनिक जीवन में, पद और व्यक्तिगत जीवन में भौतिक सुखों की अवहेलना उन्होंने जानबूझकर की थी। वे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते थे। उनका विचार था कि व्यक्ति को आत्मकल्याण के लिए आत्माभिव्यक्ति का जितना अधिकार होगा, लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ बनेगा। किंतु व्यक्ति का दृष्टिकोण नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। उसका नैतिक स्तर ऊंचा होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करने लगेगा तो समाज में अराजकता पैदा करेगा अथवा डिक्टेटरशिप को जन्म देगा। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण नहीं है, अन्य लोगों के हितों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए परस्पर त्याग की भावना आवश्यक है। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति गांधी या विनोबा बनकर हर चीज का परित्याग नहीं कर सकता, फिर भी हमसे जो भी बन पड़े स्वार्थ रहित होकर हमें करना चाहिए। सामूहिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन उचित नहीं। ऐसा सामाजिक जागरण ही स्थायी हो सकता है, साथ ही लोकतंत्र का भी उचित आधार हो सकता है। सदाचारी मनुष्यों का निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जन्म से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। मानवता कुछ नैतिक नियम निर्धारित करती है और ये नैतिक नियम ही नैतिक विषयों का रूप ले लेते हैं जो हमें मानवता की ओर ले जाते हैं। अतः हमें व्यक्तिगत जीवन और आचरण पर जोर देना ही होगा। जीवन भर जमीन के टुकड़े के लिए रक्त की नदियां बहा देने वाले और अन्याय के लिए दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेने वाले समाज के सामने उन्होंने विनोबा द्वारा चलाए गए भूदान की स्पष्ट तस्वीर रखी थी। दान का अर्थ किसी को देना नहीं बल्कि मिलकर बांटना है, भूमिहीनों के बीच भूमि का वितरण करना है। ये सब प्यार से होना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं। भूदान हृदय परिवर्तन का, विचारों व जीवन मूल्यों के लिए नया वातावरण बनाने का नया आंदोलन है। इसमें संपूर्ण कृषि क्रांति के बीज निहित हैं। हिंसा और रक्त विहीन एक ऐसी क्रांति जिसमें बाह्य समाज परिवर्तन और आंतरिक मानस परिवर्तन एक साथ होंगे। यद्यपि वर्तमान परिस्थिति में ऐसे मार्ग पर चलना सरल नहीं, क्योंकि अनैतिकता के बीच नैतिक जीवन जीना कठिन होता है। स्वार्थी मन को समझाने के लिए महत्तर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। किंतु उनका विचार था कि जब चारों तरफ से लोग किसी हितकारी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो दुर्बल चरित्र वालों के लिए भी ऊपर उठना आसान हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध नैतिक आचरण का एक लोकव्यापी रूप उभरने लगता है। अतः जनता को जगाने का कार्य करना ही होगा। इसके लिए वे नई पीढ़ी का आह्वान करते हैं। इस नई पीढ़ी को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने चरित्र की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। युवक युवतियों को अनुशासनबद्ध होना होगा, अपने आचरण को कसौटी पर रखना होगा, तभी आम जनता उनसे प्रभावित हो सकेगी। इस प्रकार श्री जयप्रकाश नारायण के विचार मनुष्य को हर दृष्टि से एक सच्चा इंसान बनाने की राह दिखाते हैं।
0: अभी आप जयप्रकाश नारायण के विचार सुन रहे थे। इसके साथ ही विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं ललित कुमार वर्मा से अरविंद कुंवर की बातचीत, जंगली बैगन में टमाटर की ग्राफ्टिंग किसानों के लिए वरदान।
1: किसान भैया आ रहा देखा खेती किसानी में कम समय में अधिक आमदनी और फसलन में विभिन्न तरह के जो बीमारी हो जाते इसे बचाव भरे किसान भैया आ रहे किस विधि से खेती करें आज यही सब विषय में जंगली बैगन में टमाटर की ग्राफ्टिंग किसानों के लिए वरदान यही सब जानकारी दे बदे अपन स्टूडियो में आए बैठे ललित कुमार वर्मा जी जो कि सुवाट्स नैनी एग्रीकल्चर संस्थान प्रयागराज से आए बैठे। भैया आपके बहुत बहुत स्वागत बैठे भैया
2: जी। उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाई एवं बहनों को मेरा सादर नमस्कार।
1: भैया सबसे पहले ही बतावें कि ग्राफ्टिंग का होता है।
2: देखिए किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्राफ्टिंग में दो विभिन्न गुणों वाले पौधे
1: अच्छा।
2: या दो विभिन्न प्रजाति के पौधे
1: जी।
2: या दो विभिन्न किस्म के पौधों को
1: अच्छा,
2: जब हम काट कर
1: हाँ,
2: एक ही पौधों में जोड़ते हैं
1: अच्छा,
2: तो उसे ही ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इनसे जब दो अलग अलग तरह के पौधों को काटेंगे और उनको जोड़ेंगे
1: अच्छा,
2: तो जोड़ने से दो अलग अलग तरह की सब्जियां या दो अलग अलग तरह के किस्म
1: अच्छा,
2: या दो विभिन्न गुणों वाले पौधे या दो विभिन्न गुणों वाली सब्जियां हमको प्राप्त होंगी इसे ही ग्राफ्टिंग कहा जाता है।
1: अच्छा,
2: आपको बता दूं कि किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्राफ्टिंग में दो तरह की चीज हम यूज करते हैं
1: अच्छा,
2: पौधे जिनको एक को कहा जाता है मूलवृंत
1: अच्छा,
2: और एक को कहा जाता है सायन।
1: अच्छा,
2: मूलवृंत क्या रहता है जड़ वाला पार्ट रहता है किसी भी पौधे का जो जड़ वाला पार्ट रहता है भाग रहता है उसे मूलवृंत कहा जाता है और एक ऊपर भाग होता है पौधे के ऊपर भाग उनको हम सायन या सांकुड़ डाली कहते हैं। तो ये दो तना भाग जिसमें हमने फल फूल और शाखाएं बनेंगी उन्हें हम सायन बोलते हैं सांकुड़ डाली। तो ये बेसिकली ग्राफ्टिंग कहलाता है।
1: अच्छा, तो भैया कौन विधि की जाती है
2: ये ग्राफ्टिंग ये क्या होता है इनमें बहुत सारी विधियां होती है ग्राफ्टिंग की अलग अलग सब्जियों में ग्राफ्टिंग करने के लिए तो उनमें हम क्या करते हैं अलग अलग विधि होती है। तो टमाटर में स्प्लाइस ग्राफ्टिंग ये मेथड होती है, कद्दू वर्गीय सब्जियाँ होती हैं उनमें ग्राफ्टिंग की। तो सारे सब्जियों में अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग की विधि हम अपनाते हैं। ये ग्राफ्टिंग जो है टमाटर में होता है, बैगन में कर सकते हैं, मिर्च में अपना सकते हैं, आलू में और विभिन्न जो कद्दू वर्गीय सब्जी है जैसे खीरा हो गया, तोरई हो गया, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया आदि विभिन्न सब्जियाँ इनमें हम ग्राफ्टिंग अपना सकते हैं।
1: अच्छा, तो भैया ऐसे फायदा होता है?
2: इससे फायदा ये है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान भाई हैं वो ज्यादातर जागरूक उतने नहीं हैं जितना होना चाहिए क्योंकि जानकारी की अभाव में वो खेती करते हैं।
1: अभी तक भैया पुरानी विधि से
2: पुरानी विधि ही अपना रहे हैं वो जानकारी उनको नहीं रहती बहुत सारी चीजों की जानकारी। तो इसीलिए हमने आपके पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जिला है जिनमें कई जगह ऐसे है जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है और ऐसे बहुत सारे जिला है जैसे आपका सोनभद्र हो गया, आपका गाजीपुर हो गया जहाँ पे बहुत कम बारिश का एरिया हुए हैं। तो ऐसे जगहों में हम टमाटर की अगर खेती कर रहे हैं तो टमाटर में क्या होता है अगर जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे टमाटर लगाएंगे तो वो टमाटर 3 से 4 दिन में मर जाएंगे अगर रेगुलर बारिश हुआ तीन से चार दिन तक। तो इसीलिए हमने ग्राफ्टिंग एक नया विधि लाया। अगर हम ग्राफ्टिंग से टमाटर को लगाते हैं ग्राफ्टिंग करके तो आपके 3 से 4 दिन खेत में जल भराव की भी स्थिति रहेगी तो उस स्थिति में भी आपका टमाटर नहीं मरेगा, सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं पौधा। दूसरा चीज ये बेनिफिट मिलेगा इससे कि जो कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पे बारिश नहीं होता तो 25 दिन तक अगर बारिश नहीं हुआ तो हमको 8 से 10 दिन में किसान भाई क्या करते हैं खेतों में पानी देना सिंचाई देना चालू कर देते हैं। लेकिन हम अगर टमाटर को इफ ग्राफ्टिंग विधि से लगाए हैं तो उनमें अगर 20 से 25 दिन तक भी हम पानी नहीं देते सिंचाई नहीं करते तो भी हमारा पौधा मरेगा नहीं।
1: भैया ये तो बड़ी अच्छी बात बड़े मतलब पानी की बचत होगी,
2: पानी की बचत हो जाएगी इससे। ये सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश के किसान है जो सूखे एरिया है जहाँ पानी की समस्या है उनके लिए बहुत बड़ी वरदान है इसीलिए इसमें एक वरदान छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उसको ग्राफ्टिंग विधि से ही लगा रहे हैं टमाटर को। दूसरा सबसे बड़ी खास बात यह है इनमें कि जब हम इस टमाटर को लगाते हैं तो उनमें जड़ में बहुत सारी बीमारी लगती है, वो बीमारी मृदा जनित बीमारी होती है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और वो बीमारी हमारे मिट्टी के माध्यम से जड़ में फैलती है और जड़ से पूरे फसल को चौपट करती है।
1: अच्छा, तो भैया ये बतावें कि ग्राफ्ट

0: ग्राफ्टिंग किन किन सब्जियों में किया जा सकता है?
1: ग्राफ्टिंग आपके टमाटर हो गया,
0: हाँ
1: बैंगन हो गया,
0: हाँ
1: मिर्च
0: अच्छा।
1: हो गया, आलू हो गया, आपके कद्दू वर्गी सब्जी में खीरा हो गया, तोरई हो गया, लौकी हो गया,
0: हाँ
1: तरबूज, खरबूज इत्यादि सब्जियों में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं।
0: अच्छा, जैसे आप बताओ बटिन, किसान
1: जी
0: भैया अगर ये विधि अपनाइए तो अच्छा फायदा होए।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: भैया ये बताएं, जंगली बैगन का होता है
1: देखिए
0: एकरे
1: जंगली
0: बारे? हाँ कुछ बताओ।
1: जंगली बैगन क्या होता है, जो बैगन हम लगाते हैं खाते हैं वो बैगन क्या है, खाने वाली बैगन है। लेकिन इसके अलावा क्या होते हैं, जंगलों में या खेतों में या जो बाड़ी रहती है गांव में, किसान भाई भाई के यहाँ बाड़ी बेला होती हैं, उनमें बैगन की कुछ ऐसी प्रजाति उगी रहती हैं जिनको खाने
0: अच्छा,
1: लायक नहीं रहता,
0: जंगली
1: जिनमें
0: बैगन।
1: फल भी लगते हैं लेकिन वो बहुत कड़वा रहते हैं। और उनमें आप देखना, जो नॉर्मल हम किसान भाई बैगन लगाएंगे ना, तो वो बैगन में 2 फल 4 फल मिलेंगे, लेकिन
0: अच्छा
1: वो जो बैगन होगा उनमें आपका 100 200 फल मिलेंगे, एक एक गुच्छे में 50 50 फल मिलेंगे।
0: अच्छा अच्छा
1: तो वो जो बैगन रहते हैं उनको हम जंगली बैगन बोलते हैं,
0: अच्छा
1: उनको टर्की बेरी बोलते हैं, जिसको गांव में हम लोकल भाषा में भफकटिया बोलते हैं लोग,
0: अच्छा भैया।
1: तो उनका नाम है फोलेनम टोरवम। वो बैगन का खास बात ये रहता है जंगली बैगन का कि उनमें उनकी जो जड़ें रहती हैं बहुत अंदर तक जाती है,
0: हाँ भैया
1: तो इसीलिए टमाटर में बीमारी नहीं लगती, पहला चीज़।
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: जड़ें अंदर जाने की वजह से क्या होता है कि उनमें जो बीमारी लगना था वो नहीं लगा। दूसरा चीज़ ये हुआ कि उनमें जो पानी है उनको अवशोषित करके रखती है, इसी
0: अच्छा
1: कारण हमको 20 से 25 दिन तक पानी भी नहीं देंगे तो हमारी जो टमाटर है वो मरेगा नहीं।
0: अच्छा
1: तीसरा
0: अच्छा
1: खास बात ये होता है जंगली बैगन में कि ये बहुवर्षीय रहती हैं, अगर
0: अच्छा
1: एक बार हम लगा दिए हैं तो 20 साल 5 साल 10 साल तक ये पौधे आपको
0: अच्छा
1: उसके ठूट या कोई ना कोई
0: हाँ
1: बैगन देखने को मिलेगा ही वहाँ आसपास। तो इसीलिए हम जंगली बैगन का यूज़ ग्राफ्टिंग के लिए करते हैं टमाटर में,
0: अच्छा
1: जिससे क्या होता है हमको ये बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है
0: हाँ लंबे समय तक
1: लंबे
0: दे।
1: समय तक।
0: अच्छा
1: हम जो
0: भैया।
1: किसान भाई है क्या, टमाटर लगाएंगे तो 2 बार 4 बार तुड़ाई करेंगे, उसके बाद उनसे हमको टमाटर नहीं मिलता।
0: हाँ भैया।
1: लेकिन अगर हम जंगली बैगन के जड़ में टमाटर के शाखा को
0: हाँ
1: लगा के हम खेती करें तो
0: हाँ
1: उससे क्या होगा, हमारी जो टमाटर है जहाँ 2 से 4 बार हम तुड़ाई कर रहे थे वहाँ 8 से 10 बार हम तुड़ाई करेंगे। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है,
0: हाँ
1: जो 2 बार टमाटर या 4 बार तुड़ाई करते थे वो अब 10 बार टमाटर की तुड़ाई
0: हाँ
1: करेंगे,
0: हाँ भैया, मतलब कहा है, मतलब कम लागत में अधिक
1: अधिक
0: मुनाफा।
1: मुनाफा।
0: ये बढ़िया विधि। तो भैया ये बतावें, मतलब सब्जियों में ग्राफ्टिंग जरूरत कहाँ पड़ती है?
1: सब्जियों में ग्राफ्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है, मैंने आपको उसी समय एक बात बताया था कि टमाटर में क्या लगती है, बहुत सारी बीमारी लगती है,
0: अच्छा
1: ये मृदा जनित बीमारी होती है जो हमारे मिट्टी के माध्यम से जड़ में फैलती है और पूरे फसल
0: अच्छा
1: में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करती है, चौपट करती है हमारी पूरी फसलों को।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: किसान भाई को इसकी जानकारी नहीं रहती, तो इसीलिए क्या करते हैं, हमने जंगली बैगन का जो जड़ को लेके
0: हाँ
1: उनके ऊपर टमाटर को लगाते हैं। अब जड़ वहाँ पे रहा ही नहीं टमाटर
0: हाँ
1: का,
0: हाँ
1: जड़ रहा नहीं तो बीमारी लगेगा ही नहीं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसीलिए इनसे बचत हो जाती है। तो
0: अच्छा
1: इसीलिए हम ग्राफ्टिंग में जंगली बैगन का यूज़ करते हैं।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो भैया ये बताएं, किसान भाई जो है कौन विधि से टमाटर लगावें और कौन विधि से ग्राफ्टिंग विधि से टमाटर की खेती करें, एक के बारे में कुछ बताएं भैया, जिससे इनका अधिक मुनाफा होए।
1: अच्छा, इनमें जंगली बैगन से जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो इनके बेसिकली एक उद्देश्य है
0: हाँ
1: या महत्वपूर्ण क्यों है ग्राफ्टिंग करने के, इसी चीज़ पे हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं, आपको बताते हैं। जो
0: हाँ
1: जंगली बैगन है
0: हाँ भैया
1: जिनको हम टर्की बेरी बोलते हैं,
0: अच्छा
1: तो इनसे जब हम लगाते हैं तो उनमें क्या होता है, उत्तर प्रदेश की आपको बताया कि बहुत सारी एरिया है ऐसे
0: अच्छा
1: जहाँ पे
0: अच्छा
1: बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है
0: अच्छा अच्छा
1: और कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है,
0: बिल्कुल
1: तो ये जो बारिश होती है और कुछ एरिया सूखा हुआ है,
0: हाँ
1: तो ये दोनों एरिया जो हैं इन पे हम जब ग्राफ्टिंग विधि से लगाते हैं तो
0: अच्छा
1: क्या होता है, मैंने इन बताया कि इनकी जड़ें क्या रहती है, बहुत ज़्यादा अंदर तक जाती है जिससे पानी को अवशोषित करके रखती है,
0: अच्छा
1: जिनसे
0: अच्छा
1: जो सूखा एरिया है उस जगह पे हम टमाटर लगाते हैं तो 20 से 25 दिन 30 दिन तक अगर हम सिंचाई नहीं करते तो भी हमारा टमाटर मरेगा नहीं,
0: अच्छा
1: ये
0: भैया
1: बहुवर्षीय हो गया।
0: अच्छा अच्छा
1: दूसरा चीज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा
0: अच्छा
1: बारिश हो रही है तो ऐसे एरिया पे अगर हम इस विधि से करके लगा रहे हैं ग्राफ्टिंग करके, तो ये जब ग्राफ्टिंग करके लगाएंगे तो जहाँ पे नॉर्मल टमाटर सामान्य विधि से जो टमाटर लगाते हैं
0: हाँ
1: किसान
0: भैया
1: भाई, वो आपका एक दिन के बाद मरना स्टार्ट हो जाएगा, अगर खेत में जल भराव की स्थिति हुआ या वर्षा महीना हुआ, वर्षा का महीना आया पहली फीस उस समय बारिश हुआ तो किसानों का जो टमाटर है वो मरना चालू हो जाता है।
0: हाँ
1: अब देखना खेत में पूरे टमाटर मरना स्टार्ट हो जाते हैं,
0: अच्छा भैया
1: तो अगर हम इससे लगाते हैं ग्राफ्टिंग करके तो हमारा टमाटर 3 से 4 दिन खेत में अगर पानी भरा रहेगा तो उस स्थिति में भी हमारा टमाटर नहीं मरेगा,
0: अच्छा
1: तो ये
0: भैया।
1: किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद की चीज़ की बात है
0: तो भैया जो बताया ना आपकी ग्राफ्टिंग वाला, तो मान ली बैगन में टमाटर की ग्राफ्टिंग करें,
1: ग्राफ्टिंग।
0: तो मैंने सिर्फ टमाटर फरे कि बैगनों फरे?
1: नहीं, इनमें देखिए क्या होता है, जब बैगन से हम टमाटर की ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसकी जो विधि होती है उनमें 2 तरह की होती है,
0: अच्छा

0: है जिनको हम सिंगल या एक विधि ग्राफ्टिंग बोलते हैं, एक होता है डबल, जिसको डबल ग्राफ्टिंग बोला
1: अच्छा
0: जाता
1: भैया।
0: है। सिंगल ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक पौधा लेंगे हम बैगन का, तो उनमें उनका जड़ लेंगे, और
1: अच्छा
0: एक पौधा लेंगे टमाटर, जिनकी लेंगे हम शाखा बस,
1: अच्छा
0: तो वो दोनों को काट के अटैच करेंगे और लगाएंगे, तो उनमें हमको खाली खाली टमाटर ही मिलेगा। तो इनसे हमको बीमारियों और जो
1: अच्छा
0: बताया ना सेल्फ लाइफ, इन
1: हाँ,
0: चीज़ों से बचत
1: समय
0: होगी,
1: की भी बचत
0: समय
1: होगी।
0: की बचत होगी, ये सारी चीज़ों पे है।
1: अच्छा
0: दूसरा चीज़, जब हम डबल ग्राफ्टिंग करेंगे तो इनमें बैगन की, जंगली बैगन की जड़ लेंगे, और
1: अच्छा
0: एक बैगन की जो खाए जाने वाली बैगन है उनकी शाखा लेंगे, और एक टमाटर की शाखा लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे
1: अच्छा
0: तो
1: भैया
0: एक साइड बैगन फलेगा और एक साइड टमाटर फलेगा।
1: अच्छा,
0: तो ये है अलग अलग चीज़ें।
1: ग्राफ्टिंग के विषय में अच्छी जानकारी दी भैया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जंगली बैगन में टमाटर की ग्राफ्टिंग, किसानों के लिए वरदान। अभी आप सुन रहे थे ललित कुमार वर्मा से अरविंद कुमार की ये बातचीत। इसके साथ ही कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता, गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल।
1: आज की वार्ता का विषय है गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। ये गर्मी का मौसम हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों को बहुत परेशान करने वाला है, इसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम शिशुओं की क्या विशेष देखभाल रख सकते हैं, इस बार पे मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि वातावरण कैसा हो, हमें शिशुओं के लिए एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें कि कम आर्द्रता या नमी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, थोड़ी सी कम रहे और हवादार हो। अमूमन ऐसे कमरों में रखें जहाँ का तापमान 24-25 डिग्री के आसपास बना रहे। आर्द्रता अगर 80-90% के आसपास रहती है तो बहुत अच्छा रहता है, और हवा का फ्लो बना रहे, पंखा चलता रहे या कूलर संभव हो तो कूलर चलता रहे। जो लोग एयर कंडीशनर को अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों के अमूमन देखा जाता है कि वो लोग बहुत टेम्परेचर नीचे गिरा देते हैं, उसके बाद 18-19 पे और फिर कंबल ओढ़ के सोते हैं, ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। कभी भी अपने कमरे का तापमान 24 डिग्री से नीचे ना जाने दीजिए, नहीं तो पंखा जरूर चला के रखें और हवादार कमरे में रहें जिसमें खिड़कियाँ प्रॉपर हों। उसके बाद उस मेन चीज़ आती है कपड़े कैसे पहनाए जाएँ। सब एक शिशुओं का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सूती कपड़े पहनाएं क्योंकि वो पसीना सोखने की क्षमता रखते हैं, फिर वो पसीना उससे उड़ता है तो वो ठंडक प्रदान करता है। पॉलिएस्टर के कपड़े या सिंथेटिक कपड़े इनको ना पहनाएं क्योंकि ये कष्ट देते हैं, और शिशु अमूमन ये बता नहीं पाते कि उनको उससे परेशानी हो रही, सिर्फ रोना शुरू कर देते हैं, फिर उनके रोने का कारण जानना एक सामान्य माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कपड़े हमेशा ढीले ढाले हों, हवादार हों, टाइट ना हो, और उसमें से हवा का अच्छे से आदान प्रदान हो ताकि पसीना उड़ सके और सूख सके, नहीं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है उनके भोजन का ध्यान रखना। ये ध्यान रखें कि अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहा है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सकता है उसको प्यास लगी हो। हम आप सब लोग तो आराम से बता देते हैं कि हमको प्यास लगी है, पानी पीना है। शिशुओं को बताने का तरीका अलग होता है, तो अगर कभी भी बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, रो रहा है, तो पहले पानी जरूर पिलाएं, और अगर भूखा भी है तो भोजन से पहले थोड़ा सा पानी जरूर दें, क्योंकि अगर मुंह सूखा होता है बच्चे का तो जैसे हम लोग बड़ों के साथ है वैसे उनको भी भोजन चबाने में खाने में दिक्कत आती है, तो अमूमन वो उसके बाद भी चिड़चिड़ाते हैं, तो पानी हमेशा पिलाते रहें। और यदि शिशु खेल भी रहा है और नहीं भी मांग रहा भोजन या भूखा नहीं, तो भी आप थोड़ी थोड़ी देर पर 2-2 चम्मच पानी जरूर पिलाते रहें, क्योंकि इसकी वजह से शरीर पर पसीना बनेगा, उड़ेगा, तो शरीर का तापमान सुरक्षित रहेगा।

0: और उसके पेशाब का बहाव भी बना रहेगा ताकि उससे वजह से शरीर के और अवयव जो होते हैं जो बाहर निकलते भी रहते हैं। पानी पे हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ठंडा पानी बच्चे नहीं पीना चाहते बहुत, और या गर्म पानी भी नहीं पिलाना है। पानी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। जहाँ पे अब आजकल लोगों ने आरओ के फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं वो तो ठीक है, नहीं तो आप पानी उबाल कर ले, उबाल के उसको ठंडा होने का इंतजार कीजिए। उस ठंडे हुए पानी को आप में थोड़ा सा फ्रिज का पानी उसमें मिला करके, ताकि सामान्य से थोड़ा अच्छा हो जाए, जिसका स्वाद बेहतर लगे, वैसा करके आप बच्चे को चम्मच से या कटोरी से पिला सकते हैं। सबसे उसके बाद आती है चीज़ की हाइजीन, सफाई सुथराई का ध्यान रखना, क्योंकि इस मौसम में पानी अमूमन गर्मी बहुत रहती है, तो कुछ भी लोग प्यास लगने पे कुछ भी खा पी लेते हैं। तो हमेशा ताज़ा बना हुआ भोजन, ताज़ी कटी हुई सब्जियां, ताज़े काटे हुए फल ही इस्तेमाल करें, रखी हुई चीज़ें ना इस्तेमाल करें, दोबारा गर्म किया हुआ भोजन ना दें, और अगर फल जहां तक संभव हो छिलकेदार फल यूज़ करें, जैसे केला है, संतरा है, जिनको कि आप बाहरी परत है उसको आप छील के निकाल सकते हैं, ताकि जिसमें उसमें जो वायरस बैक्टीरिया या जो भी चीज़ें हैं उनको आप हटा सकते हैं, और अंदर का जो जो फल है वो आपको स्वस्थ तरीके से मिल जाएगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, तेल लगा के मालिश लगाना या पाउडर लगाना या काजल लगाना इस मौसम में जरूर अवॉइड करें जहां तक हो सके, क्योंकि अगर आपने तेल शरीर पे लगा दिया तो वो पसीना नहीं निकलने देगा और शरीर का तापमान बढ़ा देगा और बच्चा चिड़चिड़ाएगा। पाउडर
1: गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता। इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण रूपरेखा आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज शाम 4 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनेगा 7 बजे, आज हम आपको सुनवाएंगे इसका 368वां भाग। फिल्मों से भजन सुनवाएंगे 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनेगा उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन। 12:15 पर सुनाएंगे पंडित डी आर पार्वती कर का दत्तात्रेय वीणा वादन, और रात 10:30 पर सुनेगा गौरी शंकर का क्लेरिनेट वादन।

नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर, जिसमें हम बातें करते हैं आपसे और फेसबुक पर जुड़े अपने श्रोताओं के सुविचार साझा करते हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर सुनवाएंगे पामेला नंदी के स्वर में भजन और गीत। लोकगीत सुनिएगा 10:05 पर और दिन में 2:30 पर। कलाकार होंगे इंद्र प्रताप सिंह, जूही मिश्रा, रश्मि भारतीय, कुंवर सिंह और साथी और संगीता मिश्रा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम 10:30 पर होगा। बोलते नगमे ये विशेष कार्यक्रम 11:30 पर होगा। स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के।

आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में 12:30 पर प्रस्तुत करेंगी मधु कुमार। ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट दिन में 1:15 पर लेकर आएगा प्रतिमा शुक्ला और अभिलाषा श्रीवास्तव की बातचीत हमारा पर्यावरण और प्रीति त्रिपाठी की वार्ता पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। युवाणी कार्यक्रम होगा 5:15 पर आज की प्रस्तुति होगी कहानी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर केंद्रित प्रेरणा पुंज। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे पन्नालाल यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत और मेरी खेती मेरी बात। प्रतिभागी होंगे विमल प्रकाश और रामनाथ सिंह। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम होगा आज की प्रस्तुति होगी शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ। दीप्ति चतुर्वेदी के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर और सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। 9:30 पर लुत्फ उठाइएगा गजलों का कार्यक्रम होगा कहकशा। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। 6:55 होने वाले हैं अब आप समाचार सुनेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। आज आप सुनेंगे इसका 368वां भाग।

सुंदर उपवन में रमण करते हुए भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ने श्री राम के सम्मुख सिर नवाया। भरत श्री राम से कुछ जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं, किंतु उन्हें संकोच हो रहा है। हनुमान उनके संकोच की बात बताकर उसे दूर कर देते हैं। भरत के मन में संत और असंत के लक्षण सुनने की जिज्ञासा है। श्री राम उनकी शंका का समाधान करते हैं। संतों और असंतों की करनी चंदन और कुल्हाड़ी के आचरण जैसी होती है। कुल्हाड़ी का काम है वृक्ष को काटना, किंतु चंदन उसके प्रहार सहकर भी उसे अपनी सुगंध देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होता है, जबकि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर घन से पीटा जाता है। संत विषय वासना में लिप्त नहीं होते। उन्हें दूसरों को दुखी देखकर दुख और सुखी देखकर सुख प्राप्त होता है। कोई उनका शत्रु नहीं होता। वे काम, क्रोध, लोभ और मोह रहित होते हैं। उनका चित्त अत्यंत कोमल होता है। वे सबको आदर और सम्मान देते हैं और स्वयं मान अपमान रहित होते हैं। इसीलिए वे मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है भाभी की चुड़िया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना। संगीत है सुधीर फड़के का।

अगली प्रस्तुति है पुकार फिल्म से लता मंगेशकर और बच्चे की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी की रचना ए आर रहमान का संगीत है।

0: लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित के 24 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित जन भागीदारी आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता निष्पक्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3: प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त, 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही आजमगढ़ बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया।
4: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर, न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।

0: आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
2: इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2,00,000 के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रस्तुत है मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
3: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सारंगी वादन। कलाकार हैं उस्ताद सुल्तान खान। राग है नट भैरव। तो ये सुनते हैं राग नट भैरव में सारंगी वादन। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन राग थय नट भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद जाकिर हुसैन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: विजयलक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: तू शायर है, मैं तेरी शायरी।
2: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov

0: www.radiomirchi.in. हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है।

0: आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग

0: सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर

0: यूविट कूपर भारत की अपने दो रोज़ा सरकारी दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। मोहतरमा कूपर का आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का प्रोग्राम है। वो आज शाम वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि मोहतरमा कूपर का दौरा भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लियामानी हलका और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक वाराणसी एक बार फिर तारीखी बैन-उल-अक़वामी तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। G20 मीटिंगों की कामयाब मेज़बानी के बाद वाराणसी अब आज और कल ब्रिक्स सकाफती ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इस मीटिंग में चीन, ब्राज़ील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया समेत 11 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग सीनियर सिफारतकारों, पॉलिसी साजों और सकाफती माहिरीन को यकजा करेगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: G20 मीटिंग के दौरान काशी के आलमी शोहरत याफ्ता GI टैग वाली मसनूआत की खसूसी नुमाइश मुनक़िद की जाएगी। नुमाइश के दौरान 6 कारीगर 6 मुनफरिद मसनूआत पेश करेंगे जो वाराणसी की गुनागुन दस्तकारी रिवायात की अक्कासी करती हैं। ये मसनूआत काशी के सदियों पुराने फन, कारीगरी और सकाफती विरासत का जीता जागता सबूत हैं। नुमाइश के जरिए गैर मुल्की मंदूबीन न सिर्फ इन मसनूआत की इनफरादियत से वाकिफ होंगे बल्कि मुकामी फनकारों और कारीगरों को अपनी मसनूआत आलमी बाजार तक पहुंचाने का मौका भी मिलेगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में भारत गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नज़रिए के तहत काबिले ज़िक्र यकसर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज कारोबार को आसान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर रोशनी डाली जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने पिछले 12 साल के दौरान कारोबार के नज्म व ज़ब्त से मुतालिक माहौल और कारोबार में आसानी में बेहतरी के लिए कई पायदार इस्लाहात की हैं। साल 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल इख्तरा को परवान चढ़ा रही है जिससे इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की मुमकिन हो पाई है। हुकूमत की कोशिशों से इस साल मार्च के महीने में स्टार्टअप्स की तादाद 2,23,000 हो गई है जो साल 2016 में महज 500 के करीब थी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र के थाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बेसर ने कहा कि रास्त और बरह रास्त टैक्सों में हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात से इक्तसादी इस्तेहकाम आया है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: साल 2016 में शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम ख्वातीन कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अपनी मदद आप ग्रुपों और दिव्यांग जनों को खरीदारी के असल धारे से जोड़ रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जैम पर एक फरोख्त कुनिंदा और कंपनी की CMD कामिनी गुप्ता ने बताया कि जैम का तरीकेकार आसान और शफाफ है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दा और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: इस पांच रोजा चैंपियन

0: चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 जुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुवत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज लगी जबरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिशजदगी वाकई की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेजबान भारत गोवा के मारगांव में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इकतदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमाजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमाजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेस के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर, यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
9: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
8: और ये

0: टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। नमस्कार प्रयागराज के आज के अंक के साथ मैं हूँ शिप्रा श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में।

श्रोताओ, आज के कार्यक्रम की शुरुआत कुछ सवालों के साथ। सवाल मेरा कुछ है आपके साथ खास। क्या आपने कभी थोड़ा सा समय निकालकर खुले आसमान को निहारा होगा या तारों भरी रात के आसमान को देखा होगा? पिछली बार कब आपके कानों में चिड़ियों की मीठी मीठी चहचहाहट, नदी की कलकल और बैलों की घंटी सुनाई दी होगी? कब आपने ऐसा दिन बिताया होगा जिस दिन फोन से दूर होकर किसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर सुकून वाले कुल्हड़ की चाय पी होगी और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी पड़ा होगा? क्या आपको पता है कि जापान में एक टर्म यूज होता है, फॉरेस्ट बेदिंग, यानी पेड़ पौधों की मिट्टी की खुशबू के संपर्क में आना? कब आपने सुबह उठ के महसूस किया कि आपका मन, मस्तिष्क, आत्मा सब फ्रेश फील कर रहे हैं?

क्या आप कह रहे हैं कि आपके ऐसे दिन सपने हो गए? अरे भाई, इन सपनों को कीजिए साकार। मेरी मानिए एक बात, काम करिए कि एक दिन शहर की नीली स्क्रीन से दुनिया चुरा लीजिए और हॉलिडे लेकर के एक लॉन्ग ड्राइव पर सुबह सुबह 5 बजे किसी गांव की ओर निकल जाइए। गांव में किसी अपने से मिलने चले जाइए। नीम या पीपल के पेड़ के नीचे चाय का ढाबा ढूंढिए और वहाँ कुल्हड़ वाली गुड़ की चाय पीजिए। आपको वहाँ जो सुनाई देगा वो होगा कोयल की कूक, बैलों की घंटी और पत्तियों की सरसराहट। नदियों के किनारे बैठ जाइएगा और वहाँ उसकी कलकल ध्वनि सुनिएगा और उससे कुछ गुफ्तगू करिएगा, कुछ बातें करिएगा। मिट्टी, फूलों और फलों की सौंधी खुशबू लीजिएगा और खुले खेतों में जाकर उनका विस्तार महसूस कीजिएगा। जी हाँ, उस विस्तार को महसूस करके फ़र्क आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि शहर की ऑक्सीजन हम खरीदते हैं और गांवों में प्रकृति वो ऑक्सीजन मुफ्त लुटाती है। भाई, ऐसा मैं आज इसलिए कह रही हूँ श्रोताओं कि नमस्कार प्रयागराज के आज के इस अंक से मैं कुछ जानकारियाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम आजकल बेहद खतरनाक संकटों से जूझ रहे हैं, जैसे सांस की समस्या, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। आए दिन अखबार खबरों से पटा पड़ा रहता है। कारण, गाड़ियों की आवाज़, धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित हवा, प्लांट कूड़ा जलाना, इन सब की वजह से रिजल्ट ये हो रहा है कि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब होती जा रही है, जिसकी वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं और हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। गांवों में जहां PM2.5 होता है, वहीं शहरों में 200 से 400 आम बात हो गई है। यहाँ पर एक बात जानना और बनता है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का एक रिपोर्ट जारी हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट के अनुसार पृथ्वी की सुरक्षा से जुड़ी 9 में से 7 सीमाएं पार हो चुकी हैं और अपने शहर का प्रदूषण स्तर तो जनरली 70 से 130 दर्ज किया गया है, जिससे लंबे समय तक बाहर रहने

0: में परेशानी होती है, हमारे बच्चों को सांसों की समस्याएं होती जा रही हैं, हमारे बुजुर्गों की अस्थमा और ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने अपनों को बचाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जब भी मार्केट निकलें अपने साथ कपड़े का थैला लेकर निकलें, और बिजली बचाएं, 5-स्टार गैजेट्स और LED बल्बों का इस्तेमाल करें, निजी वाहनों का इस्तेमाल हो सके तो कम से कम करें, अगर संभव हो तो अगर कम दूरी के लिए निकल रहे हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करिए, और सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, अपने वाहनों की सर्विसिंग समय समय पर करवाते रहें, पोल्यूशन इंडेक्स उसकी चेक कराते रहें।
1: इस पल की धुन तेरी आंखों से मैंने देखा।
0: आपसे बातें अभी और करूंगी, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए आपको ले चलती हूँ एक बहुत ही सुंदर सी म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

जो राय हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दी थी ना, वो आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है, ईश्वरीय सत्ता के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत करेगी। और इस टॉपिक को आज हमने अपने प्रोग्राम में इसलिए शामिल किया क्योंकि हमारे श्रोता जो फेसबुक से जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम में, उनमें दुर्गेश नागिनपुरी, दुर्गेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका ये संदेश है फेसबुक के माध्यम से हमारे लिए कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ये केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सबसे बड़ा उपहार है। यकीनन दुर्गेश जी, हमारा ये कदम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है क्योंकि आजकल बहुत कुछ देखने में आ रहा है कि हमारे बच्चे हमसे दूर विदेशों में बसना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण बहुत शुद्ध होता है, वहाँ पर नियमों का पालन बहुत अच्छे से होता है। आपके साथ हमारे श्रोताओं के नाम जो जुड़े हैं वो हैं दुर्गेश नागिनपुरी, राधेश्याम नागिनपुरी, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज ढाकसे। हमारे दूसरे श्रोता वेद प्रकाश मिधा जी, आपको भी हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। जो संदेश आपने हमसे शेयर किया वो है, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। कर्म के पास न कागज़ होता है न किताब होता है, फिर भी सारे जगत का हिसाब होता है। बहुत ही सुंदर बात। और हमारे कर्म ही आगे आने वाले कल का सृजन करते हैं। आपके साथ जो नाम जुड़े हैं, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मेहर अरोरा जी नमस्कार, आपका संदेश हम शेयर कर रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ। यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें कभी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप ज़रा भी कोशिश नहीं करते

जाते हैं और हार जाते हैं तो उसमें आपकी पूरी गलती है। बिल्कुल सही बात है, हम कोशिश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लाने का प्रयास करें, पर्यावरण को शुद्ध करने की कोशिश करें। बिल्कुल, और आपके साथ जो नाम शामिल हुए हैं पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, वो हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। उत्तम सिंह जंगेल जी जो हमारे परमानेंट लिसनर हैं, कहते हैं कि आंगन का पेड़ घर की शान देता है छाया, आंगन का पेड़ घर की शान देता है छाया, सुख और सम्मान देता है एक पेड़ आंगन में। वाह क्या बात है, आंगन के अलावा अपने पर्यावरण, अपने आसपास के क्षेत्र में भी पेड़ लगाने की मुहिम में आगे आए। आर्यनगर कोहका भिलाई से हमारी ये श्रोता हैं उत्तम सिंह जंगेल, मूरज जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल, अंजलि जंगेल। और अगला संदेश जो हमें मिला है वो है मुकेश कश्यप से। नमस्कार मुकेश जी, जिला मुरादाबाद से आप जुड़ रहे हैं हमारे कार्यक्रम से। आप के साथ साथ जिन श्रोताओं का नाम शामिल करने की हमें अपील की गई है वो हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, सत्येंद्र चंसौलिया, पंजौनिया। नमस्ते जी, आप के साथ जिला जलौना से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम से सुन रहे हैं। और आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहेगा इंतज़ार। अपने कमेंट्स के साथ जुड़िए आकाशवाणी प्रयागराज के पेज से। रामचंद मखीजा जी, वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। साइकिल चालक बने, चालान से बचें, ना हेलमेट की झंझट ना हम डर। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से ये रामचंद्र मजीका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका संदेश बहुत ही काम का है और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आपके सुझाव को मानेंगे। नाना लामसे जी कहते हैं कि हम हर वक्त सुनते हैं और सुनते रहेंगे। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी नाना जी लामसे, मीना लामसे, तेज जय लामसे, हर्षिता लामसे और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सुझावों, अपने विचारों से हमें रूबरू कराने के लिए। नीरा त्रिपाठी जी भी हमारी नियमित श्रोता है। नमस्कार नीरा जी, जिंदगी में असली सफलता हम तभी हासिल करते हैं जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करना सीखते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात और यही संदेश देती है हमारी प्रकृति। और दुर्गेश जी ने भी एक और संदेश भेजा है, प्रकृति हमें सब कुछ देती है लेकिन वो हमसे हमारी भलाई के लिए केवल संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा करती है। बहुत सही बात। नीरा जी का एक और संदेश है कि किताबें सिखाती हैं शब्दों से, ज़िंदगी सिखाती है हालातों से और हालातों की फ़ीस हमेशा महंगी होती है। बहुत महंगी बात कह दी आपने और बहुत ही सोचने वाली बात कह दी और आपकी इस बात से हम बहुत इत्तेफाक रखते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और जिन श्रोताओं ने हमारे पोस्ट को लाइक किया है वो हैं नीरा त्रिपाठी जी, रामचंद्र मखीजा, महाराज कीर्तन, अतुल कुमार गुप्ता, जयश्री गुप्ता, लक्ष्मण देशपांडे, दुर्गेश मोहन, सत्येंद्र चंसौलिया, देवाशीष मजूमदार, शालिनी त्रिपाठी, हल्के जयपाल यादव, मुकेश कश्यप, अरुण कुमार भारती और विष्णु टेलर जी। आप सभी को कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हमारा आज का नमस्कार प्रयागराज अंक होता है समाप्त। दीजिए इजाज़त शिवराज श्रीवास्तव को। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं 102 नॉट आउट फिल्म से अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत के साथ। संगीत है अमिताभ बच्चन का।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। अब आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और अनुराधा पडवाल की आवाजों में आर किरण का लिखा गीत राम लक्ष्मण का संगीत है।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

शिक्षा मित्रों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के लिए उन्हें शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय के साथ कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी आप लोगों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली आए, यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में आप सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों

अब बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधिगणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मई के प्रथम सप्ताह में ही भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान व मध्य

0: अनिदिशन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान और शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वारफेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों में और भी मजबूत बनाया। इस आयोजन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन को रक्षा त्रिवेणी संगम में इस पवित्र संगम की धारा में साकार होते देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में कुल 2,30,121 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के कुल 1,817 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के निर्देशन में 9 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह त्रिवेणी संगम तट पर नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा जनपद के नाविकों को 300 लाइफ जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में कार्य करने वाले नाविकों एवं संगम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लाइफ जैकेट दुर्घटनाओं की स्थिति में जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबोधन के दौरान नाविकों से अपील की कि वे नाव संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग स्वयं करें तथा श्रद्धालुओं से भी करवाएं। यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें और नाव में सवार सभी लोगों के द्वारा जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहन लिया जाए तब तक नाव का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने की। समारोह में जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 11-11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर 21,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि की प्रतीकात्मक चेक पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और प्रदेश स्तर पर सम्मानित मेधावी छात्रों के समारोह का अवलोकन किया गया। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न थीम आधारित वनों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सदस्य सचिव जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया पृथ्वीराज KSB ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 में अलग अलग उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। शासनादेश के अनुसार मिशन छाया, वंदे मातरम वाटिका, महर्षि चरक, औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, अविरल धारक, वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम और कलम जैसे छायादार वृक्षों का रोपण सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाएगा। वहीं वंदे मातरम वाटिका के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर 150 पौधों का रोपण कर

0: विशेष वाटिका स्थापित की जाएगी। बलिया जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य रिपीट जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 32,000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिलाधिकारी ने ब्लॉकवार समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित AMIOS को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में 14 अगस्त तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक और गांव के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी AMIOS को ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने को कहा। साथ ही जनपद के शेष 6,53,615 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जनपद बलिया में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से प्रारंभ हुआ। जनपद में 8,050 प्रगणक एवं सुपरवाइजर कुल 7,005 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में तैनात किए गए हैं जो घर घर जाकर जनगणना 2027 में। अपर जिलाधिकारी जिला जनगणना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जनगणना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्व जनगणना नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर छवि लाल ने बताया कि
1: समस्त श्रोतागणों से निवेदन करता हूं कि वह भी जनगणना में सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 100% सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है समूह स्वरों में देशभक्ति रचना।

0: वर्ष बैंतबाजी।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, बैतबाजी के तीसरे एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह से आपने हमारे बैतबाजी प्रोग्राम को मोहब्बत दी, उसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। सामईन, चलिए अब हम आज की बैतबाजी की तरफ रुख करते हैं। आज की बैतबाजी में जिन दो टीमों ने हमारी दावत पर लब्बैक कहा है, उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से है। इन टीमों की बात करें तो टीम ए में हैं मोहतरम जनाब इम्तियाज अली साहब और मोहतरमा कहकशा खातून साहिबा, और टीम बी में हैं मोहतरमा दरख्शा खातून साहिबा और मोहतरम जनाब यूसुफ आरिफ साहब। आप दोनों टीमों का हमारे उर्दू प्रोग्राम बिलखसूस बैतबाजी में खैर मकदम है। अब मैं इस बैतबाजी का बाकायदा आगाज करता हूँ। आइए, टीम ए के लिए अब मैं अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ता हूँ कि खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, मुझको अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा, और थी शबे तारीख चोर आए जो कुछ थले गए, कर ही क्या सकता था बंदा खांस लेने के सिवा। अलिफ टीम ए के लिए।
2: अजियतों के तमाम नश्तर मेरी रगों में उतार कर वो,
1: वाह,
2: अजियतों के तमाम नश्तर मेरी रगों में उतार कर वो, बड़ी मोहब्बत से पूछता है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है,
1: क्या हुआ है। ये कैसे पढ़े आप, टीम बी।
3: ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ,
1: वाह,
3: ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर शख्स के बस का नहीं प्यारे जाओ,
1: जाओ, वाह।
3: यूं तो मख्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, यूं तो मख्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ,
1: पुकारे।

0: जाओ, वाह।
1: वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं वहां अब नहीं जाने वाला। वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं वहां अब नहीं जाने वाला, कि अक्सर बुलाया बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया उठाकर निकाला।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है टीम बी।
1: उल्टी हो गई सब तदबीरें,
0: हाँ
1: उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया।
0: हाँ
1: उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम
0: तमाम
1: किया।
0: किया अलिफ।
2: अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है,
0: हाँ
2: अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है।
0: जाता क्या है।
2: तू मेरा कुछ नहीं लगता मगर इतना तो बता, तू मेरा कुछ नहीं लगता मगर इतना तो बता, देख के मुझको तेरे जहन में आता क्या है।
0: आता क्या है टीम बी के लिए, आता क्या है ये।
3: ये तुमने जो महकते हुए कुछ शेर कहे हैं, ये तुमने जो महकते हुए कुछ शेर कहे हैं, फिर कूचे जाना से कोई गम मिला क्या। जब हाथ में न शीशा था न सागर था न मीना, जब हाथ में न शीशा था न सागर था न मीना, अगर दिल नहीं टूटा तो फिर छन से गिरा क्या।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई।
1: अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे।
0: वाह वाह वाह वाह, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, या टीम बी के लिए।
1: ये कयाम कैसा हैरा हमें, ये कयाम कैसा हैरा हमें, तेरे ज़ौके इश्क को क्या हुआ। ये कयाम कैसा हैरा हमें, तेरे ज़ौके इश्क को क्या हुआ। अभी चार कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए।
0: वाह,
1: ये
0: ये
1: आशिकी है कैसी, ऐसे जियोगे कब तक।
0: ये आशिकी
1: ये
0: कैसी,
1: आशिकी है कैसी, ऐसे जियोगे कब तक। तरके वफा करो हो मरने के मीर डर से।
0: वाह वाह वाह, डर से ये।
1: यकीनन दिल का आंखों से कोई मजबूत रिश्ता है,
0: हाँ
1: यकीनन दिल का आंखों से कोई मजबूत रिश्ता है, कि दिल को चोट लगती है तो आंसू आ ही जाते
0: आ
1: हैं।
0: ही जाते हैं नून।
2: न हलावते न वो लज्जते न वो जायका न वो चाशनी।
0: बहुत अंदाज अच्छा है माशाल्लाह।
2: न हलावते न वो लज्जते न वो जायका न वो चाशनी, तेरे लाल तर के मुकाबले रहे कद्र लाले यमन गलत।
0: गलत तो वाह।
3: तबीब यूं कोशिश न कर,
0: आहा
3: तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। तबीब यूं कोशिश ना कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की, तू इश्क कर फिर चोट खा फिर लिख दवा मेरे मर्ज की।
0: मर्ज की ये टीमें के लिए ये।
2: यहाँ भी तू वहाँ भी तू, जमी तेरी फलक तेरा, कहीं मैंने पता पाया न हरगिज आज तक तेरा।
0: तेरा टीम बी के लिए अलिफ।
3: इधर आओ तुम्हारी जुल्फ हम आरास्ता कर दें।
0: वाह।
3: इधर आओ तुम्हारी जुल्फ हम आरास्ता कर दें, जो गैसू हम सवारेंगे कभी बरहम नहीं होंगे।
0: होंगे टीम ए के लिए ये।
1: ये खुले खुले से गेसू इन्हें लाख तू सवारे।
0: बहुत खूब।
1: ये खुले खुले से गेसू इन्हें लाख तू सवारे, मेरे हाथ से सवरते तो कुछ और बात होती।
0: कुछ और बात होती टीम बी के लिए।
1: ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती।
0: होती।
1: ये फसाने मोहब्बत पजुबाने दीगरा क्या, ये फसाने मोहब्बत पजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती।
0: कुछ और बात होती। कुछ और बात पे क्या आप लोगों ने जबरदस्त टक्कर दी है। कुछ और बात होती ये टीम बी के लिए।
1: यूं तो रहती है तसव्वुर में तुम्हारी सूरत, यूं तो रहती है तसव्वुर में तुम्हारी सूरत, फिर भी मिल जाओ तो तस्कीन सी हो जाती है।
0: हो जाती है ये टीम ए के लिए।
1: ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है पर ये बतलाओ, ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है पर ये बतलाओ, कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से निहां क्यों हो।
0: निहां क्यों हो। वाह वाह।
1: वफा कैसी कहाँ का इश्क, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ ना ठहरा तो फिर ए संगे दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो।
0: टीम ए के लिए।
1: वो मौज तला तुम क्या समझे, वो लज्जत दरिया क्या जाने।
0: बहुत खूब अंदाज़।
1: वो मौज तला तुम क्या समझे, वो लज्जत दरिया क्या जाने, जो दूर खड़े थे साहिल पर मझधार की बातें करते हैं।
0: मझधार की बातें करते हैं टीम बी के लिए नून।
1: नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में

0: मरने की तमन्ना कोई दिन और,
1: कोई दिन और ए के लिए,
2: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ,
1: आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।
0: एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहत जा मुझको रुलाने के लिए आ,
1: तीमे के लिए आ।
2: अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम भी बुझाने के लिए आ।
1: वाह आ, आ, आ क्या टक्कर हो रहा है इस वक्त भाई, बॉल आपकी पाले में, टीम बी के लिए अलिफ।
0: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा,
1: क्या शेर है,
0: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा,
1: मैं तुम्हारा, टीम ए के लिए अलिफ। ये अमीर आमिर का शायद शेर है,
3: अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता,
1: क्या शेर है भाई, बहुत खूब।
3: अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता,
1: वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता।
4: उससे मत नजरें मिला, चढ़ता हुआ सूरज है वो, छीन कर आंखों से तेरी रोशनी ले जाएगा।
1: वाह वाह वाह वाह, ले जाएगा अलिफ टीमे के लिए।
2: अगर ठुकरा दिया हमको बहुत पछताओगे एक दिन, अगर ठुकरा दिया हमको बहुत पछताओगे एक दिन, किसी को चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है,
1: किसी को चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये टीम बी के लिए।
4: ये और बात है कि जबां खोलते नहीं, ये और बात है कि जबां खोलते नहीं, हम भी जवाब रखते हैं तेरे सवाल का,
1: सवाल का अलिफ टीम ए के लिए।
2: ए मौज बला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं।
4: न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से,
1: वाह, न जाने कितने दिल बन जाएंगे
4: एक दिल के टुकड़े से, वो तोड़े आयना हम आयना खाना बना देंगे,
1: बहुत खूब बना देंगे टीम ए के लिए। ये
2: याद करके अपनी बर्बादी को रो देते हैं हम,
1: वाह,
2: याद करके अपनी बर्बादी को रो देते हैं हम, जब उड़ाती है हवाए तुंद खाके कुए दोस्त।
1: टीम बी के लिए।
0: तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया,
2: इतरा रहे हो आज पहन कर नई कुबा, दामन था तार तार अभी कल की बात है,
1: कल की बात है, ये टीम बी के लिए। अमीरी जब से आई है तो लहजा उसका बदला है, बड़ा ही तुर्श लहजा है, वो लहजा मार देता है। ये
0: वरक वरक तेरी दास्तां, ये सबक सबक तेरे तज़किरे, ये वरक वरक तेरी दास्तां, ये सबक सबक तेरे तज़किरे, करूँ तो कैसे करूँ अलग तुझे जिंदगी की किताब से।
1: ये
3: जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ है।
1: ये टीम बी के लिए।
4: ये कैसा दस्तूरे जुबाबंदी है यारब तेरी महफिल में, ये कैसा दस्तूरे जुबाबंदी है यारब तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबा मेरी।
2: ये मेरी जबा ये गजल नहीं, ये मेरी जबा ये गजल नहीं, मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ, ये मेरी जबा ये गजल नहीं, मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ, कि किसी के अहदे शबाब पर मिटी कैसी कैसी जवानियाँ, कभी आंसुओं को सुखा गई मेरे सोजे दिल की हरारतें, कभी आंसुओं को सुखा गई मेरे सोजे दिल की हरारतें, कभी दिल की नाव डुबो गई मेरे आंसुओं की रवानियाँ।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा शेर है, आंसुओं की रवानियाँ। नून।
0: नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू जुबा आते,
1: कि आती है उर्दू जुबा आते। ये टीमे के लिए।
3: ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने,
1: उम्दा शेर है।
3: ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।
1: ये टीम बी के लिए।
0: ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब,
1: बहुत खूब।
0: ये मसाइल

0: इसको मिसरा राउंड बोलेंगे। हम किसी एक मशहूर शेर का कोई भी मिसरा उला या सानिया देंगे, आपको दूसरा मिसरा लगा के शेर कंप्लीट करना है, कोई भी शेर हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए रेडी है ना?
1: जी
2: जी
1: जी
2: सर।
0: टीम ए के लिए पहला मिसरा है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा?
2: बर्बादी गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बादी गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या
0: क्या
2: होगा।
0: होगा, बहुत ही खूब। टीम बी के लिए तो बहुत ही आसान मिसरा आया हुआ है, ये पढ़ भी चुकी हैं अब, लेकिन मिसरा है तो है। तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
2: तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
0: बहुत ही खूब शेर है और टीम ए के लिए है, बहुत ही आसान मिसरा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
2: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
0: हाँ
2: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी
0: फिर
2: कम
0: भी
2: निकले।
0: कम निकले। टीम बी आपके लिए एक शेर है कि मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।
2: नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती।
0: वाह,
2: नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।
0: बहुत ही खूब। जी टीम ए के लिए है अगला और बल्कि आखिरी, कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर।
3: नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।
0: बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और इस राउंड का आखिरी मिसरा है टीम बी के लिए कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।
2: गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले।
0: जी
2: गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले।
0: चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलशन का कारोबार चल रहा है और बैतबाजी का भी कारोबार चल रहा है। हमारे सामईन बहुत महजूज हो रहे हैं और हमारी इस बैतबाजी का ये आखिरी राउंड भी मुकम्मल हो गया है। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सामईन ये थी हमारी बैतबाजी जिसमें शिरकत करने वाली टीमों का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से था। टीम ए में थे जनाब इम्तियाज अली साहब और मोहतरमा कहकशा खातून साहिबा, और टीम बी में थी मोहतरमा दरख्शा खातून साहिबा और जनाब यूसुफ आरिफ साहब। प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com, kklsurdu@gmail.com। अगर आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप का नंबर है 7991778157, 7991778157। याद रहे इस नंबर पर सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक ही आप अपने पैगाम हमें इरसाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
5: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
6: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
5: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
6: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
7: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पामेला नंदी के स्वर में भजन और गीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में तुलसीदास की ये भक्ति रचना।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ।
1: और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई

0: घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग से 3 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जाँच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का मुकाबला फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा। भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमात्री। आज के कलाकार हैं इंद्र प्रताप सिंह और जूही मिश्रा। आइए सबसे पहले सुनते हैं इंद्र प्रताप सिंह के स्वर में ये लाचारी।

इसी झूमर के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमात्री अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। जिस प्रकार सभी नदियों का गंतव्य एक है, उसी तरह विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता है। आइए सांप्रदायिक एकता का प्रण लें। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है।

0: तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
1: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है, NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहां यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
1: अजी जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहां जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
1: जी
0: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए, क्या सलाह दी जाती है?
1: जी, वहां पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी
1: पहले वहां के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
1: जी
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
1: जी
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
1: जी
0: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
1: जी
0: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजी जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती
0: हाँ
1: हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
1: बिल्कुल याद है।
0: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
1: जी
0: वो खिसकने लगते हैं?
1: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ,
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
1: जी
0: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी
0: आशा है कि आपको ये जानकारी

0: पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
6: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
7: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
6: सर।
7: तुम दोनों आ जाओ अंदर आ जाओ। शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
7: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
6: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
7: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
6: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
7: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
7: और
6: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
7: हाँ, बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
7: बिल्कुल।
6: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
7: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
7: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
6: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
7: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
7: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे

0: ये प्राचीन ग्रंथ है।
1: अच्छा।
0: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
2: जैसे?
0: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
2: वैदिक समूह?
0: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
2: भरत?
3: भरत नाम तो हमने सुना है।
0: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
2: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
0: हाँ।
2: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
2: अच्छा।
0: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
3: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
3: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं। हाँ,
2: ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
0: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा, जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
3: आपने अब तक तीन ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा।
0: हाँ।
3: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
3: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
2: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
3: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
2: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
2: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
2: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
2: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
2: अच्छा।
3: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
2: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
2: ये नाम क्या?

0: क्या है?
1: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
0: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
0: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा।
1: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना

0: बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
1: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता
2: ओहो, तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
1: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
2: हाँ पूछो बेटा।
1: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
2: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं। लेकिन माँ, ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
1: जी
2: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
1: अच्छा माँ, ये लो माँ।
2: ला।
0: कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
1: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे,
2: क्या मिल
1: मिल
2: गया,
1: गया मुझे माँ, माँ ओ
2: क्या
1: माँ,
2: मिल
1: जो
2: गया,
1: सर
2: क्या मिल
1: मैं
2: गया,
1: चाहता था मुझे मिल गया।
0: और
1: हाँ
0: क्या
1: माँ
0: मिल
1: मुझे
0: गया
1: जो
0: भाई,
1: सर, अब
2: क्या
1: तो
2: मिल
1: मुझे
2: गया,
1: क्या
2: सब
1: होगा।
2: क्या हो गया तुम्हें
1: हाँ
2: बेटा,
1: माँ
2: बताओ तो
1: माँ
2: सही, क्या हो गया
1: माँ
2: है?
1: माँ, मुझे उड़ने का तरीका मिल गया।
2: हाँ?
1: हाँ, उड़ने
2: ओफो,
1: का तरीका मिल गया।
0: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
1: स्टीफन स्टीफन माँ माँ
2: हाँ?
1: माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ
2: धुआं?
1: इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है?
2: क्या
1: बताओ
2: उड़ रहा है,
1: बताओ,
2: क्या उड़
1: उसमें
2: रहा
1: क्या
2: है?
1: उड़ रहा है?
2: कुछ भी
1: हाँ
2: तो नहीं,
0: कुछ भी तो नहीं है।
1: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
0: राख?
1: हाँ हाँ उड़ रही है ना।
0: हाँ वो तो है, मगर
1: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
1: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं? मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा। हाँ
0: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते
1: ठीक
0: हैं,
1: है, आओ
0: चलो
1: मेरे साथ,
2: चलो। अरे
1: आओ हम
2: सुनो,
1: देखते हैं।
2: अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे अरे
5: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
6: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
7: हाँ भाई भीड़ तो है,
5: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
7: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: हाँ आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
8: ना जाने क्या करेंगे,
5: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती।
8: अच्छा मजा आ गया, लगता है कुछ हो गया है।
5: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
8: भाई साहब हट जाइए।
6: अरे आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
7: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
6: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
7: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
6: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
7: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
6: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
7: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की

0: मानवीय भाई मानवीय कमाल कर दिया बच्चों ने।
1: ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
2: अरे सचमुच उड़ रहा है सचमुच।
1: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
1: अरे जबरदस्त। अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
2: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
1: अरे
2: देखो,
1: अरे हां हां, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से हो रहा था।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ, आज बातें एक ऐसी अदाकारा की जो रुपहले पर्दे पर आते ही छा गईं, अदाएं ऐसी जिसने सबको उनका दीवाना बना दिया।

जी हाँ श्रोताओं, दिव्या भारती एक ऐसा नाम जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम समय के लिए सुनाई दिया, लेकिन उस नाम ने हम सबके दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी नहीं मिट सकती। जीवन से भरपूर, बच्चों से मासूमियत वाली वो मुस्कान, वो आवाज़ असमय ही गुम हो गई। एक ऐसा सितारा जो अभी चमका ही था कि काले घने बादलों में कहीं छिप गया। ऐसी प्रतिभा जो उन्हें ईश्वर प्रदत्त थी। सहज स्वाभाविक अभिनय और चमत्कारिक व्यक्तित्व की धनी दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। दिव्या बचपन से ही पढ़ाई से दूर भागती थी। पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। जैसे तैसे जुहू के मानिक जी कुपर हाई स्कूल से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई करके उन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। खूबसूरती और मासूमियत तो उन्हें ईश्वर प्रदत्त थी ही। उन्होंने महज 14 साल की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी। मॉडलिंग के जगत में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली हिंदी फिल्म राधा का संगम के लिए गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने साइन कर लिया। हालांकि किसी कारणवश इस फिल्म में बाद में उनकी जगह जूही चावला को लिया गया। उनकी पहली चर्चित हिंदी फिल्म विश्वात्मा का गाना सात समंदर पार तो आपको याद ही होगा, जिसने हर घर में पहचान दिलाई। फिल्म से अधिक इस गाने की और दिव्या भारती के अभिनय को पहचान मिली।

यूं तो दिव्या भारती का फिल्म सफ़र तेलुगु फिल्मों से शुरू हुआ और पहली हिट तेलुगु फिल्म रही वो बिली राजा, जो कि 90 के दशक में आई थी। इस फिल्म की सफलता ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहचान दिलाई और उन्हें द लेडी ऑफ सुपरस्टार कहा जाने लगा। इस अपार सफलता के बाद उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया और लोकप्रियता के आसमान को छुआ। ओम प्रकाश भारती और मीता भारती की स्टार बेटी दिव्या भारती को ईश्वर ने बस थोड़े ही समय के लिए संसार में भेजा था। महज 14 साल की उम्र से शुरू हुआ उनका करियर 19 साल होते होते ख़त्म हो गया।

हिंदी फिल्म विश्वात्मा जो कि साल 1992 में आई थी, उसके बाद कुछ और हिंदी फिल्में जैसे दिल का क्या कसूर जिसका गाना भी आपने सुना, शोला और शबनम जिसमें उनके साथ थे गोविंदा, दीवाना, जान से प्यारा, दीवाना जिसमें शाहरुख खान की वो डेब्यू फिल्म थी, जान से प्यारा फिर एक बार गोविंदा के साथ, दिल आशना है, बलवान सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म, दिल ही तो है गीत और दुश्मन जमाना, रंग, क्षत्रिय और शतरंज रहीं जिसमें रंग और शतरंज फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में सब कुछ हासिल कर लिया था। वो फिल्मों में टॉप की एक्ट्रेसेस में से गिनी जाने लगी, यहाँ तक कि उनकी तुलना लोग श्रीदेवी से करने लगे थे। अब आप उनकी शोहरत का आलम ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि महज 14 साल की उम्र से एक छोटी सी लड़की फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करती है, वो भी बिना किसी गॉडफादर के। उनकी खूबसूरती, उनकी मासूमियत, उनका वो चुलबुलापन उन्हें सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और यही कारण था कि वो फिल्मों में बहुत कम उम्र में और बहुत ही आसानी से चली आई। जबकि कहा जाता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत संघर्षों के बाद ही कुछ काम मिल पाता है, लेकिन इन्हें ईश्वर ने सब कुछ सर

बहुत ही सरल और सहजता से दे दिया। वो आईं फिल्मों में चमकी, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है, उन्हें फिल्मों में असफलता का भी मुंह देखना पड़ा और असफल भी हुई बहुत सी फिल्में, लेकिन उन्हें और उनकी एक्टिंग को हम सब ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। 18 साल की उम्र ही थी जब दिव्या भारती ने अपने परिवार के विरोध के बाद फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से 10 मई 1992 में शादी कर ली, और ये उस वक्त की बात है जब उनका करियर पीक पर था, और वो उस समय तक जबकि अभी महज 3-4 साल ही हुए होंगे कि वो सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उस समय उन्होंने जा कर के शादी कर ली। शादी करने के पीछे भी ऐसा उनके कुछ इंटरव्यूज़ में आता है कि उनका बहुत से हीरोज़ के साथ नाम जोड़ा जाने लगा, जिससे परेशान होकर के उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि वो साजिद नाडियाडवाला से 2 साल से संपर्क में थी और दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। बहरहाल इस शादी को उन्होंने छिपाए रखा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको करियर में बहुत ऊंचाइयों को छूना है तो आपको अपनी शादी या अपने किसी भी रिलेशन को छिपाना ही पड़ता है, और यही उन्होंने भी किया। मगर किसे पता था कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए अचानक ये हादसा हो जाएगा। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या मुंबई के वर्सोवा में अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिर गई। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिव्या भारती एक ऐसी अभिनेत्री थी जो अपनी उपस्थिति भर से रुपहले पर्दे को चमत्कृत कर देती थी। भले ही वो हमारे बीच कुछ समय के लिए रहीं, लेकिन उस समय की स्मृतियाँ आज भी हम सब के दिलों में जिंदा हैं।

दिव्या भारती को 1993 में तेलुगु फिल्म चिट्टेम्मा मोगुडु के लिए विशेष जूरी पुरस्कार के लिए नंदी पुरस्कार और 1993 में ही हिंदी फिल्म दीवाना के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया।

दिव्या हमारे बीच आज जिंदा नहीं है, मगर उनकी अभिनय की जो कौशलता है वो हमारे बीच है। उनकी खूबसूरती, उनका वो चुलबुलापन, उनकी वो मासूमियत हम सबको हमेशा याद रहेगी, और उनके गाने हमें हमेशा कभी हंसाएंगे तो कभी रुलाएंगे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती पर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

0: बोलते नगमे वंदना जी।
1: जी नेहा जी,
0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
1: नेहा जी, आपको भी हमारा नमस्कार और सभी सुनने वाले दोस्तों को भी हमारा नमस्कार।
0: दोस्तों, देखिए ना, ये जो अपनी धरती है, अंबर है, ये हवाएं हैं, जब शायद हम किसी को मिस करते हैं, अगर हम इनसे बतियाएं तो मुझे लगता है पत्ता पत्ता भी बात करता है ना। आपको कभी लगा?
1: नेहा जी देखिए, जो प्रकृति के करीब होते हैं, प्रकृति के एक एक स्पंदन को अपने स्पंदन के साथ उसका समागम होते हुए या उसे समाहित होते हुए देखते हैं, एक एक धड़कन जो प्रकृति की धड़कती है, चाहे वो नदियों का पानी हो और चाहे कलरव करते पंछी हो या फिर पत्तियों की सरसराहट हो, हवाओं का गुंजन हो, आप देखेंगे कि उसी तरह से हमारा हृदय भी धीरे धीरे धड़कता हुआ सा महसूस होता है और धीरे धीरे कब वो लयबद्ध हो जाता है प्रकृति की तालबद्धता में, पता ही नहीं चलता।
0: और पता है, ये जो आप कह रही है ना कि कब प्रकृति के लय के साथ हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं और पता नहीं चलता, उसी समय जन्म लेने से लगते हैं कुछ शब्द, वो शब्द जो हमारी भावनाओं को वो बताते हैं। और जब कई हृदय उन शब्दों को देखते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पूरा जहां साथ में गाने लगता है ना।
1: नेहा जी, जब आप ये बात कह रही हैं कि जब प्रकृति को हम देखते हैं तो शब्द जन्म लेते हैं, लेकिन शब्द से पहले एहसास जन्मता है।
0: हाँ,
1: जज्बात की पैदाइश होती है
0: जी।
1: और हम फिर तलाश करते हैं कि इसकी अभिव्यक्ति किस माध्यम से करें, चित्रों के माध्यम से करें कि शब्दों के माध्यम से करें। और अगर कोई कवि है, शायर है, गीतकार है, तब फिर कहना ही क्या है, वो तो ऐसे ऐसे शब्द वहां पर पिरोता है, उसकी लड़ियां कि जैसे लगता है कि बहुत खूबसूरत बगीचा फूलों का सज गया हो या कोई बर्फीली जगह है, वो फिर उसमें तरंग महसूस होने लगती है। तो कहाँ आप ले जानी, पहले ये बताइए।
0: ये जो वादियां है ना, आप कहते हैं कि क्लू मत दीजिए, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं चाहिए। प्लीज, हाँ, मैं आपसे एक विटर्स लेना चाहती हूँ अभी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत

0: लंबी भूमिकाओं भी हो गई है।
1: रोजा फिल्म आई थी,
0: अरे वाह,
1: मणि रत्नम जी की
0: जी,
1: प्यारी सी मधु और अरविंद स्वामी हैं उसमें हीरो के तौर पर। जब भी वो गाना सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ए आर रहमान साहब जब इस गाने का म्यूज़िक बना रहे थे तो वो वादियों के बीच बैठे हुए थे अपने साजिंदों को लेकर के, तभी शायद इस तरह की जो धुन सुनाई पड़ती है वो बिल्कुल इसी तरह बनी है। सुनते चलें क्या?
0: चलिए।

0: सच में हम वादियों में जाते हैं तो ये जो दिल की कली है कैसे धीरे धीरे से खिलने लगती है ना
1: जी।
0: हम बिल्कुल अपने हाथ खोल देते हैं, अपने सारे रिश्तों को उस पल में जीना चाहते हैं, क्योंकि पता है वहाँ पे प्रकृति अपने पूर्ण रूप में होती है। उसका जो सौंदर्य होता है बहुत सुंदर होता है, और हम में से बहुत सारे ऐसे मानव हैं जो प्रकृति से उस तरह से लगाव नहीं रखते। तो जहाँ छेड़छाड़ नहीं की गई है, जब आप वहाँ पर धूप को छनते हुए देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आह, ये गुनगुनाहट जो है वो आपके लिए ही बनी है, और शायद वो मन के दरवाज़ों को खोलती है और फिर एक नए एहसास को जन्म देती हुई सी मालूम पड़ती है।
1: और जो कश्मीर की खूबसूरत वादियां हैं, घाटियां दिखाई जा रही हैं
0: जी,
1: तो नदियों की जो कलकलाहट है, जो आस्था का एक रूप होता है, इतना सुंदर सुरम्य वातावरण है, पवित्रता की छाओं में अगर कोई व्यक्ति वहां पर गया है तो पवित्रता का, कोमलता का एहसास उसे छू ना जाए उसके अंतर मन को, ये हो ही नहीं सकता। और ये देखिए किस तरह की बतकही की जा रही है आगे
0: जी,
1: वो हम अपने दोस्तों तक साझा करते हैं।

0: केएस चित्रा जी ने और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने इस गीत के जरिए बिल्कुल कमाल कर दिया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने जिस तरह से गाया है इसको मीठे से अंदाज में कि छेड़े धुन कोई प्यार की रागिनी, मतलब कितना चढ़ाव है और अचानक से केएस चित्रा बिल्कुल ठहर के गाने लगती हैं। शायद एआर रहमान साहब केएस चित्रा जी एसपी बाला सुब्रमण्यम के ही वश में था कि एक बार हम चढ़ाव की तरफ जा सकते हैं और तुरंत धीरे से शांत हो सकते हैं, दिल की बात हम हौले हौले भी कर सकते हैं।
1: और देखिए नेहा जी, आपने एआर रहमान साहब की बात की है, कमाल से भरा हुआ जो उनका संगीत है। और कहते हैं कि संगीत फलक पर सर्वथा नई संगीत ध्वनियों को लाकर एक नई दिशा उन्होंने दी है। और ये कहना पर्याप्त नहीं है कि रहमान के संगीत में जैज, रॉक, फंक, पाश्चात्य और भारतीय शास्त्रीय तथा लोक संगीत सभी का रंग आपको उसमें नुमाया नजर आएगा। तो ये देखिए, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि

0: दोस्तों, आप जब इस गाने को गौर से देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि मधु ने बिल्कुल प्लेन साड़ी परिधान के तौर पर पहना है पूरे गाने में। वो सिर्फ रंग बदलता है और उनकी खूबसूरती उस परिधान में बहुत निखर करके आती है। कहते हैं ना कि सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल मुफीद है। और जबकि इस चित्रा कहती हैं कि देखो, ये संग नहीं टूटना चाहिए, और ये जो पलकों के तले मोहब्बत पल रही है, पाई जा रही है, ये बहुत ख़ास है, इसको क्यों ना बंद कर लें ताकि ये कहीं खुल ना जाए और बिखर ना जाए। ये कितना सुंदर एहसास है ना, कुछ चीज़ों को पकड़ लेने का।
1: शब्दों की जो आँच है वो बर्फीली वादियों में जिस तरह से नुमाया हो रही है, गर्माहट पैदा कर रही है, वो एहसास जो जन्म ले रहा है नेहा जी, उस एहसास के जन्मदाता हैं गीतकार महबूब, उन्हें हम भला कैसे भूल सकते हैं। शब्द शब्द मानो बोल रहे हों,
2: ये

0: जी।
1: अब अगले गाने की ओर चलना है या नहीं?
2: चलिए, मैं तो पीछे पीछे आती हूँ नेहा जी।
1: नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग साथ में चलें सब लोग। और पता है, साथ चलने का जो आनंद है ना, वो मुझे लगता है किसी हीरे, सोने या बहुत बड़े महल से कहीं अधिक है। जब हम इस साथ को मिस करते हैं तो फिर वो जो एक अकेलेपन का एहसास भी जागता है, और तब समझ में आता है कि वो जो साथ है वो कितना कीमती है। ऐसा कुछ गाना बना क्या?
2: नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे गीत बने हुए हैं कि जो इस भाव को प्रदर्शित करते हैं।
1: अच्छा, ओ।
2: बिल्कुल। और देखिए, जब आप साथ की बात कर रही हैं कि साथ में साथी है, साथ साथ चल रहा है, लेकिन उस साथ चलने की जो आहट है वो सुनाई नहीं दे रही है, तो सारी फिजाएं वही होती है, हवाएं भी वही होती है, सामने खुला सा समुद्र भी वही है, लहरें भी वही है, लेकिन कहीं कुछ लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, कहीं कोई प्यास है अंदर ही, और एक उदासी चेहरे से उतरकर पूरी फिजाओं में जाकर वो फैल जाती है, और तब एक गीत का जन्म होता है। गीत ऐसा कि जब हम उसे सुनते हैं, जैसे कि अभी म्यूजिक सुन रहे हैं हमारे श्रोता
1: जी,
2: और उन्होंने कयास लगाना शुरू कर दिया होगा और उन्होंने समझ भी लिया होगा कि ये गीत क्या कुछ कहने जा रहा है और ये किस फिल्म का गीत है। तो चलिए, उनके साथ हम भी घुल मिल जाते हैं। और आपने कहा है ना कि कौन सा ऐसा कोई एहसास होता है, ऐसा कोई गीत बना है
1: जी,
2: तो ये देखिए, सुनिए और बताइए कि क्या ये वही गीत है जिसकी तलाश आप कर रही थी।

0: इस गाने को। फजा भी है, हवा भी है रवा रवा। जरा देखिए रवि जी ने सलमा आगा की आवाज को संगीत में कैसे बांधा है ना, बहुत भावुक होती हैं, थोड़ा धीरे गाती हैं, और उसी तरह से उन्होंने म्यूजिक का साथ दिया है उस आवाज के साथ। मुझे एक और बात लग रही थी वंदना जी।
1: जी क्या?
0: इसमें वो बात है जिस वजह से सलमा आगा से जब दीपक परासर कहते हैं कि ये शर्तें हैं और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, वो उनकी बातों में आती हैं, निकाह हो जाता है, और फिर वो बुलंदियां पाने के लिए, नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पत्नी वो शायद भावनाओं को पकड़ कर बैठ जाती है। वो चाहती है कि जो वादे किए हैं आखिर वो वादे कहाँ गए, क्यों नहीं पूरे हो रहे। और फिर लोग कहते हैं कि ये औरतें जो हैं बहुत तिलस्मी होती हैं, पता ही नहीं चलता उनके मन में क्या चल रहा है ना।
1: तो चलिए, जो आपने पूछा है मुझसे वो बात आगे करेंगे, क्योंकि अभी ये जो बात कही जा रही है यहाँ पर गीत के द्वारा, उसको पहले हम अपने श्रोताओं तक पहुँचा दें, दोस्तों तक, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।

0: वंदना जी, हाँ
1: बिल्कुल, ये वही नगमा है जिसके बारे में मैं सोच ही रही थी जब हम साथ के बारे में बात कर रहे थे। निकाह फिल्म आई थी 80 के दशक में, पीआर चोपड़ा ने इसका निर्माण किया था
0: जी।
1: सलमा आगा थी, दीपक पराशर थे और राज बब्बर। उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इस गाने को लोगों ने सुना था, लोगों ने हाथों हाथ लिया था

0: नेहा जी, जब हम इस गीत को सुन रहे हैं और जो बात आपने गीत के पहले कही थी कि ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि स्त्रियां तिलिस्माती होती हैं और सब कुछ तो है उनके पास, फिर भी कहाँ कुछ ऐसी चीज़ है कि जो अधूरापन उन्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने सारी भौतिक चीज़ें दे दी हैं और हम खुश हो जाएं। एक जो एहसास की बात होती है, जज्बात की बात होती है, वो सबसे बड़ी बात होती है। और कितनी विरोधाभासी जो पंक्तियां हैं कि बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है।
1: मैं चाहती हूँ कि इसमें एक और बात जो मेरे दिल को भी छू रही है, वो अगर आप कहें तो कहूँ।
0: जी बिल्कुल कहिए।
1: इसमें जो लास्ट लाइन वो कहते हैं, हर एक पल विसाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पर एक निशान।
0: जी
1: दोस्तों, पता है हर एक पल गुजर रहा है हर एक पल की तलाश में। अगर हम कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, उसके निशान पता है हमारे दिल पर रहता है। मतलब कैसे हसन कमाल जी ने इस बात को महसूस किया है कि हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी परछाई हमारे जहन में, हमारे दिल पर पड़ जाती है।
0: और नेहा जी, जहाँ पर संपूर्णता इस बात की, इस खालीपन, इस सन्नाटे को मिलती है, जब वो एक लाइन आती है कि लहर लहर के होठ पर वफा की है कहानियाँ,
1: जी
0: बस यहाँ पर ही सारी बात एक

0: वंदना जी
1: जी
0: बोलते नगमे के सफ़र में जब हम अगली ओर देखते हैं, अगली पड़ाव पर देखते हैं कि हम कहाँ, तो नज़र पता है कहाँ जाके ठहर जाती है,
1: कहाँ
0: फिर से आज हम प्रकृति की ही बात कर रहे हैं। वहाँ पे ऊँचे ऊँचे पर्वत हैं, बड़े लंबे लंबे से पेड़ हैं और पर्वतों पर बर्फ़ पड़ी है। चार पांच सहेलियाँ जो चहलबाजी कर रही हैं और एक प्यारे से हीरो, जो शायद उनमें से पांच सहेलियों में से किसी एक को पसंद करते हैं और उनके लिए गाना गाते हैं। वो चारों पांचों सहेलियाँ ढूंढती हैं कि आखिर वो कौन है, और लास्ट में ये राज खुलता है कि वो है कौन। तो अभी हम भी नहीं बताएंगे कि वो प्यारी सी हीरोइन कौन है और हीरो कौन है।
1: तो चलिए, जो आप कौन कौन कह रही है वो आखिर है कौन वो इस गीत की जो पहली लाइन आ रही, मुखड़ा आ रहा है, उससे सब कुछ जाहिर हो जाएगा। तो सुनते हैं।

0: नेहा जी, कौन की बात हो रही थी, तो अब तो कौन वाला सवाल तो गायब हो गया।
1: पूनम ढिल्लो जी।
0: हाँ, पूनम ढिल्लो नजर आ रही हैं, और
1: हीरो,
0: और जिनकी तलाश पूनम ढिल्लो कर रही है अपनी सहेलियों के साथ में, कि आवाज कहाँ से आ रही, इतनी खूबसूरत सी प्रकृति की अभ्यर्थना करती हुई सी जान पड़ रही है, तो वो तो है कुमार गौरव, बहुत ही खूबसूरत से स्मार्ट।
1: माय गॉड, रियली रियली रियली। और जरा देखिए अमित कुमार जी ने जो गाया है ना, कर्णप्रिय मालूम होता है, एकदम फ्रेश आवाज है, जी करता है कि सुने। अच्छा वंदना जी, एक बात बताइए, आप कभी घुमरी परोवा जानती हैं?
0: हाँ, हाँ, खेला है इस खेल को।
1: क्या है पहले बताइए?
0: जब दो सखियां पकड़ लेती थी हाथ एक दूसरे का और घूमती थी।
1: अब ये बताइए कि जब रुकती थी
0: चक्कर
1: आता था ना,
0: लगता था कि धरती भी चक्कर खा रही है साथ साथ,
1: है ना
0: जी।
1: अब ये गाना कुछ वैसा ही नहीं लग रहा है कि जमीन भी गा रही है, ये आसमां भी गा रहा है। पता है दोस्तों, अगर दोस्ती कर ली जाए इन सभी चांद से, सितारे से, पेड़ पौधे से, पर्वत से, तो यकीन मानिए ये सबसे अच्छे साथी होते हैं और आपकी हर बात को राज बनाकर रखना भी जानते हैं।
0: नेहा जी, बात तो सिर्फ इतनी होती है जो मुझे समझ में आ रही है जब इस गाने को सुन रही हूँ, कि अगर मन में भावनाएं इस तरह की जब जगने लगती है, जब हमें प्रेम की तरफ रुख अपना करना ही पड़ता है, तब हमें हमेशा, क्योंकि हमारे मन का मौसम खिला सा लगता है, तब ये आभास भी हमको होता है कि ये जमीन, ये आसमां, ये पूरा जहां हमारे साथ साथ ही गा रहा है। और संगीत को हम अभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हाँ, पहले ये क्या कह रही है ये पंक्ति, पहले ये सुनवा दे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।

0: ठुमकर पर्वतों पे घटा छा रही है और प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है। मेरा दिल प्यार की यह दास्तान गा रहा है। दोस्तों पता है पर्वत पर जब बर्फ या बादल उतरते हैं ना तो बड़े धीरे धीरे पर्वत को भी वो अपने आगोश से ढक देते हैं और कहीं कुछ चमचमाता हुआ सा होता है तो कहीं कुछ धुआं धुआं सा होता है। और ऐसे में अगर इस तरह का एहसास जगता है तो फिर लोग कहते ही हैं कि हाँ शायद उम्र ऐसी आ गई है क्या। तो किस तरह से जो लेखक है उन्होंने दिल की बात को पहचाना है।
1: और नेहा जी, जी दिल की पहचान की बात आपने की है तो संगीत की पहचान की बात आप करते हैं, क्योंकि पिछली बार अभी हमने कहा था जब हम आएंगे तो संगीत की बात जरूर करेंगे। तो संगीतकार आर डी बर्मन साहब, उन्होंने ये संगीत रचा है। और नेहा जी, जब आर डी बर्मन साहब के संगीत की बात आती है तो ये कहा जाता है कि आर डी बर्मन साहब के साथ फिल्म संगीत का हर पहलू ही बदल गया था। मेलोडी का पुराना ढांचा हो, वाद्य संयोजन की परंपरागत क्रमिक संरचना हो, या ताल की परिभाषा हो, स्वर और ध्वनि के हर शेड के अंदर कई विभिन्न धाराएं एक दूसरे के साथ कभी मिलती तो कभी अप्रत्याशित ढंग से एक दूसरे को काटती हुई सी चलती थी। यहाँ तक कि सलील चौधरी साहब से जब एक बार पूछा गया कि अपने अलावा फिल्म संगीत में किस संगीतकार को वो प्रतिभावान समझते हैं, तो निसंकोच उनका उत्तर था आर डी बर्मन।

0: जब इन धुरंधरों के मैं कहूँ सम्राट जो रहे हैं संगीत के, शब्दों के, एक्टिंग के, जब हम लोग गाने सुनते हैं, देखते हैं, गुनते हैं, तो मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने जिंदगी को कितने खिलते हुए से अंदाज में देखा। तो वंदना जी,
1: जी नेहा जी,
0: अचानक से मुझे एहसास हो रहा है कि अब वक्त आ गया है।
1: नहीं, बिल्कुल वक्त आ गया है नेहा जी, लेकिन वक्त के साथ साथ एक बात और भी कहनी है।
0: बोलिए ना।
1: कि अगर हमने ये जो खूबसूरत सा गीत सुना, इसके रचनाकार का नाम नहीं लिया है,
0: हाँ।
1: तो देखिए बहुत ही सरल सादगी से भरपूर जो गीतकार रहे हैं, जिनकी हम हमेशा बात करते हैं नेहा जी, कि जब वो कुछ भी लिखते थे तो सीधे दिल तक वो बात पहुंच जाती थी और हमको कुछ भी उलझाव नज़र नहीं आता था कि शब्दों को पहले खोलें, उसके अर्थ को समझें, खंगालें। तो ऐसे गीतकार तो सिर्फ एक ही

0: हुए हैं
1: जी
0: फिल्म संगीत में, और वो हैं आनंद
1: आनंद
0: बख्शी
1: बख्शी
0: साहब।
1: साहब।
0: तो अब चलने की बात नेहा जी।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोगों ने बोलते अनवे कार्यक्रम में प्रकृति की बात की, उससे जुड़ाव की बात की। आपका प्रकृति के साथ किस तरह का जुड़ाव है, लगाव है, हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट करिए।
0: 8004926250। तो नेहा जी,
1: जी
0: देखिए जुड़ाव लगाव का ये एहसास आगे भी बरकरार रहेगा हमारा हमारे दोस्तों के साथ। इसी आशा के साथ अब हम लेते हैं दोस्तों से विदा। नमस्कार।
2: बोलते नगमे।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर था नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी

लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित डी आर पार्वती कर का दत्तात्रेय वीणा वादन और रात 10:30 सुनिएगा गौरी शंकर का क्लैरियोनेट वादन। आपकी पसंद इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें प्रतिमा शुक्ला और अभिलाषा श्रीवास्तव की बातचीत सुनेंगी हमारा पर्यावरण, और इसी कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी की वार्ता होगी पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। दिन में 2:30 पर लोक गीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे रश्मि भारतीय, कुंवर सिंह और साथी और संगीता मिश्रा के गाए लोकगीत। शाम 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई मेरी खेती मेरी बात के अंतर्गत सुनेंगे विमल प्रकाश और रामनाथ सिंह से किसान चर्चा।

शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे शैलेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयानंद तिवारी से काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी दीप्ति चतुर्वेदी। रात 8:30 पर सबरस और रात 9:30 गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकश

भाषा का प्रसारण होगा। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित डी आर पार्वती कर का दत्तात्रेय वीणा वादन, राग है जौनपुरी। तबले पर आपके साथ संगत की श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने।

अभी आप सुन रहे थे पंडित डी आर पार्वती कर का दत्तात्रेय वीणा वादन राग थी जौनपुरी। तबले पर आपके साथ संगत की श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि हर इंसान दुनिया के बनाए हुए तरीके से ही जिंदगी जिए। कुछ लोग शोर में खुश रहते हैं तो कुछ लोग सुकून तलाश करते हैं। जिंदगी का सही मतलब वही है जहां दिल को चैन मिले और खुद से शिकायत ना हो। इसलिए लोगों की सोच से अधिक आप अपनी खुशी और सुकून को ज़्यादा महत्व दीजिए। जी हाँ, और हम महत्व देते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गानों की फरमाइशों को। तो देखिए, आज का ये पहला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम है, बड़ा ही भारी भरकम नाम है, धुरंधर। और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है, और इनके नाम हैं टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, प्रयागराज से विकास, नीतीश और इनके बहुत सारे मित्र, हंडिया से रेखा यादव, महेंद्र यादव, आयुष और अनन्या, यहीं से प्रेमचंद यादव और इनके परिवार के अन्य सदस्य, मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति, श्रीजी और इनके परिवार के अन्य सदस्य, बरकाकाना से अफजलताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निपिजानी, मोहम्मद अफजल मलिक, पुलिस लाइन से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, गौरी कनौजिया, हनी कनौजिया, बाला कनौजिया। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अर्ज किया है कि उल्फत बदल गई, नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए फिर सीरत बदल गई, अपना कुसूर दूसरों पे डाल

कर कुछ लोग समझते हैं कि हकीकत बदल गई। और देखिए ये आ गया गाना राज रिबूट फिल्म का, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता कौर, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छुन्नू लाल श्रीनिवास, अनीता पुष्पा श्रीनिवास, अंजू योगिता श्रीनिवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, हिसार से प्रमोद कुमार डूडी, राजकुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो लीजिए सुनिए राज रिबूट फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, आजकल की दुनिया में कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि गलतियां खुद करते हैं और दोष रखते हैं सामने वाले पर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। और आ गया है हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है भेड़िया और इस गीत की फरमाइश हमें की है मोहाली चंडीगढ़ से डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज, लचनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू, चतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, कहा गया है कि अफवाहों को अगर धीरे से भी कहो तो वो पूरी दुनिया घूम आती है, और अगर सच

ना फाड़ के भी बोलो तो लोग कानों में शक की रुई लगा लेते हैं, क्योंकि झूठ को पंख पसंद हैं और सच को हमेशा सबूत ढोने पड़ते हैं। बात बिल्कुल सही है, बात बहुत गहरी है। और अब हम आ गए हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है स्त्री टू और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, मंगला बेन शाह और नीति शाह। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी। राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, पंकज सीमा, तन्वी सोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है स्त्री टू।

कहा जाता है कि कुछ बातें अनसुनी रह जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हर सच सुकून नहीं देता। जिस दिन इंसान लोगों की असली सोच सुन लेता है, उस दिन कई रिश्तों की चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ जाती है। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और फिल्म का नाम है पत्ती गुल मीटर चालू। इस

ईद की फरमाइश आई है संजय नगर ऐशबाग से वारिस अली खान, शहनाज खान, मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, मऊ से ही राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल।

हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। दिन का 1 बजने वाला है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के

अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा युवा भारत माई भारत हैज़ बीन ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर अचीविंग द टाइटल ऑफ मोस्ट यूजर्स टू टेक एन ऑनलाइन क्विज इन 1 week विद ओवर 3,90,000 पार्टिसिपेंट्स हु कम्प्लीटेड द एंटायर लेंथ ऑफ द क्विज. यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया रिसीव द सर्टिफिकेट इन अ सेरेमनी हेल्ड इन न्यू डेली टुडे. द रिकॉर्ड वॉज अचीव थ्रू द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 क्विज from the 25th to the 31st of October last year. The inaugural edition of the World Yoga Asan Sports Championship is set to kick off this evening at Trans Stadia in Ahmedabad, Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. Benchmark domestic equity indices were trading marginally down in afternoon trade today. The Sensex lost 35 points to 74,311 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: 9 और 10 जून को होगा। इस इम्तिहान में तकरीबन 2.9 मिलियन उम्मीदवारों के शिरकत की तवक्को है। वज़ीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि किसी उम्मीदवार को धूप में खड़ा ना होना पड़े और इम्तिहानी मराकज़ में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट रियायती किरायों पर खसूसी बैनज़ली बसें चलाएगा। गुज़िश्ता 12 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गैरमामूली तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज हम कारोबार करने में आसानी के शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर बात करेंगे।
1: सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब बहने अपना कार्यक्रम सुने पनघट।

0: बंधक कार्यक्रम सुने बैठी सभी श्रोता बहनी लोगन के जमुना और
1: राधा के राम राम।
0: और सुनाओ राधा, घरे दुआरे का काखे कुशल बा?
1: अरे जमुना बहन,
0: हाँ
1: घरे दुआरे सब बढ़िया बा।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन तुम्हें तो पता है,
0: हाँ
1: गर्मी जो ना है ना,
0: हाँ
1: वो अपन कोनो कसर नहीं छोड़ा।
0: अरे पूछा ना बहनी की, एकदम हालत खराब कर देता है।
1: और इस समय बस ऐसा लगता है कि हर समय पानी में डूबा रहा या पानी पियत रहा।
0: लेकिन देखा, हमेशा पानी नहीं पी सकतू, हमेशा तू पानी में डूब भी नहीं सकतू। कि अगर यह काम करबू तो फिर दूसर काम कैसे करबू।
1: सही बात कहीं, लेकिन यह समय जो मौसम है ना, वो बस अनुमति कोनो काम का नहीं देता।
0: बिल्कुल सही बात कहो राधा। और गर्मी तो देखा ऐसा पड़ता ही बाटे। और यहाँ समय देखा जब गर्मी पड़ा था ना राधा, तो अपने खान पान पर हमें सबके विशेष ध्यान देवे की जरूरत पड़ा था।
1: बिल्कुल देखा, खान पान अगर सही है तो हमारा स्वास्थ्य सही रहे, स्वास्थ्य सही रहे तो सब कुछ बढ़िया,
0: सब कुछ सही रहे। अब देखा ज्यादा तेल मसाला भी ना हो और खाना पौष्टिक भी हो। जौन बा जब ये बात चला था, हम सोचा कसना आज अपने बहनी हरन से यही विषय पे बात कही कर लिया जाए।
1: बिल्कुल कह ली जाए, गर्मी में पौष्टिक भोजन और खान पान।
0: हाँ
1: देखा, खान पान बढ़िया तबे हो जब पौष्टिक भोजन
0: बिल्कुल
1: हम तो कर बे।
0: हाँ।
1: पौष्टिक भोजन में का आवत है, बस वह चीज जोन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। जैसे गर्मी के मौसम में ऐसा आहार ले जो सुपाच्य हो, हल्का भोजन हो, और जेका खाए के बाद हमारे शरीर में आलस ना आवे।
0: बिल्कुल सही कहा था। और देखा राधा का होता ना कि गर्मी के मौसम में इतना तेज धूप होता तो उसे क्या होता कि शरीर से पसीना निकला था।
1: बिल्कुल।
0: तो पसीना निकले पे क्या होता कि अपने शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं
1: हो जाता।
0: तो ये मौसम में यदि खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए ना, तो ना तो थकान तो है लगे, ना कमजोरी लगे, ना तो है जैसे कुछ मैंने जैसे खाए लू तो उनमें अपच हो, तो ये सब चीज जोन पर अगर हम ध्यान दे तो परेशानी ना आवे।
1: बिल्कुल, मतलब कुल मिलाए के कि गर्मी के मौसम में ज्यादा एहतियात बरते हो तो अपने खान पान के
0: खान पान पे। हाँ,
1: और कोशिश करें कि तरल पदार्थ, जैसे कि जोने खान पान में पानी की मात्रा ज्यादा हो,
0: जी जी जी,
1: है ना, ठोस पदार्थ कम लें। काहे से कि गर्मी में अच्छे से पाचन ना हो पाते।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: पानी ज्यादा मात्रा में पिए तो आपको जो भोजन रहे वो अच्छे से पच जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जाना तो कि जब ये गर्मी में शरीर से पसीने के माध्यम से पानी और खनिज लवण लगातार जब बाहर निकलत रहता है, तो यह कारण से जाना तो राधा का होता है कि शरीर में अधिक तरल पदार्थ, विटामिन, खनिज और ऊर्जा की आवश्यकता जो पड़त है।

0: बस इना निकले के कारण।
1: बिल्कुल,
0: तो यहाँ समय हमें सबके पौष्टिक भोजन जरूर करे चाहे, काहे कि ऐसे जौन बा हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो बहुत मजबूत होता है।
1: मतलब कुल मिलाए के जौन समय अनुसार सब्जी चलती है,
0: हाँ, हाँ,
1: जैसे
0: हाँ,
1: खीरा ककड़ी है, तरबूज है,
0: हाँ,
1: और पता है
0: हाँ,
1: हम तो कही थी अंकुरित अंकुरित आहार,
0: अंकुरित
1: अनाज,
0: हाँ,
1: जैसे मूंग है, चना है, भिगोए देहन,
0: बिल्कुल,
1: और ओका एक छान के कपड़ा में लपेट के रख देना, अंकुरित हो गया,
0: हाँ,
1: थोड़ा सा
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: हल्का सा बीज जैसे होता ना,
0: हाँ,
1: हम
0: थोड़ा सा अकुआ
1: जाता,
0: निकल गया होता,
1: हाँ,
0: हाँ,
1: तो अगर वैसे हो गया और ओका खाए और मत से नींबू निचोड़ ले, नमक वगैरह डाल ले, मिर्च वगैरह, स्वादिष्ट भी हो जाता
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और काफी देर तक वो पेट में रहबो कर था, नुकसानदायक ना होता है।
0: हाँ। और देखा यहाँ समय अपने सबके बाग बगीचा में देखा आम कितना ज्यादा आ गया बा, अपने खेते में देखा खीरा का करी फराता है,
1: बिल्कुल,
0: तो अब देखा आम का भी जब अगर तू पना बनाए के पी ले तो
1: हाँ,
0: कितना भी मने भयंकर से भयंकर लू लगी रहे देखा तो है फायदा कर
1: फायदा
0: देता।
1: हो जाता।
0: हाँ
1: और देखा जो बात करती यहाँ खेते का, बाड़ी का, खीरा और ककड़ी का, तो पता है
0: हाँ
1: कल है विश्व पर्यावरण दिवस,
0: अच्छा अच्छा
1: हमका
0: हाँ
1: लागत है तो भूल ही गई
0: नहीं
1: रहो,
0: नहीं बहनी भूली नहीं रहे, बतियाओ

0: बिल्कुल
1: और ओका एक छान के कपड़ा में लपेट के रख देना, वहां अंकुरित होएगा
0: हाँ
1: थोड़ा
0: हाँ
1: सा
0: हाँ हाँ
1: हल्का सा बीज जैसे होता ना
0: हाँ
1: हम
0: हाँ ओकर वो थोड़ा
1: बोवा
0: सा
1: जाता है
0: अकुआ निकल गया होता।
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो अगर वैसे हो गया और ओका खाएं और मत से नींबू निचोड़ लें, नमक वगैरह डाल लें, मिर्च वगैरह, स्वादिष्ट भी हो जाता
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और काफी देर तक वो पेट में रहबो कर था, नुकसानदायक को नाए होता है।
0: हाँ। और देखा यहाँ समय अपने सबके बाग बगीचा में देखा आम कितना ज्यादा आ गया बा, अपने खेते में देखा खीरा का करी भराता है
1: बिल्कुल
0: तो
1: हाँ
0: अब देखा आम का भी जब अगर तू पना बनाए के पी ले तो कितना भी मने भयंकर से भयंकर लू लगी रहे देखा तो है फायदा कर
1: फायदा
0: देता।
1: हो जाता।
0: हाँ
1: और देखा जो बात करती यहाँ खेते का बाड़ी का खीरा और ककड़ी का, तो तुम्हें तो पता है
0: हाँ हाँ
1: कल है विश्व पर्यावरण दिवस,
0: अच्छा।
1: हम
0: हाँ
1: कल
0: हाँ
1: लागत है तो भूल ही गई
0: नहीं
1: रहोगे।
0: नहीं बहनी भूली नहीं रहे बतियावे थे।
1: अब
0: हाँ
1: पता
0: तो
1: है
0: याद दिला
1: विश्व पर्यावरण दिवस पूरी
0: दियो।
1: दुनिया मनावा था,
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
1: और देखा जब अपन पर्यावरण सही रहे
0: हाँ
1: तो तबे तो हम तो ठीक रह भाई,
0: बिल्कुल
1: अगर
0: बिल्कुल
1: पर्यावरण गड़बड़ भवा तो यहाँ धरती पे मानव जीवन मुश्किल आया।
0: मुश्किल है। और देखा कि पेड़ हमें कितना ऑक्सीजन देते हैं और
1: पेड़
0: कार्बन
1: ऑक्सीजन
0: डाइऑक्साइड
1: है ना ही
0: हाँ
1: जमुना बहुत
0: बहुत
1: कुछ
0: कुछ देते
1: देते,
0: हैं बहुत
1: कुल
0: कुछ
1: मिलाए के ओके तो मनई एक ऋणी रह चाहिए
0: बिल्कुल बहनी।
1: और
0: हाँ
1: हर मनई चाहिए कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगावे।
0: बिल्कुल लब कहा थे ना कि बहनी एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर होता
1: बिल्कुल बिल्कुल देखा शास्त्रों में ये चीज का वर्णन किया गया है। और
0: हाँ
1: पता है पेड़ ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु जे भी यहाँ सब कहीं ना कहीं ये पृथ्वी पर, कहीं ना कहीं ये मानव जाति का कहीं ना कहीं अपने सबके लिए लाभदायी, यहाँ
0: हाँ
1: सुचाला कहाँ जेका
0: सुचालक
1: कहा
0: है
1: थे
0: वरदान है।
1: हाँ
0: हाँ
1: वरदान, हाँ सब का अपन महत्व है, अगर
0: बिल्कुल
1: महत्व न होता है
0: हाँ
1: तो काहे लिए वो धरती फोते।
0: बिल्कुल
1: देखें कहा गया है ना जब भगवान राम बनावत रहे ने सेतु तो
0: हाँ
1: गिलहरी अपन योगदान दे ही रही,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सोचा
1: ऐसे सोचे तो ऐसे हर जीव जंतु को पृथ्वी पर महत्व है। यही बरे सृष्टि पे अवतार सृष्टि में भगवान 84 लाख योनि में सबक बनाए
0: सबके
1: यहाँ
0: बनाए हैं तो जब जीव जंतु इतना काम करत हैं तो हमार तो हार तो मानव का शरीर
1: मानव
0: बन।
1: का तना है। हम तो शिक्षित ही पढ़ा लिखा ही सोचे समझे का क्षमता है, तो कम
0: हाँ
1: से कम हम सब तो अच्छा काम करी।
0: अब देखा यह समय गर्मी जोन पड़त है तो गर्मी में देखा हम तो जानत हूँ राधा हम तो अपने जोन बा घरे दुआरे के अगले बगले छोट छोट कटोरा में पानी रख
1: अरे जमुना तुम्हें
0: दे
1: पता है तो
0: थे
1: चिड़िया उड़िया शाम की आवत हो इन्हें
0: तो
1: पानी
0: चू
1: पिया
0: चू चू चू करत थी
1: तो
0: इतना अच्छा
1: कितना
0: लगा
1: अच्छा
0: था
1: लागत
0: मन
1: होए।
0: के इतना सुकून मिला था जिसे लगा था कि हम बहुत बड़ा काम कर लिया।
1: देखा एक
0: हाँ
1: समय ऐसा आवा था जब हम सब बहुत तनाव से ग्रस्त रही थी
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: चिड़िया की चहचहाट होए, नदी का कलकल होए,
0: कोयल का
1: सुन
0: कुकु
1: कुहू
0: होए।
1: होए, सुन
0: हाँ
1: के ना बड़ा
0: हाँ
1: मन का खुशी मिला था
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: सारा तनाव भूल जाए थोड़ी देर के लिए। ऐसा लागत ना बस दुनिया में
0: कि
1: कुछ
0: हमने
1: ना ना बस प्राकृतिक सौंदर्य से अच्छा कुछ ना
0: कुछ
1: बात।
0: ना वो हम कौने जहान में आई गया
1: हाँ
0: है
1: तो
0: ना।
1: देखें कहा जाता है ना कि मानव जीवन यहाँ पृथ्वी पे सबसे अच्छा माना गया है,
0: बिल्कुल बहनी
1: लेकिन ओकरे साथ साथ ये जितना भी यहाँ ना सब हमारे साथी हैं
0: बिल्कुल
1: मित्र हैं,
0: बिल्कुल
1: तो इनका सजोई के संभाल
0: संभाल
1: के
0: के
1: रखा
0: हमें
1: है
0: रखे के बा।
1: हाँ,
0: हाँ
1: ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे,
0: हाँ
1: हमारी धरती गहना है पेड़ पौधा,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बहनी।
1: जब चारों ओर हरियाली रहे तो हमारे आंखों को बड़ा सुकून मिले।
0: आँख के सुकून मिले एकरे बाद जितनी हरियाली रहे वहाँ हिसाब से हमारे भगवान पानी भी बरसे
1: बिल्कुल बरसे हैं, देखें पेड़ पौधे न
0: हैं
1: रहे
0: हाँ
1: तो पानी बरसे का
0: कौनो
1: आशा जिन करा
0: आशा न करे।
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो दैयो राजा ना खुश रही हैं। जब बारिश होत है ना तो पेड़ पौधा झूमत हैं लहरात हैं, उन्हों अपने संगीत गावत हैं, जैसे हम
0: बिल्कुल
1: सभी गाना निकला गत ना
0: हाँ
1: वो अपने चिड़िया खूब चहचहात हैं खूब खुश रहत हैं
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और देखा जैसे बरसात का समय आवत है यहाँ समय तो बहनिया बहनिया रन के कोशिश करे चाहे कि 2 ठे 4 ठे 6 ठे जितना पौधा हो सके। सोचा जा रहा राधा कि जौन हमार बूढ़ पुरनिया पेड़ लगाए रहे तो ओकर आज हम उपयोग में ले आवत है तो
1: बिल्कुल
0: आज हम कुछ करब तो हमार आवे वाली पीढ़ियों के
1: पीढ़ी
0: उपयोग।
1: ओके उपयोग में लाए
0: हाँ
1: और कोशिश यह करें कि सब पेड़ पौधा लगावें। जमुना खूब खूब बात बत कही होगी, गौ नहीं ना करो बुका आज
0: अरे तो देखा बात बत कही तो होत रहे राधा चला
1: हाँ
0: कसना एक ही जौन बस सावित्री श्रीवास्तव बहनी से ई सुहाग सुना जाए।

0: राधा, गौनाई कैसन लगी?
1: गौनाई बहुत बढ़िया रही। हाँ। देखा शादी ब्याह के भी तो मौसम है, चारे मुँह देखा गौनाई हाँ। बजनी होते है।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
1: तो सुहाग गीत सुन के तो जो खुश हो गया
0: जो खुश हो गया। देखा अभी हमारे सबका जौन बात का सिलसिला जौन बा चलते रहा।
1: हमें पता है आज पिटरिया में बहुत कुछ है, निकलबू धीरे धीरे। तो अगला कहवा है?
0: अगला हो देखे के बातचीत है, कहे की कल देखा 5 जून हो हम और कल हो पर्यावरण दिवस। तो हम यही पर एक बातचीत सुनावत है हमारा पर्यावरण। और पर देखा बहनी प्रतिमा शुक्ला और अभिलाषा श्रीवास्तव बात कहें तो चला सुन लिया जाए।
1: अभिलाषा
2: हाँ?
1: देखा कल है विश्व पर्यावरण दिवस और देखा जनबे करत हो कि पर्यावरण हम सबके जीवन का आधार होता।
2: बिल्कुल सही कहती है।
1: वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधा, पशु पक्षी और प्राकृतिक संसाधन मिलके पर्यावरण का निर्माण करत हैं।
2: बिल्कुल। और देखा ये पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, हाँ पेड़ पौधे हैं, जलवायु जेकर जेकर नाम लिहू, ये समझा एक तरह से पृथ्वी पे जो भी एक कहे कि मतलब कि जैसे बैलेंस बनावा थी, है ना, कौनो चीज का अधिकता और कौनो चीज की कमतर, ये अपने पर्यावरण के प्रभावित करत हैं।
1: हाँ, और देखा जब हमारे पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित जेका बैलेंस कहूँ ना, वो संतुलन आटे
2: हाँ।
1: है ना, संतुलित रहा था तब मानव जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रहा था।
2: तो देख

0: एक संतुलन बनावे रखे के जिम्मेदारी हमार आपके है ना।
1: बिल्कुल
0: अगर हम लोग ही पर्यावरण में रहित है तो पर्यावरण के सुंदर, सुदृढ़ और मजबूत बनावे के जिम्मेदार भी हमार लोग का होता है ना।
1: बिल्कुल, जिम्मेदारी आपन होता, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं हम सब लोग गैर जिम्मेदार हो जाते ही।
0: बिल्कुल,
1: काहे
0: स्वार्थ
1: लिए?
0: में,
1: स्वार्थ में,
0: बिल्कुल।
1: अपने हित में। स्वहित न सोच के जगत हित सोचा जाए तो कितना अच्छा रहे।
0: देखो, भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेवे में हम सब इतने लीन हो गए हैं कि प्रकृति पे ओकर का दुष्प्रभाव पड़ता एक के बारे में सोचत नहीं, जबकि जरूरत है सोचे के और समझे के और प्रकृति के बचावे के लिए कार्य
1: कदम
0: करे
1: उठावे
0: के।
1: के,
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। तो देखा, कदम उठावे का है तो सबसे पहला कदम का हो चाहिए हमारे त्योहार, कि अधिक से अधिक पेड़ लगावा जाए
0: बिल्कुल सही कह
1: और
0: रही हो।
1: जोन कटाई होती है अंधाधुंध, उपा रोक लगाई जाए।
0: बिल्कुल, काहे से कि अगर पर्यावरण में पेड़ की भूमिका कम होने लगे तो धरती के ताप बढ़े लगे, है ना। काहे
1: बिल्कुल।
0: कि पेड़ पौधे के द्वारा ही मानसून बनथिन आवथिन, है ना। और सबसे बड़ी बात है, अगर तू 2-4 घंटा पानी बिना चल सकत हूँ, 2 दिन भोजन बिना चल सकत हूँ, मुन ई जो कहा जाता है ना प्राण वायु जो हम लोगन के जरूरत है, एके बिना आदमी 1-2 मिनट नहीं चल पाते।
1: बिल्कुल सही बात कहूँ। अगर हमका शुद्ध हवा न मिले ना, तो
0: हाँ
1: हमार जिया भी यहाँ धरती पे दूभर हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो कोशिश करें एकरे लिए
0: पेड़
1: पेड़
0: का
1: लगाए
0: हनन
1: ना
0: ना
1: करें।
0: करें और पेड़ लगावें। देखा, जैसे कि जरूरत है, अगर हम पर्यावरण से पेड़ ले रही है, घर गृहस्थी के जैसे कोई उपयोग है तो तख्त बनाए रहे हैं, क्यों दीवान बनाए रहे हैं, क्यों कुछ भी बनाए रहे हैं, तो ठीक है, भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले चाहिए, मुनो ओकरे साथे हमार जिम्मेदारी बढ़ना था। अगर हम एक पेड़ काटत है ना, तो ओके साथे 10 पेड़ का रोपण करब जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा। यहाँ देखा, चरक संहिता में भी कहा गया है कि एक पेड़ लगाओ यानी 100 पुत्र के बराबर फल की प्राप्ति होता
0: हाँ
1: है ना। तो अगर हम एक पेड़ लगावा तो ही सोचा हम कितने पुण्य के भागीदार रही। तो कोशिश करें कि पेड़ लगावें और अपने धरती को हरा भरा बनावें, चारों ओर हरियाली रहे, चारों ओर खुशहाली रहे।
0: बिल्कुल सही कहती हो। और इसके लिए सबसे पहले हमें छोटे छोटे बच्चन से शुरुआत करे चाहिए, सीख देवे के लिए, काहे कि वही आगे चल के भारत का भविष्य है
1: बिल्कुल
0: ना। तो
1: बिल्कुल
0: उनके ही समझावे कि जल का जो है फिजूल खर्ची खत्म करें, व्यर्थ में ना बहावें, और प्लास्टिक का जैसे हम लोग पन्नी वगैरह उपयोग करी था, एक एक कम से कम उपयोग करें, कहे कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है, और ओके साथ आसपास की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है।
1: मतलब कुल मिलाए के कहे चाहत यह कि जितना भी पर्यावरण को दूषित करे वाले पदार्थ हाँ
0: हाँ, उसे
1: उनका
0: दूरी करें।
1: हाँ उपयोग कम से कम करें और
0: बिल्कुल
1: कोशिश करें कि ना करें।
0: हाँ। देखा, कहे के मतलब एक अगर हम लाइन बोली कि पेड़ हम लगाएंगे पर्यावरण बचाएंगे, स्वच्छ रहे पर्यावरण स्वस्थ रहे तन मन।
1: बिल्कुल देखा, बहुत सटीक लाइन बोले यहाँ, जोन कि हमरे पर्यावरण पे और हमरे आसपास के जोन जनजीवन है ओकरे लिए बिल्कुल एकदम सटीक लाइन है। और कोशिश हमका तोहका और हमरे आस पड़ोस में जितना रहा था, देखा हम तो आज ही जाबे अपने आस पड़ोस में यह नारा लगोबे कि पेड़ लगावे और
0: धरती
1: जनजीवन
0: बचाओ। हाँ
1: बचावें, धरती बचावें, धरती
0: हाँ
1: का हरा भरा बनावें
0: बिल्कुल
1: और धरती पे खुशहाली लावें।
0: बिल्कुल, देखा सही कहती हो कि पर्यावरण में हम सब रही था हमार लोग का जिम्मेदारी बनत है। और देखा, एके प्रति सजग खाली हम ही नाप नहीं है, विश्व पर्यावरण दिवस अगर 5 जून के मनावा जाता तो समझो पूरा विश्व एके प्रति सजग है अपने पर्यावरण के प्रति।
1: हाँ एक चीज और देखिए आप बहनी, देखा कभो कभो ऐसा होता ना, हम केहू दूसरे के पेड़ में बाग में फल फूल लगा देखी तो बिल्कुल खुशी से झूम उठी थी,
0: हाँ
1: हमार इच्छा होता दौड़ के तोड़ ले थी। लेकिन सोचा जे व्यक्ति ओका लगाए, सींचेस, बड़ा करेस, फिर ओपा फल आए, तो ओका तोड़े का अधिकारो सिर्फ वही का है ना।
0: बिल्कुल सही कहती हो। देखा, तोड़े में तो मात्र कुछ मिनट का काम होता है, लेकिन
1: हाँ
0: सोचे वो पेड़ में वो फल कितना छोटा लगा, कैसे धीरे धीरे बड़ा भवा फल आ, है ना। बड़ा भवा लोगन के स्वादिष्ट, कच्चे में तो उतना स्वाद नहीं होता है, पका ओकर स्वाद लगा। देखे, यही तरीके से अगर हम लोग खान पान कुदरत की ओर से इतना तरह तरह का तोहफा मिला बा। अब ही थोड़ा तू पहाड़ी क्षेत्र में चली जा, है ना, थोड़ा नदी के पास बैठो, पानी के कलकल देखा, एक मधुर संगीत छेड़त है ना, पानी के कलकल का आवाज शांत, उतनी समय मन कितना प्रसन्न होता कि वाह प्रकृति हमें कहा से कहा नहीं दिए है।
1: कुल मिलाए के प्रकृति जौन कुछ देहे है ना बड़ा अनमोल है, और प्रकृति की जौन सुंदरता है ना वो यहाँ

0: पे चार चांद लगा हुआ था।
1: बिल्कुल। तो जरूरत है कि अगर ईश्वर ने जे इतनी खूबसूरत चीज दी है, जेकर कोनो मूल्य ना है, अनमोल है ना, तो ओके सजाए के संवार के रखब भी जिम्मेदारी हमार आपके है।
0: बिल्कुल। तो चला आज से संकल्प ले कि अपने पर्यावरण का एकदम साफ सुथरा बनोबे, ताकि हम और आप शुद्ध हवा में रह सकी और
1: बिल्कुल
0: आपन और आवे वाले भविष्य के आवे वाले पीढ़ी का जीवन अच्छा हो।
1: बिल्कुल। अगर हम ये चीज करबे तो हमारे आसपास के लोग भी देख के प्रेरणा लेंगे हैं और सीखी हैं, है ना।
0: बिल्कुल सही बात।
1: तो
0: तो
1: अब एक वादा के साथ जाते मान एक पेड़ जरूर लगोबे, है ना।
0: जरूर लगोबे और अपने जौन आसपास में यहाँ उन्हों को प्रेरित करब कि एक से भले दो, दो से भले चार।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी। देखा ईश्वर इतने सुंदर, पृथ्वी के तुलना इतनी, मतलब पृथ्वी के जैसे और कौनो ग्रह नहीं ना, है ना।
0: बिल्कुल हाँ
1: इतना सुंदर पृथ्वी, एक अलग अनोखी, हर तरह तरह के जीव जंतुओं से चिड़िया चुनगुन, सबकी बोली भाषा रंग। देखा कितना, सुबह अगर सोई के उठा बाग बगीचा में चली जाता, तरह तरह के पक्षी के कोलाहल सुन के मन एकदम प्रसन्न हो जाता है ना। तो जरूरी है कि अपने पर्यावरण के प्रति सचेत होएं और अपन जिम्मेदारी निभावें और पर्यावरण के बचावें।
0: हाँ देखा राधा, इतना नेक दोनों बहनी हरे बतियाने, मन एकदम जोन बा खुश हो गए। हाँ देखा प्रकृति है तो जीवन हर व्यक्ति का बड़ा सरल है, सहज है और सुंदर है।
1: बिल्कुल
0: अगर प्रकृति का दोहन हो गया ना, तो फिर मानव जीवन, जीव जंतु या पृथ्वी पे कुछ न बची
1: कुछ न
0: है
1: बचे,
0: ना।
1: कुछ न
0: तो
1: बचे।
0: कोशिश करें कि जौन कुछ तोहफा ईश्वर हमका दे यहाँ ना,
1: खूब
0: एक
1: अच्छे
0: खूब
1: से
0: अच्छे
1: सहेज के।
0: संभ
1: हाँ
0: सहेज के रखा जाए।
1: तो यही बात पे चला हम तो हैं, फिल्म हिमालय की गोद से, और एक गाना सुना होता ही लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, तो हूँ सुनो बहनी अरन भी सुने।

0: वैक्सीन कौन नहीं लेगी,
1: गोने एकदम बढ़िया रही, देखो पनघट है तो कंकड़िया भी मारी जाए सब कुछ होए। देखो अपन जन कार्यक्रम का नाम है पनघट, तो यहाँ सब कुछ होए, नदी है, कल कल है, चिड़िया वहाँ, चिड़िया का चुनगुन है,
0: सब कुछ
1: सब कुछ है। तो देखा
0: गौने बहुत अच्छी लगी, मन खुश होएगे। तो देखा राधा, अब हम तो हैं एक वार्ता सुनवावे चाहते और अपनी बहनी हरण के, कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका, और वार्ताकार बहनी है डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, तो चला जान लिया जाए, सुन लिया जाए।
2: पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। भारत विश्व का विशालतम प्रजातांत्रिक प्रणाली वाला देश है। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में उचित रूप में सहभागी प्रजातंत्र की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि यह काफ़ी संतोष का विषय है कि हमारे देश में पंचायती राज के रूप में सहभागी प्रजातंत्र की आधारशिला रखने की शुरुआत की गई है। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक अन्योन्याश्रित प्रजातंत्र का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। लोकतंत्र मूलतः विकेंद्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। शासन के ऊपरी स्तरों पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएं एवं मूल्य शक्तिशाली न हो। यदि लोकतंत्र का अर्थ जनता की समस्याएं एवं उनके समाधान की प्रक्रिया में जनता की पूर्ण तथा प्रत्यक्ष भागीदारी है, तो प्रत्यक्ष स्पष्ट एवं विशिष्ट लोकतंत्र का प्रमाण उतना सटीक अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा जितना स्थानीय स्तर पर। इसका कारण यह है कि वहाँ जनता और उसके प्रतिनिधियों, शासक एवं शासितों के बीच संपर्क अपेक्षा कुछ निरंतर सतर्कतापूर्ण एवं अधिक नियंत्रणपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला और उसकी सफलता की सबसे अधिक गारंटी स्थानीय स्वशासन का संचालन है। पंचायत राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधुनिक रूपांतरण है, शासन को जनता के निकट ला देता है। भारत की तरह अधिक आबादी और क्षेत्रीय विभिन्नता वाले विशाल देश में लोकतंत्र को सार्थक एवं लोक कल्याणकारी बनाने के लिए विकेंद्रीकरण अंतर्निहित अनिवार्यता है। उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर शक्ति का अंतर होना लोकतांत्रिक संप्रभुता का प्रवाह उच्च स्तर निम्न स्तर की ओर तथा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होना चाहिए। लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में पंचायत राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायत राज व्यवस्था एक ठोस कदम है। अतः इस अर्थ में पंचायत संस्थाएं स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदारी की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष में एवं परोक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्रदान करती है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ये स्थानीय जनप्रतिनिधि ही कालांतर में विधानसभा एवं संसद का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, अतः देश का समग्र विकास महिलाओं के भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता। भारत में अनादिकाल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर काम किया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है।

के अनुसार सभी पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे। कुल सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी आरक्षित होंगी। आठवीं योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या का लाभ 30% से बढ़कर 40% कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के अनौपचारिक समूहों को ऋण देने की बैंक प्रक्रिया तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के नाबार्ड के माध्यम से एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की गई। पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी हेतु 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी कि महिला निर्वाचित न हो तो महिलाओं व बच्चों के कार्यों में रुचि रखने वाली ही महिलाओं का सहवरण किया जाए। ऐसा प्रावधान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में किया गया था। महिलाओं को सहवृत सदस्य बनाने का मतलब था कि महिला चुनाव लड़ने हेतु सदस्य सक्षम नहीं हैं या कमजोर वर्ग की हैं। वे ही महिलाएं सदस्य बनी जो समाज की दृष्टि से प्रभावशाली परिवारों की थीं। अनुभवी महिला व बच्चों के कार्यक्रम में रुचि लेने वाली महिलाएं नहीं आईं। इस कारण महिलाओं की भागीदारी दिखावा मात्र होने से असफल प्रयोग साबित हुआ। वर्तमान स्थिति में महिलाओं पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है जो उनके लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए महिलाओं का एक साथ मिलकर मजबूत कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं करने से सदियों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार महिलाएं सामाजिक शोषण एवं दबाव का शिकार बनकर रह जाएंगी। प्रश्न यह उठता है कि महिलाएं किस प्रकार अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकेंगी। महिलाओं को एकजुट होकर एक रणनीति तय करनी होगी। भारत में स्वतंत्रता के साथ ही उस पर सार्थक प्रयास व अन्यत्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपने आंदोलनों में महिलाओं का सहयोग लिया था। प्राचीन काल में महिलाओं की श्रेष्ठ स्थिति हमारे सामने थी। किसी प्रकार के परिवर्तन पुनः निर्माण में महिलाएं सदैव ही महत्वपूर्ण रही हैं। यह तथ्य मात्र भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व के संदर्भ में सत्य माना जा सकता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं की समानता व उत्थान संबंधी प्रावधानों का समावेश किया गया। 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड गठित किया गया। 1975 की नई शिक्षा नीति में महिलाओं का विकास इस दिशा में किए गए प्रमुख प्रयास रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं सशक्त तो होती हैं, परंतु जागरूक होती महिला को पुरुष प्रधान समाज का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है। एसी नेल्सन के एक सर्वे से स्पष्ट हुआ है कि नारी सशक्त हैं, पंचायती राज व्यवस्था में उसका स्वरूप बदल रहा है। इस सर्वे में बताया गया है कि सिर्फ देश के 23 राज्यों के 1368 ग्राम पंचायतों की 4880 महिलाएं ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों सहित कुल 5718 पर सर्वे किया गया। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सरकारी योजनाओं तथा उनकी भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन हुआ, जिसमें 58 से 66% महिलाओं को अच्छे सामाजिक कार्यों में लिप्त पाया गया है, जैसे शिक्षा बढ़ाने का प्रयत्न 14

0: 30% है। यही महिलाएं दूसरी और तीसरी बार गैर आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनी जाती हैं, जबकि पुरुषों में यह 37% प्रशिक्षित पाया गया है। इससे पता चलता है कि महिलाएं राजनीति में आगे जा रही हैं। यदि देखा जाए तो समय के साथ महिला निरंतर वृद्धि कर रही है। महिलाएं राजनीति में एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो रही हैं, जिसने आज पुरुषों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण महिलाएं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, परंतु अभी भी वह महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हुई हैं कि इस व्यवस्था में अपनी जोरदार भूमिका निभा सकें। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव 1992 के बाद देखने को मिला, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गईं। इस कानून से ग्रामीण महिलाओं को पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता में वे भी भागीदार हो सकती हैं। महिला परिप्रेक्ष्य योजना में सिफारिश की गई कि महिलाओं के लिए पंचायतों में 30% पद आरक्षित होने चाहिए। इस योजना की सिफारिशों व विभिन्न महिला मंचों, संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्यरत बुद्धिजीवियों के प्रयासों से महिलाओं को सदस्य व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रावधान ने महिलाओं की दमित ऊर्जा को उजागर किया है, जो निकट भविष्य में भारतीय राजनीति की नया मोड़ दे सकेंगी। वैसे पंचायतों में महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं। माना कि महिलाओं के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको दूर नहीं किया जा सकता या उनका समाधान संभव नहीं है। पंचायतों में महिलाओं के अधिकारों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों के बारे में पंचायतों की कार्यवाही करने के लिए विभिन्न नियमों एवं कानूनों के बारे में वित्तीय व गैर वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने के बारे में तथा विकेंद्रीकरण योजना तैयार करने के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएं महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं, जिनके परिणाम स्वरूप महिलाओं की सोच व समझ का विस्तार हुआ है और ये पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही हैं, जो यह ढांढस बंधाते हैं कि महिलाएं भले ही अशिक्षित हैं और अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं, फिर भी उन्होंने ग्रामीण समाज में नए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भविष्य में जैसे जैसे महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने से और पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के माध्यम से इकट्ठा होंगी, कम मुखर महिला प्रतिनिधियों पर मुखर महिलाओं का प्रदर्शनकारी प्रभाव पड़ेगा, जो उनकी पंचायतों की भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
1: हाँ, देखा बहनी,
2: देखा आज हमार बहनी हरे हर क्षेत्र में आ गए यहाँ, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो पार्षदिक चुनाव हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो विज्ञान हो, शिक्षा हो, कोनो जगत हो, फिल्मी जगत में झंडा गाड़े है ना,
1: फिल्मी जगत में झंडा गाड़े है ना, देखा पर्वतारोहण करत है,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: चलावत है,
2: झंडा कुल लहराता है, हाँ, हाँ, बहनी हरिन का ना।
1: तो ये बतावा, हाँ, तो ये कुल तो हो गया था, अब थोड़ा रसोई घर से हमारी बहनी हरिन के लिए।
2: अरे अगर हम बहनी हरिन रसोईया तक ना गए तो फिर पनघट हमारा अधूरा ना रहा है ना। देखा जन्मुआ जमुना आज जो ना है सोचते ही काहे ना, गर्मी का मौसम है तो कुछ ऐसा पेय पदार्थ बताई जोन आसानी से घर में उपलब्ध हो और अच्छा भी लागत हो,
1: और शरीर के फायदेमंद भी,
2: बिल्कुल। देखा एकरे लिए हम आज बात करते हैं सिकंजी पे।
1: अच्छा अच्छा, अच्छा।
2: सिकंजी नींबू के रस से बना उत्तर भारतीय पेय पदार्थ है ना, और गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति बड़ा खुश होके पिया था, चटकारा ले लेके पिया था। और देखा चटपटी सिकंजी बनावे का है ना,

0: पानी लें एकदम ठंडा पानी, ठीक, और मैं नींबू का रस, चीनी स्वादानुसार, काला नमक स्वादानुसार,
1: अच्छा,
0: भुना पिसा जीरा स्वादानुसार,
1: अच्छा अच्छा
0: ठीक, हाँ। और ज्यादा ठंडा पिए का है तो आखिरी में बर्फ का टुकड़ा डाल दें, उकरे बाद अच्छे से हिलावे, जब ये अच्छे से घुल जाए ऊपर से पुदीना की पत्ती डाल के सजाए के सामने परोस दें,
1: क्या बात है।
0: मतलब देखे के बाद नजर जिसे पड़ा था ना तो मुहिम पानी आवे लगा था, पिए के तो बात ही दूर है, पिए के बाद तो एकदम शरीर में ताजगी जना है महसूस होता कि कितना तरोताजा महसूस करते ही। और देखा घर पे जो मेहमान आवा थे बाजारों पिए पदार्थ से अच्छा है कि उनका घर का पिए पदार्थ दिन जाए।
1: देखा तू हमें बहुत ज्यादा ताजगी दे दू, यही बात पे तो हमें ठे गंगा यमुना फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत सुनवावत है।

0: सुना सुन के तो मन
1: खुश हो गया, बिल्कुल मन खुश हो गया। देखा जोड़ा सबको बना रहा है, हाँ, भगवान सबको प्रफुल्लित रखे,
0: बिल्कुल।
1: और देखा अब पनघटे बारी है ईमेल संदेश का,
0: तो चलो सुन लिया जाए।
2: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com, pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमार व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।
1: जमुना,
0: हाँ भैया,
1: देखा बात बत कही खूब हो गया, गीत गोने हो गया, विदा लेके बेला आ गए, तो राम राम बहनी हरन,
0: राम राम बहनी हरन
4: रिकॉर्ड करके।

बहनें अभी सुन रही थीं कार्यक्रम पनघट, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी प्रयागराज है, 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि

0: विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने

0: डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजनाएं शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रश्मि भारती, कुंवर सिंह और साथी और संगीता मिश्रा के गाए लोकगीत। सबसे पहले हम आपको रश्मि भारती के स्वर में सुनवाने जा रहे हैं ये गंगा गीत।

गंगा गीत के बाद लीजिए अब सुनिए ये सोहर। कलाकार रश्मि भारतीय।

MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे प्राइमरी चैनल पर हमारी आज की ये सभा यहीं विराम लेती है। शाम 4 बजे आपसे फिर भेंट होगी। विविध भारती पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुने रश्मि भारतीय, कुंवर सिंह और साथी और संगीता मिश्रा के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कुछ देर प्रतीक्षा करें।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षत मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सकें।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकिल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने

0: के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं, और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा न जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखे हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लायंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं, और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं, और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 kg तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पे काफी मदद मिलेगी, एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है, और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: कमांडेंट साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं।

0: और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेज। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिए, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पर फिसलेगा गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबेस में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड वेस्ट के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज वेस्ट करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 kg खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 kg की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 kg वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
3: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
3: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो

0: प्लांट लगे हुए हैं। इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
0: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंदनामी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बचत होती है।
1: और सर इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं अगर आप हमें बताएं?
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडनामी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहाँ से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर,
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के

0: बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है, या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके, जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता। इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
2: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न खिलिप रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
2: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
2: जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: बस हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
2: जी, ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kgs waste, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
2: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक

0: सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुई आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है। डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकिल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
1: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
0: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
2: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
0: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट

0: नजर आ रहा होगा। साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
1: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफल मैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ This is actually a wall of kindness, which means donate what you can, take what you need. मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। Amazing initiative, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
1: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
1: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए

0: हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल सेंट्री पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने ये सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
0: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंडो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सबसे पहले सुनिए फिल्म साजन का गीत। आवाज़ है SP बाल सुब्रमण्यम की। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लीजिए अब सुनिए फिल्म दिल जिले का गीत। आवाजें हैं पूर्णिमा और अजय देवगन की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं अनु मलिक।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले, दिल जले, और लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी में कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को, और इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

मन की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: ये सुबह की धूप, ये बहती पवन, हरी भरी धरती और ये झूमता गगन, आओ मिलकर सहेजे इस कायनात को हम, क्योंकि युवाओं के इरादों में है वो दम। जी हाँ, युवानी के इस बेहद चहकते महकते मंच पर आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति।
1: और मैं हूँ आपका दोस्त सुधांशु। मेरे सभी युवा दोस्तों को मुस्कुराता हुआ पहले तो नमस्कार। ज्योति, आज तुम्हारी पंक्तियों में जो सुबह की ताजगी और मिट्टी की सोंधी महक थी ना, उसने तो दिल एकदम, पता है, खुश कर दिया। सच में हमारी ये धरती कितनी खूबसूरत है।
0: बिल्कुल। और इस खूबसूरती को सुधांशु, हमें ना हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना है, क्योंकि हम सबकी ये जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज युवाणी में हमारा विषय बेहद खास है। हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। आज हम बात करेंगे कि कैसे पूरी दुनिया मिलकर हमारी इस हरी भरी वसुंधरा को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाती है।
1: वाह ज्योति, ये तो बहुत ही बेहतरीन और प्रेरणादायी विषय है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात करते हैं तो दिल गर्व से भर जाता है कि पूरी दुनिया की सरकारें और वैज्ञानिक हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि UNEP का।
0: UNEP दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने की अलग जगह रहा है। और जानते हो सुधांशु, हर साल जो हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। ये एक ऐसा दिन है जब पूरी दुनिया, एक दुनिया के युवा मिलकर पेड़ लगाते हैं, नदियों को साफ करते हैं और धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प लेते हैं।
1: और ज्योति, मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है पेरिस समझौता, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट। दुनिया के लगभग सभी देशों ने मिलकर हाथ मिलाया ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें और धरती के तापमान को बढ़ने ना दें। ये इस बात का सबूत है कि जब इरादे नेक होना तो पूरी दुनिया एक परिवार बन जाती है।
0: बिल्कुल, क्या बात है सुधांशु। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बेहतरीन जो उदाहरण है, मुझे नहीं लगता वो कोई और होगा। और सिर्फ यही नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रीयूजेबल एनर्जी, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को लेकर जो क्रांति आई है वो देखने लायक है। भारत में भी इसमें इंटरनेशनल सोलर ISA अलायंस के जरिए पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रहा है।
1: बिल्कुल, अब तो हर तरफ ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों तक ऐसी तकनीकें आ रही हैं ना जो हवा को साफ और शुद्ध रखती हैं। और सबसे अच्छी बात जानती हो क्या है?
0: क्या?
1: हमारी आज की युवा पीढ़ी इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल सुधांशु, तुमने बड़ी पते की बात कही। आज का युवा सिर्फ बातें नहीं करता, वो एक्शन में यकीन रखता है। दुनिया भर में युवा प्लास्टिक फ्री कैंपेन चला रहे हैं, साइकिलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, यानी कि हम कुछ भी खा रहे हैं।

0: खाते पीते हैं या फिर जो भी हमारे घर से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, या कह सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सीमित कर रहे हैं
1: हाँ
0: कि हम उन चीज़ों की ओर जा रहे हैं जो रीयूजेबल हों, जिसे हम रिसाइकल कर सकें, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के इन प्रयासों को खूब सराहा भी जा रहा है।
1: सच में ज्योति, चाहे समंदर के किनारों की सफाई हो या फिर जंगलों को दोबारा हरा भरा करना हो, युवाओं का जोश हर जगह दिखाई दे रहा है। ग्लोबल अर्थ आवर जैसी चीज़ें, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जहां पूरी दुनिया एक घंटे के लिए लाइटें बंद करके धरती के प्रति अपना प्यार जताती है।
0: अब तो हर तरफ ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जैसा कि तुमने अभी पहले कहा भी था। सुधांशु, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगर हम बात करें तो हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये दुनिया की एक ऐसी ऐतिहासिक कामयाबी है जिसने मिलकर हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को लगभग खत्म कर दिया है।
1: हाँ
0: आज हमारी ओजोन परत तेजी से हील हो रही है। बिल्कुल, और ये तो बहुत ही शानदार शानदार और सकारात्मक फैक्ट भी है सुधांशु।
1: हाँ हाँ

0: तो हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये दुनिया की एक ऐसी ऐतिहासिक कामयाबी है जिसने मिलकर हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को लगभग खत्म कर दिया है।
1: हाँ
0: आज हमारी ओजोन परत तेजी से हील हो रही है। बिल्कुल, और ये तो बहुत ही शानदार और सकारात्मक फैक्ट भी है सुधांशु।
1: हाँ
0: ओजोन परत का सुधरना इस बात का भी सबूत है कि अगर दुनिया ठान ले तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। और सिर्फ ओजोन ही क्यों, क्या तुम्हें रामसर कन्वेंशन याद है?
1: अरे हाँ, रामसर कन्वेंशन यानी दुनिया भर की आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाने का महाअभियान समझिए, जिन्हें हम पर्यावरण के गुर्दे यानी किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहते हैं। जानते हो ज्योति, हमारे प्यारे भारत में ही अब 85 से ज़्यादा राइसर साइट्स हो चुकी हैं जो पक्षियों और पानी के जीवों को एक सुरक्षित आशियाना दे रही हैं।
0: बिल्कुल, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। ये तो हर भारतीय युवा के लिए गर्व की बात है। जैसे,
1: हाँ
0: और सुधांशु, जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलनों का जिक्र भी करना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर भारत द्वारा दुनिया को दिया गया मंत्र मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ भारत ही क्यों, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको इससे जुड़ना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना भी चाहिए।
1: अच्छा, जो तो एक बात बताओ, ये तो मान लो कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ हो रहा है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, पर हमें ये बताओ कि अगर जैसे हम बहुत छोटे लेवल पे अगर हम ये कहें कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, तो तुम क्या कहोगी?
0: मैं ये कहूँगी कि अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम सबके घर में RO लगा होता है ना,
1: हाँ
0: तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो RO का पानी हमारा एक तरफ से जो प्योरीफाई होके निकलता रहता है, मतलब प्योरीफाई होता है और उसमें उसके साथ साथ वेस्ट भी होता रहता है, तो उस पानी को हम कलेक्ट करें एक बकेट में और फिर
1: हाँ
0: उस पानी को हम यूज़ करें जो भी हमने अपने घरों में गार्डनिंग की हुई है, हमारे प्लांट्स जो भी हैं हमारे बालकनी में हो चाहे हमारे घर के बाहर हो, तो उनमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो उस पानी का यूज़ वेजिटेबल वॉश करने में भी कर सकते हैं, जो हम
1: हाँ
0: अपने घरों में सब्जियां लेकर आते हैं तो उसको हम वॉश करने के लिए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं,
1: सही बात है।
0: तो उस पानी का यूज़ कर सकते हैं हम उसे वॉश करने के लिए। उसके अलावा अगर हम खुद भी चाहें तो हम खुद का भी हैंड, अगर हम हैंड वॉश करने जा रहे हैं तो हम उस पानी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा मैं जो प्लास्टिक होता है ना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक,
1: हाँ
0: उसे यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि एज ए यूथ मुझे पता है कि उसके क्या क्या नुकसान हैं। तो और मैं लोगों को जागरूक भी करती हूँ कि नहीं, इसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जबकि उसकी जगह पे हम वो वाले पैकेट्स यूज़ कर सकते हैं जिसे हम रीयूज़ कर सकें।
1: अच्छा, तो दोस्तों ये तो ऐसी बातें हैं जो हमारे सामान्य जीवन में हमेशा घटित होती रहती हैं कि और अक्सर हम जब ज्योति सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो देखो हम कहते हैं ना कि सब्जी तो दो ही, साथ साथ हमें पॉलीथीन भी दे दो,
0: हाँ
1: ये हम अक्सर कहते हैं। तो ये हमारी एक अच्छी आदत तो नहीं कहेंगे, इस आदत में हमें सुधार करना है तभी हम ये इस चीज़ की बात करने लायक हो सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: जब हम जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने घर से कोई क्रांति नहीं करेंगे, बस ये है कि ये कर देगा वो कर देगा, किसी के भरोसे कोई काम क्यों करना।
0: बिल्कुल।
1: सबसे पहले अगर कोई पहल करनी है, कुछ भी करना है, तो हमें अपने घर से शुरू करना है, हमें खुद से शुरू करना है। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम लोग जब नहाने जाते हैं है ना, या ब्रश करने जाते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं कि पानी का जो टैप है वो खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है और हम ब्रश करते रहते हैं, या फिर हम नहाते रहते हैं बाल्टी से पानी बहता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण की चीज़ों का नुकसान ही तो कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और उसका ये भी कह सकते हैं कि उसका अंधाधुंध दोहन
0: बिल्कुल।
1: है ना। मतलब हमें जितना यूज़ है उतना तो हम ले ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, पर लेने के साथ साथ उसको हम बर्बाद भी तो कर रहे हैं है ना। तो बर्बाद जो हम कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है, और अगर हम बहुत ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, समझने लगते हैं, तब हम इस चीज़ के लिए हकदार हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हम वहाँ जाके बोलें। हम जब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो हम बोलेंगे किस आधार पे, है ना।
0: बिल्कुल, लेकिन सुधांशु, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपने दोस्तों को दरकार हो रही है इस प्रोग्राम में एक गाने की, तो दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं उस ज़माने में फिर से वापस, जहां हमारी धरती खुल के सांस लिया करती थी।

तो दोस्तों, जैसे कि अगर जीवन में गिर के संभलना हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सहारे आपने एक मन बना रखा हो कि उसके साथ हम जीवन का ये बहुत बड़ा जो सफ़र है, ज्योति, हम उसको काटेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और हम ये देखें

0: कि अगर हम प्रकृति को ही अपना हम सफर बना लें तो हमारा जीवन कितना आसान हो सकता
1: बिल्कुल।
0: है ना। अच्छा, आप एक बात ये भी सोच रहे होंगे कि आज हम इतने पुराने पुराने गाने आपको सुना क्यों रहे हैं। अक्सर हम अपने अपने मतलब अपने कार्यक्रम में ऐसे गानों का यूज़ करते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट के होते हैं अक्सर, लेकिन पुराने गानों को सुनाने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि आप जो हम बात कर रहे हैं प्रकृति की, पर्यावरण की, उससे आप सीधे कनेक्ट हो सकें, उसको आप समझ सकें कि दरअसल जिस प्रकृति की शुद्धता की बात करते हैं, या हम उस पुराने टाइम की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं, अक्सर कहते हैं ना हम लोग कि उस समय तो प्रकृति बहुत अच्छी थी, बहुत शुद्धता थी, और वहाँ हम नीम के पेड़ के नीचे खाट डाल के सो जाते थे, किसी एसी की आवश्यकता हमें नहीं होती थी। पर ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ें बदलती हैं समय के साथ और विकास होता है, पर जो हमारी जड़ है, जो हमारी मूल चीज़ें हैं, पानी, हवा, वृक्ष, धरती, इसको तो हम छोड़ के कभी आगे नहीं बढ़ सकते,
1: बिल्कुल।
0: है ना। इससे आप सीधे कनेक्ट हो सकें, इसलिए इस प्रकार के गाने आपको सुना रहे हैं हम। और जो तो जैसा हमने मिशन लाइफ की बात की थी गाने के उस पार, कि मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट क्या होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ये विचार रखा मिशन लाइफ को लेकर, तो पूरी दुनिया ने इसे अपनाया। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी जीवन शैली जीना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें बदलना, जैसे पानी बचाना, बिजली का सही इस्तेमाल करना और चीज़ों को रिसाइकिल करना।
1: बिल्कुल। और इसी कड़ी में एक और बेहद दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है बॉन चैलेंज। इसके तहत पूरी दुनिया ने मिलकर करोड़ों हेक्टेयर खराब हो चुकी जमीन और जंगलों को दोबारा हरा भरा करने का संकल्प लिया। भारत में इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था भारत ने भी, और अपनी बंजर जमीन को फिर से जंगलों में बदल रहा है भारत।
0: क्या बात है ज्योति, ओजोन की सुरक्षा से लेकर जंगलों को वापस उगाने तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए ये कदम बताते हैं कि विज्ञान और नीतियाँ दोनों मिलकर काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है,
1: क्या है?
0: हमारी आज की युवा पीढ़ी इस बदलाव की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है।
1: लेकिन सुधांशु,
0: हाँ
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार या फिर दूसरे देश इन इन चीज़ों में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं,
0: हाँ
1: तो हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? हमें क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल, जैसे कि अभी हम पानी की बात कर रहे थे, नदी को साफ करने की बात कर रहे थे, है ना, कि पर्यावरण में हम कम से कम पोल्यूशन करें। तो देखो, सीधा सा मतलब ये है कि जितना ज़्यादा, मतलब ये तो होता ही है कि कहीं ना कहीं से पोल्यूशन हो ही जाता है, पर हम ये कोशिश तो कर सकते हैं ना कि पोल्यूशन कम से कम हो, है ना। जैसे सबसे पहली तो यही आदत हमें सुधारनी चाहिए कि हम सब्जी लेने गए और कहते हैं भाई सब्जी तो दो ही, साथ साथ पॉलीथीन भी दे दो। नहीं, वो कभी कभी नहीं देता है तो हमें क्रोध भी आता है कि क्यों नहीं दे रहा है, हम तो पैसा दे रहे हैं। तो पैसा देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी। तो वहाँ पे हमें अब पॉलीथीन लेने से अच्छा ये है कि हम जूट के बैग का प्रयोग करें, है ना। पॉल्यूशन के मामले में जैसे मान लो कि अगर अब हमें कहीं जाना है और वहीं मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी सेम जगह जा रहा है और उसको हम जानते भी हैं, है ना, तो कभी कभी हम अपना टशन में, है ना, कभी कभी टेंशन में, कभी कभी हम दिखावे में कि हम उसके साथ क्यों जाएंगे, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे कि। तो ऐसे मामले में हमें ये करना चाहिए कि हमें सेम व्हीकल शेयर कर लेना चाहिए, उसी के साथ चले जाना चाहिए। और अगर दूरी बहुत कम है, जैसे सब्जी लेने भी कई लोग जाते हैं तो गाड़ी का यूज़ करते हैं, स्कूटी का, तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम पैदल ही चले जाएँ बहुत दूर अगर ना हो तो। उससे हमारी एक्सरसाइज भी होगी और जो क्या कहते हैं
1: हमारा
0: कार्बन मिशन
1: एनवायरनमेंट,
0: होता है तो वो
1: हाँ
0: भी कम
1: नहीं,
0: होगा और एनवायरनमेंट बचेगा हमारा, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल सही बात कही तुमने। सुधांशु, तुम्हें याद है जब कोरोना आया था 2020 में, और जब पूरी दुनिया थम गई थी, ना कोई फैक्ट्री चल रही थी, ना ही कोई गाड़ी चल रही थी, तो उस समय ये देखा गया था कि हमारे भारत से एवरेस्ट की चोटी दिखाई दे रही थी, है ना? तो कितना उस समय हम कह सकते हैं कि हमारी धरती सांस ले रही थी, है ना? उसको सांस आई थी।
0: सही बात
1: जो
0: है,
1: भी ये जितने भी एमिशन्स हो रहे थे या पॉल्यूशन था,
0: हाँ
1: जितनी हम देखते हैं कि हमारे जो किसान होते हैं वो भी जब फसलें कट जाती हैं तो जो जिसे हम पराली बोलते हैं
0: हाँ
1: तो वो उसको जला देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं हमारे एनवायरनमेंट में।
0: सही बात है। और अक्सर जैसे तुमने जब खेती किसानी की बात की तो अक्सर फार्मर्स को देखो कि जैसे अब तो आज के टाइम में बहुत सारा उर्वरक का यूज़ होता है चीज़ों को पैदा करने के लिए, पर अक्सर हम क्या करते हैं कि जो जिस जैसे कोई भी चीज़ हम बाहर से लेकर आए, जो पैकेट फूड हैं,
1: हाँ
0: उनको खाया और उनको मैंने ज़मीन में या किसी खेत में फेंक दिया, फेंकने से क्या होता है वो तो

0: पॉलीथीन तो क्या कहते हैं डिकम्पोज होती नहीं है,
1: नहीं
0: वो वहीं रहती है। तो जहाँ वो जाती है पन्नी, वो उतनी उतने क्षेत्र को पूरा क्या कहते हैं अनुर्वर कर देती है, मतलब उसमें उर्वरता रही नहीं जाती, वो बंजर जैसा हो जाता है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर भी रहे हैं तो
1: उसको स्मार्टली यूज
0: उसको
1: करें।
0: स्मार्टली यूज़ करें, है ना। जहाँ जैसे हमारे जो डस्टबिन होता है ना, उस डस्टबिन में अक्सर हम ये होता है कि कोई कोई भी कूड़ा किसी में भी हम डाल देते हैं, है ना। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं उनको दूसरे डिब्बे में रखें, और जो चीज़ें नहीं डिकम्पोज होती हैं उनको दूसरे डिब्बे में रखें, है ना।
1: और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम, जैसे कि हमें गवर्नमेंट भी बताती है कि गीला कूड़ा और जो सूखा कूड़ा है उसे अलग अलग रखें, तो हम इसमें एक चीज़ जोड़ सकते हैं दोस्तों कि जैसे हमारे घर से, किचन से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, हमारे सब्जियों के का वेस्ट हो गया, या जो खाना कभी कभी बच जाता है वो हो गया, तो उन सब चीज़ों को हम जो है मिला करके अपनी गार्डनिंग के लिए फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, जो
0: हाँ
1: कि ऑर्गेनिक भी होंगे और अच्छे भी होंगे, हमारे लिए हेल्दी भी होंगे, जो उससे बने उस फर्टिलाइजर से जो भी सब्जियाँ उगेंगी वो
0: हाँ
1: हमारे लिए कितनी सेहतमंद होंगी, है ना।
0: सही बात
1: और
0: है।
1: इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो भी नगर निगम की गाड़ी आती है तो उन कूड़ों को अलग अलग करके उनको दे दें, ताकि वो आगे जाके रिसाइकिल किए जा सकें।
0: हाँ अच्छा ज्योति, तुम्हें एक चीज़ पता है, अभी जस्ट IPL समाप्त हुआ है ना, तो उसमें उन लोगों ने एक पहल चलाई हुई थी, ग्रीन बॉल की पहल, है ना। ग्रीन बॉल की पहल चलाई थी, तो उसका मतलब पता है क्या होता है?
1: क्या होता है?
0: उसका मतलब ये होता है कि जितनी बॉलें डॉट होंगी, मतलब बैट्समैन नहीं खेल पाएगा, हम उतने वृक्ष लगाएंगे, है ना। ये सोचो कि कितनी कितनी अच्छी पहल है।
1: वाकई बहुत अच्छी पहल है। हालांकि सुधांशु, आईपीएल तो हमेशा नहीं होता है, लेकिन हमें ये चीज़ अपने अंदर लानी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर पेड़ हैं तो ये दुनिया है, हम सब हैं, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी।
0: और एकदम यही बात हम बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर वो ऐसी पहल कर सकते
1: हाँ
0: हैं तो हम अपने जन्मदिन पे या अपने किसी खास दिन पे, या फिर कोई दिन खास क्यों हो, हर दिन तो खास है,
1: बिल्कुल
0: अगर हम कोशिश करें तो हम एक एक वृक्ष लगा सकते हैं। और वृक्ष लगाना, एक चीज़ जान लीजिए, वृक्ष लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको बड़ा कर देना, उसको ऐसा बना देना कि वो फलदार हो जाए, ये बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे, पर आइए पहले सुनते हैं एक संदेश।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
3: हैं?
2: है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
0: कितना अद्भुत दृश्य होता होगा दोस्तों जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े और सकारात्मक प्रयास होते हैं, तो हम युवा भी पीछे क्यों रहें। चलिए आज इस मंच से हम भी एक छोटा सा लेकिन पक्का वादा करते हैं कि
1: पेड़ पौधे हैं जीवन का आधार, आओ मिलकर बढ़ाएं इनके प्रति प्यार। सुरक्षित रहेगा जब हमारा पर्यावरण, तभी तो मुस्कुराएगा हमारा आने वाला कल।

0: तो दोस्तों, अपने इस सफ़र में चलते चलते हम आ पहुँचे हैं अपने अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज पर। तो प्रेरणा पुंज में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम की। एक गहरा कुआं है इस ज़मीन पर बेशुमार युवाओं के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहे, उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे में बसती रहे जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी जैनुलाब्दीन और अशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश सुब्रमण्यम अय्यर और अयोधुराई सोलोमन ने की,
1: विद्यार्थी की कहानी जिसे एम जी के मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की।
0: डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोड़ी नामक गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और वो एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीम्मा था जो एक गृहिणी थी। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे।
1: डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम वर्ष 1995 में मद्रास चले गए। वहाँ उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू फाइटर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना की परीक्षा में 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट घोषित किया था, इसीलिए वो पायलट नहीं बन सके। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉक्टर कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वो वर्ष 1962

0: में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी।
1: क्या आपको पता है कि इन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पहली सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने साल 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई।
0: इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से लेके 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा।
1: दोस्तों, अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें और APJ अब्दुल कलाम पे हम और भी बातचीत करेंगे और आप ये समझेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हमारे देश के लिए और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा योगदान है। पर आइए, इससे पहले हम आगे बातचीत करें, पर आइए सुनते हैं एक और पहले प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों अगर उनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो डॉक्टर कलाम 18 जुलाई वर्ष 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बता दें कि डॉक्टर कलाम से पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया और कई पुस्तकें भी लिखीं,
1: जिसमें इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम वर्ष 1998 में, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी वर्ष 1999 में, इग्नाइट माइंड्स अनलिजिंग द पावर विद इन इंडिया वर्ष 2002 में, द ल्यूमिनस स्पार्क ए बायोग्राफी इन वर्स एंड कलर्स वर्ष 2004 में, मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडिया यूथ 2005 में, और इसके बाद कई पुस्तकें लिखी जिसमें से लर्निंग हाउ टू फ्लाई वर्ष 2016 में, एनलाइटेंड माइंड्स वर्ष 2017 में, और फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर 2018 में लिखी उनकी आखिरी किताबें थीं।
0: डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, जिसकी वजह से उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के लिए काम करते हुए बिताए थे।
1: देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वो हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रथम प्रबंधन संस्थान यानी IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया। ये बहुत भावुक क्षण था।
0: उनकी सादगी भी लोगों को बहुत प्रभावित करती थी। ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी वे हमेशा विनम्र और सरल बने रहे। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। डॉक्टर कलाम का मानना था कि यदि किसी देश को विकसित बनाना है ना, तो उसके नागरिकों को ज्ञान, अनुशासन और मेहनत को अपनाना होगा। उनका विजन था कि भारत एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। किसी ने सही कहा है, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद को तोड़ देते हैं। ये बात डॉक्टर कलाम के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। जहाँ उनका सफ़र रामेश्वरम की गलियों से शुरू हुआ और देश का सबसे बड़ा हीरो बन गया। दोस्तों, डॉक्टर APJ कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो सफलता ज़रूर मिलती है।

0: दोस्तों, हम हर रोज़ अपने कार्यक्रम में एक प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं जिसमें हम हर रोज़ आपसे सवाल पूछते हैं, और हमारा कल का सवाल था विच मेटल इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका सही जवाब है यूरेनियम। यूरेनियम का जो यूज़ होता है वो नाभिकीय ऊर्जा को बनाने में किया जाता है।
1: दोस्तों, आज का हमारा सवाल है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com, और आप हमें हमारे नंबर पे भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 800-4926-250।
0: और अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें भेज सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। इसी के साथ मुझे यानी ज्योति
1: और हमें यानी कि सुधांशु को
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर

0: विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे गज़लों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। 10 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गौरी शंकर का क्लेरिनेट वादन होगा। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर विजयानंद तिवारी और शैलेश कुमार श्रीवास्तव का काव्य पाठ। चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा रात 8 बजे और 8:30 बजे सबरस। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नज़र। कल रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कहकशां। रात 10 बजे नाटक सुनिएगा हसीन सपने, लेखक होंगे अमरकांत। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कमला बोस का ख्याल गायन होगा। इन्हीं का ख्याल गायन आप सुनेंगे दिन में 12:15 बजे और कल प्रातः 7:30 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर विन्नी जॉन से सुरेश कुमार की बातचीत होगी। प्याज एवं लहसुन के रख रखाव एवं भंडारण में ध्यान देने योग्य बातें। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 6:45 पर, इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर शाश्वत कुमार की वार्ता, ओरल हाइजीन क्यों महत्वपूर्ण। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर। कल का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर आप सुनेंगे अर्चना दास के स्वर में गीत और भजन। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT होगा 10:30 पर। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा कमला बोस का ख्याल गायन। हेलो फरमाइश कार्यक्रम 12:30 बजे।

1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम होगा। दिन में 2:30 बजे लोकगीत सुनिएगा। कलाकार होंगे प्रीति मिश्रा, धर्मशंकर दीक्षित और मल्लिका चैटर्जी। शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। शाम 5:15 बजे युवाड़ी कार्यक्रम में उभरते कलाकार होंगे शैलगी सिन्हा, इनसे आप सुनेंगे तबला वादन और भजन। पंचायत घर कार्यक्रम होगा शाम 6:30 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर कलाकार होंगी आकांक्षा पाल, इनके स्वर में आप सुनेंगे गीत और भजन। चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8 बजे और सबरस 8:30 बजे। ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से ही बोल रहे हैं।
1: प्रस्तुत है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय वन की छमाही बैठक की रिपोर्ट। आयकर भवन में बुधवार को मुख्य आयकर आयुक्त मीनाक्षी सिंह की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय वन की छमाही बैठक हुई। बैठक के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गृह पत्रिका प्रयाग पुष्प के नवीनतम अंक का लोकार्पण भी किया गया। इसमें 48 केंद्रीय कार्यालयों के प्रमुख शामिल हुए और अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
2: मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सभी आप सभी भी ऐसा ही कर रहे होंगे कि किसी प्रकार का भी जो हमारा संवैधानिक दायित्व उसमें कोई चूक नहीं हो रही है। जैसा कि अभी परिचय में पता चला कि यहाँ जितने भी साथी अधिकारी हैं सब ज्यादातर कर क्षेत्र से संबंधित, तो ये हमारा केवल संवैधानिक दायित्व नहीं रह जाता, हमारा एक नैतिक दायित्व भी है कि हम राजभाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाएं। तो उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं, जैसे कि सभी विभागों में किसी भी भाषा का प्रचार प्रसार तभी बढ़ेगा जब वो सबसे छोटे स्तर के कर्मचारी तक भी उसके कार्य में वो सहायक हो। जैसा कि रेलवे का उदाहरण मैं अपना आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो हमारा फील्ड में काम कर रहा है, मान लीजिए कि कोई फाटक चलाने वाला है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन से अनुदेश देते हैं वो राजभाषा में देते हैं। इंग्लिश हम मान के चलते हैं कि वो उसकी मूल भाषा नहीं, मातृभाषा नहीं है। उसके दो फायदे हो रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ सभी लोग अच्छे तरह से राजभाषा का सिस्टम में सब जगह हर स्तर पे प्रयोग बढ़ रहा है, दूसरा उसका प्रभावी उपयोग भी हो रहा है दैनंदिन कार्यों में। दूसरा हमारा नैतिक दायित्व ये है, जैसे हम प्रयाग में बैठे हैं, ये तो महादेवी वर्मा जी की और सुमित्रानंदन पंत जी की भूमि रही है, तो जीवंत भाषा ही असली भाषा है और जीवंत भाषा वो है जिसमें कुछ नए शब्द जुड़ते जाएं। जैसे समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा, राजभाषा विभाग द्वारा बहुत सारी शब्दावलियां विकसित की गई हैं, आगे भी विकसित हो रही हैं। उसमें मेरा सुझाव यह है कि समय के साथ नई तकनीक प्रयोग में बहुत सारी आ रही हैं। जैसे आज डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुन रहे हैं, कंप्यूटर तो खैर अब सभी सरकारी कार्यालयों का एक हिस्सा ही है, बट उनका जो प्रभावी उपयोग डेटाबेस के माध्यम से वो अब जोर पकड़ रहा है। तो मेरा ऐसा समझना है कि सभी हम आपस में समन्वय करके या अपने निजी प्रयासों के द्वारा कुछ करके जो नई टेक्नोलॉजी उससे संबंधित शब्द भी अपने राजभाषा में जोड़ें, और न केवल जोड़ें बल्कि अपने जो सभी स्तर के कर्मचारी हैं उन तक भी पहुंचाएं, तो तभी हमारी भाषा जीवंत रहेगी। जीवंत भाषा से ही हम ये उम्मीद रखें कि लोग उसको स्वेच्छा से अपनाएंगे। संवैधानिक दायित्व तो एक ऐसा है, बट हमारा प्रयास उसके आगे होना चाहिए कि लोग स्वेच्छा से भी कहें कि नहीं, यह भाषा सुगम है, बहुत सरल है, मेरे जो भी रोज के कार्य है उसके लिए उसमें उपयोगी शब्द उपलब्ध है। और दूसरा मेरा ये सुझाव है कि जैसे कोई भी बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, वो

0: आसानी से खेलते, लगता है कि वाह हम भी खेल सकते हैं वैसे। तो अच्छी भाषा या अच्छा लेखन वही है जिसमें सरल और बहुत सुगम शब्दों का प्रयोग हो। कोई बहुत कठिन हमें शब्द प्रयोग करने से बचना चाहिए। हो सकता है हमारी ज्ञान अच्छा हो, हमारा लेखन शैली बहुत अच्छी हो, लेकिन वो हमारा निजी लेखन शैली हो सकती है, बट उस कागज को जो पढ़ेगा हो सकता है उसको वो उतना पसंद ना आए या उसको क्लिष्ट लगे। तो हम बहुत सरल और सुगम शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा दें, नई तकनीक से जो शब्द आ सकते हैं उनको लाएं, और तरह तरह के जो आजकल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स बन रहे हैं उसमें भी सॉफ्टवेयर स्टेज पर ही उनको बाइलिंगुअल बनाने का प्रयास रखें, जैसे कि बाद में फिर वो दुविधा उत्पन्न हो जाए कि इस सॉफ्टवेयर में तो हम केवल इंग्लिश में ही कर पाते हैं।
1: अध्यक्ष मीनाक्षी सिंह ने कहा कि राजभाषा नीतियों का अनुपालन हमारा नैतिक दायित्व है। बैठक में सदस्य कार्यालयों की छमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई। 14 प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी जारी करने में उत्तर मध्य रेलवे महालेखाकार लेखा एवं हकदारी और CPWD केंद्रीय परिमंडल अग्रणी रहे। 48 में से 90% से अधिक कार्यालयों में हिंदी में पत्राचार हो रहा है। 26 कार्यालयों में 95% से अधिक है। अध्यक्ष ने उत्तर मध्य रेलवे कोर और CGST को पुस्तक प्रदर्शनी व कवि सम्मेलन के लिए सराहा।
2: ये एक बहुत बड़ा मंच है और मुझे आप सभी के जो विचार मैंने सुने और आप सभी ने जो हमें बताया और ये भी विश्वास दिलाया कि आप और अच्छे से इस राजभाषा के सुगम और उसको और अच्छे से उसके लिए कार्य करेंगे, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसमें जो आज हमने अपनी मैगजीन रिलीज करी है 48 विभागों की प्रयाग पुष्प, मैं उसके लिए भी आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ और चाहूँगी कि जो अगले 6 महीने बाद की बैठक हो उसमें हर विभाग का एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एक ज़रूर लेख या कुछ भी आपका जो भी आपने करा है उसका ज़रूर एक हमारे पास उसका आए और हम उसको लें। जैसे इन्होंने बताया कि संसदीय समिति आई थी और उन्होंने कहा था कि इन सब बैठकों में HODs को आना चाहिए, तो लखनऊ के नराकास में मैं थी राजभाषा अधिकारी और हमें 527 या 28 नराकास हैं ऑल इंडिया, उसमें लखनऊ को सर्वश्रेष्ठ नराकास की श्रेणी में अवार्ड मिला है। अहमदाबाद में अभी सचिव राजभाषा ने दिया था, हमने ये सारे मानक उसमें पूरे करे थे। हमारे यहाँ जो HODs थे वो फॉलो करते थे और उसमें अपने सभी विचार व्यक्त करते थे, आते थे, तो ये एक हम लोग अगली बार से इस पर ध्यान देंगे थोड़ा। और जैसा इन्होंने बताया कि 90% से ज़्यादा पत्राचार सभी विभागों का है, ये बहुत खुशी की बात है। 26 कार्यालयों में 95% से भी ज़्यादा है, ये भी बहुत अच्छा है। करीब 38 कार्यालयों में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। शायद कुछ कार्यालय छोटे हैं तो शायद आप लोग नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग प्रयास कर लें। और जो ये टूल्स हैं हिंदी के भाषणी कंठस्थ, तो ये मैं आपसे अनुरोध करूँगी राजभाषा अधिकारी से कि ये इनकी कार्यशाला ज़्यादा से ज़्यादा और इनके सॉफ्टवेयर सभी के यहाँ उपलब्ध कराएँ, तो आपके ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं इसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। हिंदी के टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करें। ये एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ पर हम सब 48 केंद्र विभाग के डिपार्टमेंट्स हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसको हमें और भी आगे ले जाना चाहिए। कोई ना कोई हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कोई ऐसा कार्य लें हम लोग और हम लोग आगे अपना कुछ कदम बढ़ाएं। जैसे एक सुझाव के तौर पे कि ये हमारी एक एक्टिविटी में भी आ जाएगा अगर हम लोग वृक्षारोपण अगले महीने जैसे होगा इतना मिल के कर दें या कुछ भी, क्योंकि ये हम लोग इसको सिर्फ एक रूटीन में 6 महीने की कंपल्सरी बैठक ना लेकर उसको और आगे बढ़ाएं और मिलकर कुछ और एक्टिविटी में हम लोग सब शामिल हों। इसके लिए जो भी आप सुझाव देना चाहें आप लोग सब का स्वागत है। और आपका जो ये रिव्यू में इन्होंने मुझे बताया कि नियम 3-3 में जो 14 तरह के दस्तावेज हैं उसमें आपके महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तीनों ऑफिसेस को बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत अच्छा कार्य रहा। नियम 5 के जो अंतर्गत कार्यालयों में जिसमें आपको प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना है, उसमें केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, 101 बटालियन, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन, प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा, मंडल रेल प्रबंधक और आयकर विभाग, इन सभी का बहुत अच्छा कार्य रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन कार्यालयों में कुछ पॉइंट्स पे हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं तो अगले 6 महीने में हम लोग कर लेंगे, तो शायद हम लोग भी प्रयास करें कि हमें इस नराकास को भी राष्ट्रीय स्तर पे रिकॉग्निशन मिले। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने इतने बिजी समय में समय निकाला, आए और अपने अपने सुझाव दिए और हमारी इस मीटिंग को इतना सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: बैठक में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव, ADRM दीपक कुमार, महालेखाकार सुरेंद्र कुमार, आयुक्त रंजीत कुमार, एयर कमांडोर CK रस्यारा लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर फराह।

0: दीबा, प्रधान आयकर आयुक्त मानस मेहरोत्रा, आयकर आयुक्त शिव कुमार राय और सचिव मकरध्वज मौर्य समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। अभी आप सुन रहे थे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय वन की छमाही बैठक की रिपोर्ट। वाचन व संपादन विनय श्रीवास्तव और प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की थी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के
1: प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:20 होने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्ज़ुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। वयोवृत्तः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पं ईरान देशं विरुध्य अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरोद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्राव्रिडः आगमनम्। अपि च गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्व योगासन क्रीडा स्पर्धा श्रृंखला इत्यस्य उद्घाटन संस्करणस्य आरम्भः। वैश्विक क्रीडा मार्गसूच्याम् ऐतिहासिकं सोपानम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्ज़ुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत वेनेजुएला सम्बन्धानां विविधाः पक्षाः समीक्षिताः। ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेशः औषधि निर्माणं स्वास्थ्य सेवा परिवहनं तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारस्य उपायाश्च चर्चिताः। वार्ताहरान् सम्बोधयन् रुद्रेन्द्र टण्डनः प्रोक्तवान् यत् द्विपक्षीय वार्ताः उभयोः देशयोः सम्बन्धं सुदृढीकरोति।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग

0: को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: डेल्सी रॉड्रिक्स महाभागा द्विदिवसीय भारत यात्रायै ह्यः नवदिल्लीम् आगता। अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोः देशयोः आर्थिक ऊर्जा क्षेत्रयोः सहयोगः अधिकः सुदृढः भविष्यति इति अपेक्षते। विदेश मंत्री एस जयशंकरः वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रॉड्रिक्स महोदय सह सम्मिलत द्विपक्षीय सहयोगस्य सुदृढीकरणे प्रदत्तं बलम्। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री एस जयशंकरः अद्य प्रातःकाले वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रॉड्रिक्स महोदय सह सम्मिलत। अस्मिन् अवसरे उभयोः देशयोः सम्बन्धानां सुदृढीकरणं विविधेषु क्षेत्रेषु सहकार विस्तारश्च चर्चितः। वयोवृद्धः चलचित्र

0: सर्वाधिकानाम् उपयोक्तृणाम् उपाधिं प्राप्तवत्। यत्र प्रश्नानाम् आभासीय रूपेण उत्तरं प्रयच्छन्तः 390,000+ अपि अधिकाः प्रतिभागिनः आसन्। केन्द्रीय युवक कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीयः अद्य नवदिल्ली नगरे आयोजिते समारोहे सम्मानपत्रम् अवाप्नोत्। गतवर्षे अक्टूबर मासस्य 25 दिनांकात् 31 दिनांक पर्यन्तं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26,000 प्रश्नस्य इत्यस्य माध्यमेन अभिलेखः प्राप्तः। मनसुख मांडविया इत्यनेन अस्य कृते वर्धापनं प्रदत्तम्। गुजरात आरक्षि विभागेन राज्ये अवैध रूपेण निवसतः बांग्लादेशीय नागरिकान् विरुध्य ऑपरेशन डेल्टा हंट नामना विशेष अभियानम् आरब्धम्। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं गत 40 होरासु 40,000+ बांग्लादेशीयाः गृहीताः तथा च 280,000+ अधिक संदिग्ध जनानां विषये अन्वेषणं प्रचलति। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य मालवीय नगरे अग्निकाण्डेन आहतान् द्रष्टुं साकेतस्थं निजी चिकित्सालयं गतवती। सा पीडितैः तथा तेषां परिवारजनैश्च सह संवादं कृतवती। प्रत्येकं मृतकस्य परिवाराय 10,00,000 रूप्यकाणां गंभीररूपेण आहतानां 5,00,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहधनस्य घोषणा कृता। बिहार राज्यस्य मुजफ्फरपुर नगरे एकस्मिन् निजी चिकित्सालये भीषणाग्निकाण्डे 3 जनाः मृताः, अनेके च आहताः। एषा घटना गतरात्रौ ब्रह्मपुरा क्षेत्रे अभवत्। गंभीर रोगिणः उपचारार्थम् अन्येषु चिकित्सालयेषु प्रविष्टाः। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम। ए हो रानू भैया,
0: बोला हो राधा बहनी।
1: गर्मी तो बढ़त जात है,
0: एक
1: तेज धूप, बढ़त तापमान और लू के असर हमार सबके साथ साथ खेती किसानी पर भी पड़त है।
0: एकदम सही कहो बहनी हो। देखा खेती किसानी के बात करत यह है तो ये जान ल कि ए वक्त का नाम से खेते का हाल ये है कि जोन भैया किसान भैया बहनी हरे हरी सब्जी बोए हैं, भिंडी यह है काम से, लौकी यह है, नेनुआ है भैया, उमन पानी भैया हर दूसरे तीसरे दिन देवे के है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा ये समय खास जरूरत बा कि किसान भैया आपन ख्याल करें,
0: हाँ
1: साथे
0: हाँ
1: साथ पशुअन के ख्याल करें और फसल के विशेष ध्यान दें।
0: एकदम सही कहो। देखा ये है कि भाई बिना फसल के कुछ होत नहीं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया आप
0: भैया खेती के ध्यान जरूर देवे के है। और साथे साथे कनम से एक बात ही कहे कि देखे कुछ किसान भैया बहनी हरे भैया देखा बेहन डालत हैं और कुछ तो भैया डाल दिए हैं। जे भैया डाल दिए है वो तो बढ़िया है, जे डालत है भैया वो ठीक है। और कुछ किसान भैया बहनी हरे ऐसा हैं कि अपन खेत तैयार करते हैं भैया, जेकरे पास पानी के व्यवस्था जैसा है वही हिसाब से अपन काम करते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: साथे
1: भैया
0: साथे किसान भैया बहनी हरे से ये अरदास है कि भैया देखे का नाम से बेहन डाल दिए हैं तो एक काम और करें, अपने खेते का माटी जौन है भैया लेके ओके भैया ब्लाकी पे भेज के माटी के गुड़ों

0: जरूर चेक करा लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहन भैया। देखा, आज की खेती पहले के समय से बदल चुकी है,
0: एकदम सही
1: और
0: कहूँ।
1: आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, मौसम आधारित कृषि सलाह के भूमिका आज की खेती के जरूरत बन गए हैं।
0: हाँ।
1: रानू भैया, आज देखा हम सभी खेती किसानी की तो बात करते ही हैं,
0: हाँ।
1: लेकिन आज अपने पंचायती में एक खास विषय पर चर्चा कर चाहिए,
0: हाँ।
1: वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत।
0: कही गऊ हो देखा, एक न्यू 2015 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया रहन, और एक जो शुरुआत रहन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से शुरू भरहन।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: देखा
1: भैया।
0: राधा बहनी, एक बात और कहे चाहत ही कि एकर जोन शुरुआत का जोन मुख्य उद्देश्य रहन, वो मुख्य उद्देश्य ई रहन कि देश के विभिन्न राज्य, विभिन्न क्षेत्र, केंद्र शासित जोन प्रदेश हैं,
1: हाँ
0: उनके बीच में सांस्कृतिक एकीकरण के, आपसी समझ और संबंधन के मजबूत करब बहुत जरूरी रहन।
1: बिल्कुल बिल्कुल कह गए रानू भैया। देखा, जब अपन देश आए, विविधताओं के देश आए, विविधता में चाहे भाषा होए, संस्कृति, परंपरा, खान पान, वेशभूषा, अलग अलग होत भाई भी, एक जो सबसे बड़ी खास बात यह है वो है कि हम सब एक हैं।
0: एकदम सही कहो।
1: सभी के
0: देख
1: त्योहार, परंपरा, सामाजिक, भावनात्मक एकता इतनी बड़ी है कि सब, जैसे अगर गेहूं के और के त्योहार है तो हम सब मिलके मनावत है, उनके परंपरा के अपनाए के, तो ये अपन भारत के गांव गांव में, जन जन में एक भावना है, वह है एकता की भावना।
0: एकदम सही कहो। यही के राष्ट्रीय एकता कहते हैं। और एक बात, नागरिकों के जोन बीच में जोन आपसी संबंध होते हैं, भाईचारा होता है, जुड़ाव जोन है, वो के बढ़ा के अपने देश के एकता और अखंडता के मजबूत करे के है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दूसर
1: भैया।
0: चीज यह हो राधा बहनी, भाषाई विविधता जोन है देश के, अलग अलग क्षेत्र पे कहते हैं कि कदम कदम पर पानी बदले, कोस कोस पर बानी, तो ये
1: हाँ,
0: है
1: कह
0: कि
1: गया भैया।
0: कुछ कुछ दूरी पे देखे भाषा बदल जाता और कुछ दूर पे पानी बदल जाता, तो यही के भाषा के एकजुटता करे विदा के हम से आपन जोड़ी हम से एक भारत श्रेष्ठ भारत को शुरुआत माननीय
1: बिल्कुल
0: प्रधानमंत्री
1: बिल्कुल
0: जी के हैं,
1: बिल्कुल।
0: ओकर सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहा।
1: उद्देश्य ये है कि सब जन के माने, सबके बराबर सम्मान दें, और भैया हम जितने भी पंच भैया हैं हमारे सबके सुनने वाले हैं, और उनका हम आज ये चर्चा करें कि एक ही उद्देश्य बाटे कि हम सब प्रण ले, संकल्प ले ले कि हमार सभी के दायित्व बाटे अपने देश के सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं के समझें, और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभावें।
0: एकदम सही कहो राधा बहनी। अच्छा एक बात और है,
1: हाँ
0: ये देखे कभी कभी आप सब देखे तो यहाँ हम सभी देखे थे कि अपने जोन विद्यालय है, विद्यालय में काम से जोन प्रधानाचार्य हरे होते हैं
1: हाँ
0: वही एक टूर ले जाते हैं पर्यटन विद्या
1: हाँ
0: घुमावना
1: हाँ
0: विद्या,
1: हाँ हाँ
0: तो उनका जोन मुख्य उद्देश्य रहता वो यह उद्देश्य रहता कि भैया हम एक दूसरे के संस्कृत के समझी जानी, उनके इतिहास के जानी और उसे एक नई सीख ली।
1: बिल्कुल भैया। देखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बने जब हम सब जागरूक बने, जब हम सब उमर हमार सभी के भागीदारी हुई, तो हमार सब पंच भैया से अरदास यह है कि हम अपने देश के, अपने भारत के श्रेष्ठ भारत बनावे में अपन भूमिका के निर्वहन करें, आगे बढ़ें, एक दूसरे के सम्मान करें। अहे भैया, देखा अपने पंचायती में बात बात कही तो होते ही रही,
0: एकदम
1: और
0: सही
1: जब
0: कहूँ।
1: तक ढोल नगाड़ा नहीं बाजत कुछ नीक नहीं लगा, तो आज के गम नहीं है अपने।
0: आज देखे बहनी पन्ना लाल यादव और संघाती का विकास गीत है
1: हाँ।
0: सोना से बढ़ के, तो हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरिन को सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाए दे भैया।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया।

0: अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
1: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ देखो हो राधा बहनी।
3: हाँ, हाँ भैया
2: देखो कैम से विकास गीतो हो गए और साथ साथ सनेसो हो गए।
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा हम सब बात करत रहे कि खेती किसानी के।
2: हाँ हाँ हाँ।
3: और खेती किसानी के बात अधूरी होत है जब तक किसान भैया लोगन के हम सब बात ना सुनी जाए।
2: एकदम सही कहते हैं।
3: तो आज दिन बा मेरी खेती मेरी बात के।
2: हाँ हाँ।
3: ओमा किसान चर्चा बाटे। प्रगतिशील किसान भैया बाटे विमल प्रकाश जी और रामनाथ सिंह भैया, उनसे शैलेन भैया शैलेन प्रताप सिंह के बातचीत बाटे।
2: हाँ
3: तो हम तुह सुनो और पंच भैया भी सुने।
2: सुनवाए दे
4: पंचो। आज़ादी के एक 70-75-80 साल में किसानन का तमाम अनुभव बाटे, तमाम विकास भ, तमाम प्रयोग भ, प्रयोगशाला में खेती में उतारा गए। मैं दूर आय आया है कि जहाँ एक समय में अन्न अनाज का अपने देश में बहुत कमी रही है, आज वही तमाम क्षेत्र में हम मतलब दूसरे देश का भी अन्न अनाज भेजत ही। और ये सब कुल देन बाटे हरित क्रांति या उकरे बाद से जोन किसानों के बीच में जागरूकता है। और यह जागरूकता के पीछे सबसे बड़ी जोन मजबूती रही वो सूचना कर रही है, जानकारी कर रही है और उनकर प्रयोग धर्मिता कर रही है। और ये सब का जन्म भर चर्चा परिचर्चा से आपस में सब बैठे मिलें का कुछ अच्छा हो इसका कौन तरीके से खेती या खेती आधारित रोजगार धंधा का बढ़ावा दिन जा सकता था। तो यह कुल का देन भर कि आज देश अन्न अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बाटे और बहुत कुछ दूसरे देशों का मदद भी कर रहा बाटे। तो किसान चर्चा में आज के दिन में गर्मी का दिन है, खेत खाली हो चुका है, रबी की फसल कट चुकी बाटे, वो चाहे गेहूँ की बात रही हो, चाहे सरसों की बात रही हो, चाहे दलहन तिलहन का बात रही हो। ऐसा समय में जरूरत यह बात खो तो कि खेत खाली बात तो हमें का कुछ प्रयोग की जाए, खेती किसानी की बात बाटी, जायद की बात बाटी तो हमारा सब्जियन का बात होत है या जोन और दलहन में उड़द बाटे मूंग बाटे इनकर भी खेती की जाए सकत है। साथ ही साथ पशुओं के बड़ी हरा चारा का भी प्रबंध आज के समय बड़ा संकट होते लेकिन करा थे पंचहरे। तो का कुछ कौने तरीके से कही रहा है, का कुछ सोचब है, का कुछ उसके चर्चा पर चर्चा में निष्कर्ष निकलता है, यही कुल विषय पर जानकारी के बड़े चर्चा के बड़े अपने बीच में दुई प्रगतिशील किसान भैया आए हैं। दोनों अलग अलग क्षेत्र से हैं। विमल प्रकाश उपाध्याय जी हैं जो उनके कुंडा प्रतापगढ़ से हैं। भैया आपका कार्यक्रम बहुत स्वागत है। और भैया रामनाथ सिंह करछना प्रयागराज से आए हैं। ये भैया दोनों जगह का माटी अलग अलग है समझता है और दोनों जगह का हम समझे तो माटी के हिसाब से थोड़ा कार्य व्यवहार भी कृषि में अलग अलग हुए। तो भैया उपाध्याय जी सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके यहाँ मुख्य तौर पर काहे काहे खेती की जाता है।
5: भैया हमारे यहाँ मुख्य तौर पर खेती तो मान लें कि ये समय हिरबंजी है, करेला है, नेनुआ है, लौकी है, कोहरा है,
4: मतलब सब्जी का खेती,
5: सब्जी खेती में जायद वाली में
4: जी।
5: और बाकी ऐसी कौनों फसल नहीं है जो हमारे सब के यहाँ होत नहीं।
4: हाँ।
5: इस बड़े की जो हमारे सब के यहाँ की माटी है दोमट मट्टी है
4: जी।
5: तो हमारा पैदावार में कहूँ कोनो दिक्कत नहीं है।
4: और सींचे पाते भी प्रबंध है।
5: सींचे पाते के प्रबंध भैया ही है कि नहर तो है लेकिन कबो आवा तो कबो नहीं आवा तो लगभग हम सब अपन अपन व्यवस्था खुद करे रही था।
4: हाँ,
5: तो हम भैया समर सेबुल लगाए ही और कुसुम योजना में अब एक थे 4 महीना पहले सोलर पंप लिए।
4: बहुत बढ़िया ई बहुत बढ़िया करें हींग लगे ने फिटकरी रंगावे चोखा
5: है भैया।
4: न बिजली के इंतजार करे का ना बल्ब देखे क्या है। अच्छा भैया उपाध्याय जी अब जो हम रवि का तूर रहा है हेमा के साथ गेहूँ खेती कर रहे हैं, मटर का, चना का, काहे का, सरसों का।
5: भैया रवि माँ हम करीब 1.5 बीघा में केवल सरसों बोए रहे हैं।
4: अच्छा
5: सरसों में सरसों और लगभग 3.5 बीघा के आसपास हमारे पास गेहूँ रहा।
4: अच्छा अच्छा।
5: और मटर लगाए रहे लेकिन मटर सब्जी वाली रही।
4: हाँ हाँ।
5: तो का तोड़े बेच ली बाकी आखिरी में खाए हुए के बड़े 1-8 क्विंटल के आसपास रखे हैं।
4: अच्छा
5: बाकी
4: अच्छा।
5: सब बेच डाय रहे सब्जी। हाँ। वाली मटर रही
4: सब्जी वाली
5: सफेद वाली।
4: सफेद वाली
5: जी।
4: तो बाजार भी आसपास में है।
5: बाजारों वहाँ है अब तो दुआरे दुआरे सब घूमत हैं गाड़ी ले है कहूँ जाए जरूरत नहीं है।
4: तो नगद मिल जाता भैया उधारी वाला बात रहा था।
5: नगदों नहीं नहीं नगदों मिल जाता या तो फिर एक ला एक जा।
4: अच्छा अच्छा।
5: जैसे आज हमसे ननुआ लौकी खरीद के लग गए तो हो सका तो आजे लग जाए अगर नहीं हो गया तो क्योंकि हर दूसरे चौथे दिन सब आवत रहा थी।
4: हाँ।
5: तो अगली बार आके दे गया थी।
4: अच्छा और जो ई सहकारी समिति यहाँ जहाँ से खरीद फरोख्त हो तो सरकारी वहाँ पे भी ले जाते ना।

0: अनाज।
1: अनाज ले जाए थे भैया,
0: अच्छा
1: अनाज ले जाए थे, लेकिन सब्जी वब्जी जहाँ है वहीं सब आवा थे ले जाते।
0: बहुत बढ़िया। तो यह समय में काहे काहे के सब्जी टूटती है भैया?
1: अब ये समय भैया 2 बीघा में हिरमंजी बा,
0: अच्छा
1: और 1.5 बीघा में हम लगाए यही लौकी और कोहड़ा। तो लौकी कोहड़ा तो जमीन में बाटे,
0: जी।
1: लेकिन जो है नेनुआ हम ओका चढ़ाई दे ही मचान पर।
0: अच्छा ये
1: तो
0: बड़े
1: 1.5 बीघा में तीनों व्यवस्था बा। तो नेनुआ जो है ऊपर अपन लटक के फरत है, और लौकी और कोहड़ा जो है नीचे।
0: और एक कै सिंचाई में कुल का काम हो
1: हाँ
0: जाता
1: एक
0: है,
1: कैम में, एक कैम में,
0: निकाई गुड़ाई में भी काम चल जाता है एक
1: हाँ
0: कै
1: हाँ
0: में।
1: हाँ सब एक
0: अच्छा
1: कैम में।
0: कितना भैया नेनुआ निकल बाया समय में?
1: नेनुआ एक आध हफ्ता में मान के चलेंगे 40 से 50 किलो।
0: 40 से 50 किलो, और दोबारा ना के
1: और
0: आदमी ले जाते हैं।
1: हाँ, और हिरमंजू लगभग जो है 4 क्विंटल के आसपास हर हफ्ता।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ भैया करेला उरेला भी है?
1: करेला नहीं लाई, लौकी कोहड़ा और नेनुआ
0: अच्छा
1: और हिरमंजी।
0: अच्छा भैया जो खेत खाली है या जो जाय से खेत खाली हुई ओमे का कुछ सोचा था है खरीफ के तौर में?
1: अब भैया जो हमार बेल्टिया है ओमा आप ही जान ले कि धान से ज़्यादा हमरे सब कहती करेला लागत है।
0: अच्छा
1: ये आप जान लें, ये सिंगवेरपुर से लेके एकदम पूरा गंगा किनारे तक
0: हाँ।
1: करेला करेला है। तो 2.5 बीघा हम लगाए थे,
0: अच्छा
1: ऊपरती खेत है उसका जोत के छोड़ दे रहे कि ओमा के जो खरपतवार है सब जड़ जाए।
0: मतलब गर्मी की जुताई कर दी है हाँ।
1: हाँ गेहूं काटे के बाद तुरंत जुताए
0: बहुत बढ़िया
1: जुताई के ओका छोड़ दे रही, और वही 15 जून के आसपास से हमें करेला लगाओ शुरू करब।
0: अच्छा उपाध्याय भैया कि पीढ़ी से परंपरा चली आओ बाटे कि चाहे देव का अगर कृपा हो जाए ना ही तो कुछ छाप छूप पानी डाल के आदमी गर्मी जुताई कर देत रहा है,
1: जी हाँ
0: चाहे पहले हरे से रहा अब तो मान लिया
1: ट्रैक्टर आए।
0: ट्रैक्टर
1: हाँ
0: सचरा बाटे, तो ऐसे लाभ तो बहुत रहा भाई। माटी के जल धारण क्षमता बढ़ जाती, साथ ही साथ जोन अंदर कीड़ा मकोड़ा रहते रहे न दीमक रहते रहे नुकसान करते रहे फसल के, इससे बचाव हो जात रहा है। और साथ ही साथ हम समझी तक जितके पल्ले अपन खाद पात की व्यवस्था बाटे गोबर सूखी हुई ओ का भी छिड़क देते रहें सब, तो जहाँ माटी रहा तूर दर तूर खेती की जात रहा माटी मजबूत हो जात रही और पानी धारण का क्षमता बढ़ जात रही, ताकि खरीफ के फसल में धान पान और केरा ये पानी के चेहरा
1: चेरा
0: तो पानी उनमें बढ़िया लागत रहा वो फसल अच्छी होत रही और रोगों भी याद ना लागत रहा, तो का कुछ अनुभव है आपका?
1: अब देखें जहाँ तक माटी के बात यह है, तो जौन मजा पहले रहा
0: हाँ
1: हल बैल वाले में उतनी जुताई बढ़िया ट्रैक्टर से नहीं हो पावत।
0: हाँ
1: वो मैं
0: भाई
1: कौनो
0: तो
1: कायम हमका गुरेज नहीं बा।
0: कौन से कौन मिला है कि आदमी जोत रहा?
1: हाँ वो कोना उन्ना अब हेमा रहा है वो लंबा लंबा मार दें, लेकिन तब वो प्रयास कीन जात रहे कि 2 दाई 3 दाई में ओका बराबर से गहराई जुताई कराई के वो कीन जा था। तो लेकिन जरूर रहा कि भाई जौन काम 5 दिन में होता रहा वो 5 घंटों नहीं लागत। तो
0: हाँ
1: समय के बचत यह है, और फिर उतना अब लेबरों को उतना नहीं मिलते, तो मैं कई समस्या है। तो कई तो
0: जी
1: समाधान है, और खेती जो ना है जब तक अब धान गेहूँ के भरोसे कब तक बनाई रही,
0: नहीं नहीं भाई
1: तो
0: तो
1: उसे
0: सही
1: काम
0: बात
1: नहीं
0: है।
1: चले क्या है।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: इसलिए अब उस पैटर्न बदल गया है।
0: अच्छा उपाध्याय जी चलें समय समय की बात हो भाई, पहले एक तूर खेती हो या बहुत हो तो दुई तूर हो,
1: 2 से ज़्यादा होता ही नहीं रही।
0: हाँ दुई दुइयों में भी बहुत सीमा में कि बस उतना ही बुआ जो अपने खाए भरे मेहमान के भरे हो जाए बस उतना ही रहा रहा। आज के समय में यह है कि खेत सदै खाली मिलत हो, मूल भाई खेत तो वह बाटे माटी तो वह बाटे, अगर ज़्यादा हो पर भार डूबा और शरीर मजबूत ना है बात तो कमर टूट सकत है, तो माटी भी भाई यह दशा दिशा बाटे, तो माटी मजबूत रहे माटी का जोन मजबूती के आवश्यक तत्व तो है ई का कुछ है ओकरे साथे का कुछ कृषि व्यवहार किन जाए वैज्ञानिक व्यवहार किन जाए, तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो तो माटी के जांच कराओ।
1: जी भैया
0: वैसे जैसे शरीर में लागत कोनो दिकदरिया है तो हम जाए थे डॉक्टर के यहाँ दिखाई थे तो जांच लिखा थे ना, तो यह कहानी मट्टी के बाटे, तो यह स्तर पर आप सबका का प्रयास है?
1: भैया माटी के जहाँ जो ना हमरे सब के यहाँ अभी इस साल तो नहीं आ रहे हैं, नहीं तो ब्लाक से गाड़ी वोड़ी आवत है,
0: अच्छा
1: तो अपन आए के नमूना ले जाती खेते में 4-5 जगह से मट्टी लें, ओका मिलाएं, फिर ओका चौथैया बाटें, फिर मिलाएं फिर बाटें, और बाद 250 ग्राम जब माटी बचे तो ओका लेके चला जाती है आधा किलो तक, और ओके जाँच करके रिपोर्ट तो पहली बार मिल जाता है, और नहीं मिला तो फिर जाए के लिए पड़ा था। और
0: तो
1: उसे ही मालूम हो जाता है कि आप माटी में का कमी है
0: जी
1: भाई। देखा साफ बात यह है, बुखार रहा है तो काहे भरे जाए, पैरासीटामॉल खाए बुखार न चला जाए,
0: मतलब हाँ बीमारी पता हो चाहिए तब उपचार
1: जांच से
0: हो
1: मालूम चले।
0: तब उपचार हो सकता था। हम सभी

0: भाई यहाँ विषय पर पंचन का सोचे का है। अब यह ना है कि भाई देखा पियासा कुआं पास जात है, ये ना है कि दुआरे ना आए तो माटी जांचे न कराओ भाई, ओका जांच सबका करावे चाहिए। ऐसे सबका एक तो किसी का लागत कम होता है, दूसर बात यह है कि माटी का संरचना बनी रहा था, और माटी का संरचना बनी बा, माटी मजबूत बा, तब खेती हो सकता था। बहुत बढ़िया भैया। अच्छा रामनाथ सिंह जी, आपका का कुछ अनुभव है भैया? माटी तो हम सब जी दोमट आपो कहती है, और दलहन के बड़ी बड़ी मुफीद माटी है
1: जी
0: आपके
1: हाँ
0: यहाँ,
1: जी सर,
0: तो का कुछ करें यहाँ इस समय में?
1: ऐसे में इसमें यह हम उर्दी बोए है करीब 15-20 बीसा।
0: अच्छा
1: वह जो है उर्दी फूल ले लेगा, सिंचाई 2 बार सिंचाई किए हैं
0: हाँ
1: और दवा की छिड़काव कर दिए है फसल में, जो कीटा मकोड़ा ने लगा उसकी
0: हाँ
1: छिड़काव कर दिए है
0: कीटनाशक का
1: कीटनाशक दवाई,
0: जी।
1: तो वह फूल के फल ले रही है।
0: अच्छा।
1: और इसके साथ साथ जो है जीवन जिस खेत में आलू लगाए रहे तो वह खेते में नहीं जो है हम मूंग
0: अच्छा
1: मूंग की खेती करे है।
0: उर्द मूंग दिनों
1: हाँ
0: खेती करे
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ
0: तो
1: तब
0: भैया कब तक इनमें फली वली बैठ जाए?
1: भैया आज 15-20 दिन पहले से फल निकल रहा है
0: अच्छा
1: उसमें।
0: फली निकल रहा
1: हाँ
0: है।
1: 2 तोड़ाव हो चुका है, तीसरी अब कल परसों में फिर होए।
0: तो यहाँ भी दवा का छिड़काव करे हैं?
1: यह हमें छिड़काव हल्की से करे रहे बस, इसमें
0: अच्छा
1: चूंकि आलू की जड़ थी उसमें कीट दवा नाशक सब पड़ी थी, इसलिए इसमें कोई कीट मकोड़े की शिकायत नहीं रही।
0: और हम सब्जी तो आलू खेत रहा तो उपज भी अच्छी हुई
1: हाँ बहुत
0: होगा।
1: बढ़िया, इसलिए चौथी मतलब अब कल अकाल पर्व में चौथी तोड़ाई होगी उसकी।
0: माटी कमाना है तो
1: हाँ
0: ये फसल में
1: हाँ
0: ओकर
1: बहुत
0: फायदा
1: बढ़िया,
0: मिलता है।
1: बड़े छीमी हैं, बड़े अच्छी किस्म
0: अच्छा
1: के बीज मिल
0: रामनाथ
1: गए भाई
0: भैया या उपाध्याय जी, एक बात आप सबसे जाने क्या है,
1: जी।
0: कीटनाशक ठीक है भाई ओकर प्रयोग होत है, मूल कीटनाशक कतहुन कतहुन फसल का माटी के दिनों को भाई नुकसान करत है। दूसर बात यह है कि लागत भी बढ़ावत खेते का भाई, मुफ्त में तावत नहीं। तीसर बात यह है कि एक छिड़काव में अगर सावधानी न बरते, समय का हवा का ख्याल न रखे, तो अपनों को नुकसान हो सकता है। एकर एक भैया विकल्प निकला जो उनकी परिपाटी से रहा है, मने बीच में भूल गया रहा, वो रहा कि गोमूत्र का छिड़काव करब, या नीम का जोन खली यह है या नीम का जोन पाती यह है, ऐसे रसायन बनाए के छिड़काव की जात रहा, और कतहूँ ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा जैविक है, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ स्तर पर भी आप सबका या सब पंचन का सोचे जरूरत बाटे,
1: सर,
0: खेती का लागत
1: बहुत
0: घटत
1: जरूरी
0: है।
1: है।
0: दूसर बात यह है कि गाय बछेरू अपने दुआरे बनाए यहाँ, नीम का पेड़ है ये है, ओकर फाती झरत ना झरत तो तोड़ के पाती ओकर, और मैं कुछ ना करे क्या भाई, रात भर भिगोए का सवेरे का उबाल के ठंडा करके पानी मिला के छिड़काव करे क्या है। तो इसे कह रहे हैं कि खेती में बहुत कुछ जैविकता का प्रभाव हो और खेती अच्छी हो। अच्छा भैया ओकरे बाद का करवा फिर, ये फसल जब हट जाए तो कहा जात कि जहाँ उर्द या मूंग बोई जात है ओमे नत्रजन का मात्रा बढ़ जात
1: बढ़िया
0: माटी
1: था,
0: में।
1: बढ़िया था। अब इसके बाद भैया अब जोने मुर्दी बोई बा
0: हाँ
1: वो हमें हम अब नर्सरी धान की फसल की डालेंगे।
0: अच्छा
1: हाँ जो का जोत बने के ठीक
0: तो
1: घाम
0: कब तक खाली हो जाए उर्द वाला खेत?
1: और खेत ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में खाली हो जाए।
0: 20 दिन में
1: हाँ
0: ओकरे बाद ओका तैयार
1: तय
0: कीजिए
1: तो जोत
0: ओमे
1: बने के एकदम बढ़िया कई बाह कई के
0: कितना रकबा का भरे डब्बा
1: 6 बीघा के,
0: छबिया
1: छः
0: रख
1: बीघा
0: भरे?
1: धान की उसमें हम बिया डालेंगे।
0: तो भैया बिया का अपना है कि बाजार से लावत है?
1: नहीं हर साल
0: नवा
1: नया
0: बिया
1: बीज के इस्तेमाल किया जाता है
0: तो
1: धान के लिए।
0: लाए के ओका का शोधित करत है
1: हाँ
0: कि
1: नहीं
0: शोधित
1: वो
0: रहत है?
1: शोधित रहता है, वो
0: अच्छा
1: शोधित रहता है, उसको ले जा करके भुगे दिया जाता है 14 घंटा 18 घंटा,
0: हाँ
1: उसके बाद उसको निकाल के पानी से ढक ढक दिया जाता है।
0: बोरा ढाक दे
1: हाँ
0: दिन तो
1: धन्यवाद।
0: अंकुरित हो
1: हाँ
0: जात फिर दवाई में।
1: तड़त अंकुरित होएगा तो खेत रेडी बढ़िया कराए रही, उसके बाद जो है पानी भरे, पानी भर के हेंगाए पाटा दिए, पाटा दिए के बाद ओका जोत के छोड़ हेंगाई छोड़ दिया।
0: तो ये
1: जैसे रात भर बीत गया तो सुबह बिया डाला,
0: बहुत बढ़िया ये बताएं
1: इसलिए कि जब ऐसे बोएंगे तो वो ज़्यादा नीचे बीज नहीं पड़ेगा
0: जी,
1: और उखाड़ने में बहुत अच्छा
0: आसानी
1: वो
0: रहा,
1: रहता
0: आसानी रहा था
1: था।
0: कहे। अब अगर भाई बिहन उखाड़ समय ओकर जड़ टूट गई
1: हाँ तो
0: तो
1: नुकसान।
0: बेकार हो जाता है। अच्छा एक चीज जानना चाहब कि एक बिया डूबा कि अलग अलग
1: नहीं 3 वैरायटी,
0: 3 वैरायटी, वो
1: 93,
0: कौन कौन भैया कौन है उद्देश्य से?
1: 64, 44 सोनम और एक मोटा धान जया।
0: अच्छा तो मैं सबसे ज्यादा उत्पादन किकर होता भैया
1: जया का होता
0: जया
1: सबसे
0: को
1: ज्यादा।
0: होता,
1: हाँ
0: तो वो का बेचबा कि घर के
1: वो
0: बेचबा?
1: सब भैया ये सेंटर पर पहले ओकर

0: थे कि
1: तो दाम
0: कुल
1: अलग अलग हुए सबका।
0: ओका दाम जो गवर्नमेंट का रेट होता है सेंटर पर भेजी था
1: हाँ,
0: ओका बेचे भरे।
1: बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। गेहूं खेती कर रहे हैं ना?
0: हाँ गेहूँ खेती की है,
1: कितना रहा भैया?
0: 5.5 बीघे।
1: 5.5। कैसा रहा फसल? तो यहाँ
0: अच्छी
1: सब अच्छी
0: फसल,
1: रही है।
0: बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी फसल, इस वर्ष जैसा कभी गेहूँ ही नहीं हुआ जैसे
1: बहुत
0: इस वर्ष फसल
1: कोनो
0: हुई है,
1: रोग ब्याध ना लगे,
0: कोई
1: फसल
0: गिरे
1: अच्छी
0: नहीं।
1: रही।
0: हाँ बहुत
1: वहाँ
0: बढ़िया।
1: समझित है, जो हवा बहु खा या जो पथरा पड़ा है, ये फसल कटे दमाई के बाद भाई,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: नुकसान भी
0: कोई
1: ना रहे।
0: नुकसान नहीं हुआ
1: तो
0: है।
1: भंडारण कर लिए हैं अच्छे
0: हाँ
1: से?
0: भंडारण कर लिए हैं, ये अब तो केवल भंडारण खाए पिए कि भैया, अब प्लस बिया के लिए उतना भंडारण किया जाता है, शेष सेंटर पर
1: बेचे
0: सरकारी
1: जाते।
0: सेंटर पर भेज के ओकर पहले से टोकन ले लिया जाता, जन तैयार भर ले के लाद के ले गए वहाँ, तौल कराए देना और चेक मिल गया, चेक खाते में लगा दिया, वो पैसा खाते
1: पैसा
0: में
1: मिल गया
0: मिल
1: ना?
0: गया।
1: भाव तो बढ़िया भाई, कुल मिला के
0: हाँ
1: उद्देश्य यही रहा था कि
0: हाँ
1: पैसा अपने
0: हाँ
1: खाता तक, अपने
0: हाँ
1: जेबा तक आ जाए। और सही
0: यही हाल
1: बात।
0: धान में भी है
1: अब
0: कि
1: से
0: धान भी सटकवान तैयार भर सुखाए, उसके बाद उसके बोरी ले आकर भर भर के सेंटर पर
1: अच्छा भैया,
0: उसी
1: रामनाथ जी कितना साल से खेती करते हैं आप?
0: 14-14 साल से ही तब से खेती कर रहे
1: चौदह
0: हैं।
1: साल से खेती
0: जी
1: करते हैं।
0: जी
1: पहले की व्यवस्था ही रही कि उधार बाड़ी पे खेती होत रही है।
0: जी
1: आप नहीं तो आपके पिताजी वगैरह या
0: हाँ
1: वहाँ पीढ़ी के लोग बतावत हैं,
0: हाँ
1: तो ऐसे में हो का कि फसल कटी सोरहटा पे आदमी उठा ले जात रहा, फिर आगे पीछे साल 2 साल कभो को ना ही मिलता रहा है।
0: लेकिन अभी सब ना ही रहेगा
1: अब
0: साहब।
1: जो खेत खाता में पैसा आवा तो हमें कौन बिचौलियत ना लगती,
0: नहीं सर,
1: सीधे सीधे
0: सीधे
1: खाता में आ जा,
0: सीधे सीधे खत्म पैसा आ जाता है।
1: अपन निकारा फिर इस्तेमाल करा।
0: जी
1: हम समझे थे से जो किसान क्रेडिट कार्ड बांटे
0: जी
1: ए सी सी,
0: जी
1: ओमे
0: वो
1: भी
0: भी
1: मदद मिलत है,
0: जी किसान क्रेडिट कार्ड 4 लाख के बनवाए सर।
1: ओमे भी मदद मिलत
0: हम
1: भाई।
0: बहुत
1: आपका
0: मदद मिल
1: क्रेडिट
0: है।
1: अच्छी बनत है
0: अच्छा
1: ना,
0: हाँ
1: कि आवत है पेमेंट
0: हाँ
1: करे
0: पेमेंट
1: जाता है,
0: उधर
1: चुकता
0: धान
1: करे
0: बेचे
1: जाता
0: सेंटर पर ले गए, पहले एक टोकन ले लिया, टोकन लेने के बाद डेट दे गए, फला दिन ले आइए, उस दिन गए तौल हो गया
1: जी।
0: और चेक बन गया, चेक हमको उपलब्ध करा दिया, हम खाते में लगा दिया, पैसा सुरक्षित खाते में चला जाता है।
1: अच्छा भैया, माटी मजबूत बनी रहे तो माटी की जांच करावे चाहिए, वहाँ हिसाब से
0: हाँ
1: कार्य व्यवहार
0: हाँ
1: करे
0: कार
1: चाहिए।
0: व्यवहार चल रही है सही।
1: मूल कुछ चीज़ ऐसा ना है जैसे कि अब क्यों मने दूध खाए और फल खाए रोटी खाए, तो भाई ये दूध पिए तो हम सब्जी सबसे मजबूत रहते हैं
0: सबसे
1: तो
0: सबसे मजबूत और है भैया निरोगित रहेगा।
1: निरोगी रहे। तो यह बात है खेती के साथ से अगर माटी में गोबर का प्रयोग, सड़े गोबर का प्रयोग हुए या और जैविक खाद का प्रयोग हुए, केचुआ खाद बांटे, कंपोस्ट का खाद बांटे, तो यहाँ स्तर पे आप सब का करत है
0: स्तर पर भैया अब जैसे गर्मी है बाहर
1: जी?
0: ना,
1: हाँ
0: इस समय ढैंचा के बिया
1: हाँ
0: खोज रहे हैं।
1: हाँ ढैंचा या सनई
0: हाँ
1: या जो कंपोस्ट का खाद बांटे, गोबर का खाद बांटे, ये जो जीराती खाद या जिका अंग्रेजी खाद कहा जात है, अगर हम दोनों का तुलना करी तो कितना अच्छा पड़ा था ये खेती का लागत, उत्पादन, गुणवत्ता, खाए पिए में जो स्वाद बांटे।
0: इससे ज़्यादा है खेत और जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है उसका गुणवत्ता बहुत नुकसानदायक है।
1: उत्पादन में कोनो फर्क पड़ता है?
0: उत्पादन में जो अब हम अपने गोबर की खाद डालेंगे उसकी उपयोगिता बहुत अच्छी रहेगी, बहुत निरोगित रहेगा, लेकिन जो आप खाद हम सब डालते हैं यूरिया डाई जिंक सल्फर ये सब जो है उतने
1: उपयोगी ना है,
0: उपयोगी नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
1: हानिकार।
0: खाद।
1: अच्छा उपाध्याय जी, भैया एक बात आपसे जानना चाहे, आप कुंडा कहाँ है? कुंडा में बाग बगीचा बहुत बाटे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: औरा का है, आम का
0: बिल्कुल
1: बाटे, और तो का है आपकी यहाँ स्थिति?
0: लगभग 4.5 बीघा में आम आंवला दोनों है।
1: अच्छा,
0: तो लेकिन अब की बार तो आम गड़बड़ाई का मामला, जब 4-5 दिन पहले आंधी आए हैं
1: हाँ,
0: तो मान के चले कि लगभग 20 कुंटल आम
1: खराब हुई है।
0: हमारे गिरा है।
1: हाँ,
0: मान के आधी फसल
1: खराब
0: गड़बड़ानी
1: हुई है।
0: है।
1: अच्छा, भाई आधी फसल बा
0: हाँ, आधी है, आधी गिर गया है।
1: का चौसा है? चौसा लगाए हैं?
0: ना ना ना, सब आए, दशहरी, चौसा,
1: अच्छा,
0: फजली,
1: सब मिला।
0: राम, अभी जो ना है 4 साल पहले लगाए राम केला 15-20 पेड़,
1: अच्छा
0: पिछले साल लगाए आम रूपाली 10 पेड़ ले आए के, तो जहाँ जो नई पुरनकन पेड़ जब गिरे थे
1: हाँ, तो वहाँ नवा
0: तो
1: लगाए
0: उनका नवा वाला लगाए थे,
1: बहुत बढ़िया
0: तो
1: कहे
0: चालीस
1: और
0: पचास पेड़ लगभग आम के आए और चल से 50 लगभग आम ला के आए।
1: तो आंवला तो भैया आपकी ठीक रहा,
0: आंवला ठीक रहा?
1: आंवला से तो ठीक ठाक मिली हुए।
0: हाँ, अब जौन ऊपर बढ़ रहा।
1: नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हम समझते भाई, देखा
0: खेत
1: खेती और ख़ास तौर पर जो पुरानी खेती बाटे
0: जी
1: मोटा अनाज का,
0: जी
1: गेहूं धान से थोड़ा सा अलग हटके भी सोचे कहा।

0: खास तौर पे खेती आधारित या जेका कृषि विविधीकरण कहते हैं, ओ पर भी पंचन के गौर विचार करे के है। आप दिनों जनायन आपन आपन अनुभव चर्चा में बतायन पंचन के, हम समझित पंचरे से सीखी हैं और लाभ ली हैं। आपका दिनों को जन का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ देखो हो भैया का नाम से किसान चर्चा रहन, मेरी खेती मेरी बात में बिमल प्रकाश और रामनाथ सिंह भैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह के बातचीत रही।
2: कितना फरियाए के बतियाएन, और जब कौनो किसान हम लोगों से बात कराते हैं,
1: हाँ
2: पंच
1: हाँ
2: भैया उनके सुनत हैं,
1: हाँ हाँ
2: तो
1: हाँ
2: कुछ ना कुछ नवा सीखे के मिलत है
1: एकदम
2: कि
1: सही है।
2: कैसे किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल देखा हमारे किसान भैया लोग करते हैं,
1: हाँ।
2: प्रगतिशील किसान भैया कैसे अपनी कम जगह में उन्नत खेती कर लेते हैं,
1: एकदम
2: प्राकृतिक खेती करते हैं, और
1: हाँ
2: देखा रासायनिक खाद के कम से कम इस्तेमाल करते
1: हाँ
2: हैं।
1: हाँ हाँ देखा रासायनिक खाद का अगर कम प्रयोग होता है तो उसे यह है कनम से कि जो अन्न पैदा होता है वो देखा कनम से बढ़िया रहता, उसे रोग भी आज कम होते हो।
2: बिल्कुल भैया, देखा भैया हम लोग शुरुआत में बात करते रहे कि कितनी गर्मी पड़त है, और गर्मी में सबसे ज़्यादा असर पड़त है अपने खेती किसानी के, और उससे भी ज़्यादा असर पड़त है जो हमारे पशुअन हैं,
1: हाँ हाँ
2: और
1: हाँ
2: पशुपालक भैया के बहुत जिम्मेदारी बाटे कि गर्मी में अपन पशुअन के खास देखभाल करें।
1: एकदम सही कहो बहनी। तो आज वार्ता में गर्मी में पशुओं की देखभाल में डॉक्टर हरिशंकर राय से दीवानदू सिंह सिवाच का बातचीत है। हम सोचे थे कि सन भैया बहनी हरण सुनवा दिया जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवा दे भैया।
3: देखा किसान भाई, आप लोग खेती करते हैं और खेती के साथ साथ पशुपालन का भी बड़ा महत्व होता है और बहुत ज़रूरी होता है कि आप पशुपालन भी करें। इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में पशुओं का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, और इसीलिए आज की गर्मी में पशुओं को रखने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, इसके लिए हमने उपनिदेशक पशुपालन जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं डॉक्टर HS राय जी को हमने बुलाया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत बा। ये जानत चाहिए कि जो हमारे कृषक भाई हैं इस भीषण गर्मी में अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए किन-किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
4: किसान भाइयों, इस देश में पशु अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और हमारी राष्ट्र सम्पदा की एक बहुत मूल्य कड़ी हैं। गर्मियों में पशुओं की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए। गर्मियों में गर्मी से जानवरों को बहुत कष्ट होता है, गर्मी बढ़ने के कारण पशु बेहाल हो जाता है, पशु गर्मी के कारण हाँफने लगता है। पशुओं को गर्मियों से उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए जहाँ ठंडा हो। पशु के आवास में प्रत्येक गाय और भैंस के लिए 5.5 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा जगह होना चाहिए। पशुओं के घर का फर्श खुरदुरा कंक्रीट का होना चाहिए और पीछे की तरफ ढलान होनी चाहिए जिसकी प्रत्येक दिन सफाई करनी चाहिए, तथा किसान भाइयों कीटाणुनाशक दवाओं से फर्श को धोते रहना चाहिए। पशुओं की छत 10 फीट ऊंची होनी चाहिए, छत फूस या ईंट की बनी होनी चाहिए। पशुओं का घर पश्चिम में दीवार और 3 तरफ से खुला होना चाहिए। पश्चिम दीवार पर गहरा नाद पानी से भरा हुआ, स्वच्छ पानी भरा होना चाहिए, उसमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पशुओं को कभी भी तालाब का गंदा पानी नहीं पिलाना चाहिए। पशुओं को पेड़ की छाया में सबसे अधिक आराम मिलता है, इसके लिए पशु घर के बाहर 2-3 छायादार नीम के पेड़ की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं को पेड़ की छाया में सबसे अधिक आराम मिलता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने छोटे किसानों के लिए एनिमल कूलिंग सिस्टम जो 4 से 10 वर्षों के लिए पर्याप्त होता है बनवाया है। गर्मियों में पशुओं के लिए स्वच्छ ताज़ा पानी बहुत महत्व रखता है शरीर को, और 24 घंटा छाया में नाद में पानी उपलब्ध होना चाहिए। गर्मियों में भैंस तथा संकर पशुओं को 2 बार नहलाना चाहिए। व्यस्त पशु जो अपने शरीर से डेवलप्ड हैं 75 से 80 लीटर तक पानी पीते हैं। पानी का महत्व बहुत ही गर्मियों में रखता है, आहार को पचाने के लिए, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए, और मूत्र द्वारा अवांछित एवं जहरीले तत्वों को निकालने के लिए आवश्यक होता है। गर्मियों में तापक्रम को नियंत्रित रखने के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। दुधार पशुओं को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए उन पर गर्मी का प्रभाव कम हो, पशुओं को सूरज की सीधी किरणें और गर्म हवा के थपेड़े न पड़ने पाए। प्रत्येक पशु को 15 से 20 किलोग्राम तक हरा चारा देना चाहिए।

0: एक व्यस्त पशु को 6 किलोग्राम सूखा चारा भूसा देना चाहिए। हरा चारा 15 से 20 किलोग्राम जो है दिया जाएगा, उस वो फूल लगने के पहले ही काट करके खिलाया जाए। सूखा हरा चारा एवं पशु आहार खनिज लवण मिलाकर के सानी बना के 3-4 बार में खिलाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि जो पशु हैं हमारे किसान भाई जो पशु रखते हैं उन्हें किस किस तरह से रखना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, उनका जो रखने का स्थान है वो कैसा होना चाहिए। आपने ये भी बताया कि क्या क्या खिलाना चाहिए और किस तरह से उन्हें पानी पिलाना चाहिए, नहलाना चाहिए। हमारे देश में इस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और लू बहुत चलती है, इससे बचाने के लिए किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए?
0: देखिए, गर्मियों में लू लगने की शिकायत पशुओं में बहुत ज्यादा मिलती है। पशु खाना छोड़ देते हैं, पशु अधिक पानी पीता है, दूध कम कर देता है या बंद कर देता है, लू लगने से पशु मर जाते हैं। इसके लक्षण हांफने लगता है, सुस्त पड़ जाता है, खाना बंद कर देते हैं, और इसके उपाय के लिए कुशल प्रबंधन द्वारा पशुओं को बचाया जा सकता है। जैसे आवास पूरा पश्चिम का होना चाहिए, लंबे नीम का पेड़ होना चाहिए, खिड़कियों के बाहर टाट लगा देना चाहिए जिस पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, आहार पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, पानी में इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक और बड़ी समस्या आती है इस समय, इस गर्मी के मौसम में गांव में बहुत ज्यादा आग लग जाती है, हादसे हो जाते हैं जिसमें आग लग जाती है, उसमें पशुओं का बड़ा नुकसान होता है। किसान भाइयों को आग से बचने के लिए और आग से पशुओं को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए?
0: किसान भाइयों, गर्मियों में ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं और इसमें इनका जीवन प्रभावित होता है। बड़ी संख्या में पशु मर जाते हैं जिसकी चिकित्सा एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। पशुपालक भाइयों को चाहिए कि चूल्हे की आग ढक कर रखें, पशुओं को पशु घर के बाहर रखें, कुछ को छाया और बगीचे में रखें। आग लगने पर तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिसमें बर्न आइनमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स उपलब्ध कराया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, जो गर्मियों में एक और बहुत बड़ी समस्या आती है पशुओं से संबंधित, वो ये होती है कि जो चारा होता है पशुओं का हरा चारा, वो अक्सर जहरीला हो जाता है। तो एक तो ये बताएं कि ये क्यों हो जाता है, जिससे हमारे किसान भाई सावधानी रख सकें, और अगर हो जाता है तो किस किस तरह की और सावधानियां रखनी चाहिए?
0: पशुपालक भाइयों, गर्मियों के दिनों में ज्वार बाजरा MP छदी जिसका बढ़ाव रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कारण ये पड़ता है कि जहां बोया गया है ट्यूबवेल खराब हो जाता है, पानी न मिल पाए, तो उसमें एक तरह का जहरीला पदार्थ पैदा हो जाता है जिसका नाम हाइड्रोसाइनिक एसिड पॉइजनिंग कहलाता है, जिसको खाने से लगभग 80% पशु मर जाते हैं। इसके प्रभावित पशु जो है लड़खड़ाने लगता है, चक्कर खा के गिर जाता है, दांतों को किटकिटाने लगता है और बार बार पशु चौंकता है, सांस तेज लेता है, आंखें नीली पड़ जाती हैं, पशु बेहोश हो जाता है। इसके इलाज के लिए 50 से 60 ग्राम एक केमिकल आता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको 1 लीटर पानी में घोल के पिलाना चाहिए। छोटे पशुओं को 15 से 20 ग्राम पानी पिलाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक ये है कि फिर जैसे ये मौसम खत्म होता है तो फिर बरसात शुरू हो जाती है, और उसमें फिर एकदम से जो मौसम बदलता है उसमें फिर से जो पशु होते हैं उनको परेशानी होने लगती है। किसान भाई हैं, उनको आगामी मौसम का ध्यान रखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: पशुपालक भाइयों, गर्मियों में संक्रमण रोग जो बरसात में होते हैं उनके बचाव के लिए, जैसे वो रोग होते हैं गला घोटू, जैसे आप लोग जानते होंगे, लंगड़िया है, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुँह पका है, इसका टीका लगवा लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ भेड़ों में इंट्रोटॉक्सिमिया नाम का रोग होता है, उसका भी टीका लगवा लेना चाहिए। बरसात में पशुओं को परजीवी से बचाव के लिए डिवर्मर आते हैं पेट के कीड़े का, जिगर के कीड़े का, उसकी दवा पिलवा लेना चाहिए, और पशुओं के आवास को कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव हमेशा करते रहना चाहिए। पशुपालक भाइयों, पशुपालन रोजी रोटी से जुड़ा हुआ विभाग है जिसका मुख्य उद्देश्य पशुओं का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, ग्रामीण अंचल में लगे पशुपालक भाइयों का पोषण स्तर सुधर सके, आर्थिक स्तर में सुधार आवे और बेरोजगारी दूर हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, और गांव में खुशहाली लाई जा सके।
1: हमें उम्मीद है अगर हमारे कृषक भाई जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है उस तरह से अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनके पशु सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, देखो हो राधा बहन, एक वार्ता रही गर्मियों में पशुओं की देखभाल, डॉक्टर हरिशंकर राय से दीपेंद्र सिंह शिवाच जी का बातचीत रही।
3: बातचीत कितनी बढ़िया रही, कैसे ये समय हम सब अपने पशुओं के बचाव कर सके थे, उनका देखभाल कर सके थे, कितनी जरूरी

0: बातचीत रही और फरियाए फरियाए के दीपेंद्र सिंह भैया बतियाएं डॉक्टर हरिशंकर राय से और हम सब है कि उनसे सीख लेके जाए।
1: एकदम सही कहो। देखे मुख्य बातन में सबसे बड़ी बात ये रही हूँ राधा बहनी, कि जौन हमारे किसान भैया बहनी हरे हैं, जौन हरा चारा बोए हैं, ओके लेके लेके आवत है ना, ओकरे बाद कनम से तुरंत जानवर के काट के बाल के डाल देते हैं, तो ऐसे ये है कि नुकसान कही जाता है वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, उमा ध्यान धरें ओका ठंडा कह के खिलावें, साथे साथ ताजा पानी खिलावें।
1: हाँ, और साथ साथ एक बात और है कि देखा इस समय आनी बौखा का भी समय हुआ,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: गर्मी
0: भैया,
1: के साथ साथ कभों भी तूफान आ जाता है, तो ऐसे ये है कि किसान भैया बहनी हरे जो है ना, अपन जानवर जो बांधे हैं कि तय कम से बढ़िया जगह बांधें, ताकि कम से दुर्घटना हुए से बचा
0: और
1: जा
0: पशुअन
1: सके।
0: के साथे साथे अपनों ध्यान धरें,
1: हाँ
0: सवेरे संध्या सिंचाई करें, सवेरे संध्या खेत के देखभाल करें और अपन
1: हाँ
0: सभी के ख्याल रखें। चले चलावत, एक बात हम अपने किसान भैया हरे से पंच भैया से कहे जाप
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: देखा ये सब पंचायत घर कार्यक्रम आपके अपन कार्यक्रम बाटे,
1: हाँ हाँ
0: इमें
1: हाँ
0: करनों तरह के जानकारी चाहिए, सुझाव प्रतिक्रिया दे के चाहें
1: हाँ हाँ
0: तो हमारे सभी के व्हाट्सएप नंबर आ है
1: हाँ
0: 800-4926-250।
1: एक बार फिर से सुन ले, 800-4926-250।
0: ए पर आप सभी अपन सुझाव प्रतिक्रिया व्हाट्सएप कर सकते हैं,
1: हाँ
0: साथ ही साथ हमारे सभी के आकाशवाणी प्रयागराज के फेसबुक पेज पर जा करके कमेंट करके अपन कोनो जानकारी प्राप्त करे के हुए कोनो सुझाव दे के है दे सकते हैं।
1: हाँ
0: और देखा भैया
1: चले चला कर बिला होता है, तो पंचो हरे से विदा लिया जाए,
0: तो
1: पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हम थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों,

0: के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों

0: सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस्ड श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जनप्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे

0: में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
1: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
0: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शैलेश कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर विजयानंद से उनका काव्य पाठ। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए शैलेश कुमार श्रीवास्तव का काव्य पाठ।
3: मैं कुछ मुक्तक से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ कर रहा हूँ। जिंदगी थोड़ी सरल लिखता हूँ, जीने की खातिर गजल लिखता हूँ। पीड़ा होती जितनी घनी भूत, कविता मैं उतनी विरल लिखता हूँ। मात्र दाना व रोटी हो गई, जिंदगी कितनी छोटी हो गई। जी लेते हैं जमीर खोकर, खाल सबकी मोटी हो गई। मेरा अगला मुक्तक है, शायद गम ऐसे बहलाना पड़ता है, मन हो या कि ना हो मुस्कुराना पड़ता है। माना खुशियों की जय एक सीमा होती है, सपनों की चादर तो फैलाना पड़ता है। दोस्त, इंसानियत का ये फर्ज निभा देना, कोई मुस्कुराए तो तुम भी मुस्कुरा देना। नफरत की खिड़कियां मैं बंद किए देता हूँ, मोहब्बत की सांकल तुम खटखटा देना। मेरा अगला मुक्तक इसी सिलसिले का है कि त्योरियां चढ़ाना भी प्रचलन हो गया, कितना यांत्रिक मानव जीवन हो गया। मुस्कुराता है नफा नुकसान देखकर, आदमी भी आज एक विज्ञापन हो गया। एक और मुक्तक, जीवन की वक्रता में मत पड़ा करो, एक रेखा खींचो और उसे बड़ा करो। जाति धर्म ऊंच नीच सब जय व्यर्थ, हो सके मानवता के लिए अड़ा करो। एक और मुक्तक इसी सिलसिले का कि हालात और बदतर हो जाते, हम भी अगर पत्थर हो जाते। फूलों से भी लग जाती है चोट,

तो क्या जय हम नस्तर हो जाते। दुनिया से निस्बत की खातिर, जीस्त की अजमत की खातिर, जीता हूँ जय मैं शिद्दत से, सबसे मोहब्बत की खातिर। जीवन के उतार चढ़ाव न देखना, अपनों के दिए हुए घाव न देखना, हद से ज़्यादा मुख्तसर है ये सफ़र, रुक कर जय कभी पड़ाव न देखना। काफ़ी कुछ यहाँ खोना पड़ता है, फिर भी जीवन संजोना पड़ता है, इस दिल को संभालने की खातिर आँखों को जय भिगोना पड़ता है। निज भाषा से ही मान होता है, सम्मान होता है, दूसरे के स्वर से कब कोई महान होता है। बदल जाती है जहाँ पर हर दो कोस पर वाणी, वह तो जय अपना देश हिंदुस्तान होता है। हिंदी बोलने में अब होने लगा गर्व, हर्ष की बढ़ रहा निज भाषा का वर्चस्व, प्रतीक्षित क्यों रहे एक माह की एक तिथि, हिंदी बोलकर चलो मनाएं प्रतिदिन हिंदी पर्व। मेरी एक गजल है, उसका उन्वान है, मतला है कि खुद को इस तरह शाद रखता हूँ, दिल दर्द से आबाद रखता हूँ, इश्क यूं पाता बुलंदी मुझसे, हर चीज उसके बाद रखता हूँ। गंगा जमुनी तहजीब है मुझमें, दिल में इलाहाबाद रखता हूँ, सुन पाता हूँ मैं धड़कने अपनी, फालतू के नहीं नाद रखता हूँ, घुस सकती नहीं फिरका परस्ती क्यों, जहन को आजाद रखता हूँ, आँखों में जहाँ हो तरलता कुछ, ऐसे दिल की फरियाद रखता हूँ, हो सकती नहीं तू मैं जय, इस तरह मैं संवाद रखता हूँ। एक अगली गजल का मतला है कि किरदार की यूं हिफाजत रखी, मैंने कभी ना अदावत रखी, दौलत झुका पाएगी कब उसे, जिसने जमीर की अमानत रखी, बिगड़े ना ताल्लुक हालात से, पास की दुनिया सलामत रखी, मैं जी सकूं अपने तरीके से, इसलिए खुद से बगावत रखी, बस हूँ जहाँ ख्वाबों की बुलंदी, रहने को ऐसी इमारत रखी, लब पे ना आया कभी नाम जय, वफा की ऐसी अमानत रखी। मेरी अगली कविता का शीर्षक ही है कविता। सफलता कभी चढ़ नहीं पाती मेरे सिर तक, खुशियों को नाचने नहीं देता मैं देर तक, मायूसी सटने का भी करती नहीं कभी प्रयास, दर्द भी घुलने नहीं पाता हृदय के भीतर तक, स्मृतियां अवश्य चाहती हैं चिपकना, किंतु रहता हूँ मैं इतना खुश्क, झर जाती हैं उदासियाँ भी, आँखों की तरलता बनती नहीं कभी बाधक किसी क्षण की महत्ता में, इसीलिए लिख पाता हूँ मैं कोई कविता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है साहित्यिक ज्वर। मन हो रहा था अधीर, इतने दिन हो गए बिस्तर पर, किसी ने नहीं लिया मेरा हाल चाल, सोच रहा था मैं लेटे लेटे यही सब, कैसे समझूं कोई आया नहीं इस बीमार का जानने हाल, खुसरो चले आए मेरी खाट तक, गालिब आकर बैठ गए मेरे सिरहाने, मीर ने पूछी तकलीफ मेरी, दाग देने लगे हिदायतें, फिराक सुना रहे थे शेर, फैज ने पूछा कैसे हो जाए मियाँ, शहर यार ने कहा, इकबाल बता रहे थे कि मंटो का फोन आया था, प्रेमचंद खड़े थे चुप कुछ सोचते हुए, अमृता भी आई और खड़ी हो गई पीछे,

0: काला चटाई पर बैठे पीस रहे थे कोई दवा। दुष्यंत ने पूछ लिया उनसे नुस्खा। अज्ञे देख रहे थे सबको बार बार। अमरकांत बता रहे थे सबसे तबीयत मेरी। उपेंद्र अश्क रोए जा रहे थे जार जार। इब्राहिम अश्क ने पकड़ रखा था हाथ मेरा। अकबर कोशिश में थे माहौल हो हल्का फुल्का। धर्मवीर कह रहे थे हो गई है खबर कृष्ण चंद्र को। टैगोर बुदबुदा रहे थे कुछ खुद से। अहमद फराज ने पकड़ रखी थी नब्ज मेरी। नागार्जुन चिल्ला रहे थे पता नहीं क्या क्या। परवीन शाकिर लग रही थी अशांत। पंत बैठे थे आंखें मूंदे प्रसाद फेर रहे थे माला। कबीर लगा रहे थे चक्कर खाट के। नीरज संभाले नहीं संभल रहे थे। निदा फाजली थे कुछ ज्यादा गंभीर। महादेवी चिल्लाई कि बुलाओ कोई पीर। कुंवर नारायण ने तब तोड़ी चुप्पी। बोले बच्चन गए हैं लिवाने डॉक्टर। इतने में राहत ने कहा शैलेंद्र आ गए हसरत के साथ। तभी खुल गई नींद मेरी और दीगर शायर अदीब आने लगे याद। कहीं बज रहा था गाना चप्पा चप्पा चरखा चले। मैंने पाया उतर गया था मेरा बुखार। धन्यवाद।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शैलेश कुमार श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ। और लीजिए अब सुनिए डॉक्टर विजयानंद तिवारी का काव्य पाठ।
2: मेरी कविता का शीर्षक है कविता। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता। निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता। निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता। भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं। भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं। सीताएं तब जन्मा करती जब पाप घड़ों में भरते हैं। सीताएं तब जन्मा करती जब पाप घड़ों में भरते हैं। जब पर्ण कुटियों की सीताएं, जब पर्ण कुटियों की सीताएं सोने का लालच करती। जब पर्ण कुटियों की सीताएं सोने का लालच करती तब तब रावण आ जाता है। सीताएं तभी हरी जाती तब तब रावण आ जाता है। सीताएं तभी हरी जाती फिर रावण राम युद्ध होता राम कथा बन जाती है। फिर रावण राम युद्ध होता राम कथा बन जाती है। पर क्रौंच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है। पर क्रौंच वध की करुणा से ही कविता बन पाती है। रामायण और महाभारत साकेत और उर्वशी कथा। रामायण और महाभारत साकेत और उर्वशी कथा। यामा और हल्दी घाटी नई कविता की नई छटा। करुणा की आहें आँखों में आँखों से अश्रु उमड़ता हो। करुणा की आहें आँखों में आँखों से अश्रु उमड़ता हो। जन्मा करती तब ही कविता जन्मा करती तब ही कविता। जब शिवा समर में लड़ता हो जब शिवा समर में लड़ता हो। शब्दों की धार लिए नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं। शब्दों की धार लिए नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं। तब महाकाव्य बन जाते हैं कविताएं रास रचाती हैं। तब महाकाव्य बन जाते हैं कविताएं रास रचाती हैं। कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है। कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है। पाकिस्तानी आतंकी जन को गोली से मार गिराती है। कविता की अपनी अकथ कथा इधर उधर कविता कविता। कविता की अपनी अकथ कथा इधर उधर कविता कविता। करुणा से क्रोध जन्म लेता चंदा सविता कविता कविता।

0: ऐसे जन्मा करती कविता, ऐसे जन्मा करती कविता, वैसे जन्मा करती कविता, कविता ही बन जाती कविता, कविता कविता कविता सरिता, कविता ही बन जाती कविता, कविता कविता सरिता कविता, कविता से जोश उमड़ता है भर जाता बाहु बाहु में बल, कविता से जोश उमड़ता है भर जाता बाहु बाहु में बल, भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल, भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल, मकरंद बना करती कविता, मकरंद बना करती कविता, जय हिंद बना करती निर्भय, मकरंद बना करती कविता, जय हिंद बना करती निर्भय, वंदे मातरम हुआ करती, वंदे मातरम हुआ करती कविता, भारत माता की जय, कविता भारत माता की जय। मेरी अगली कविता भारत के गौरव के इतिहास पर आधारित है। ऋषियों की भूमि है यह, ऋषभ देव के पुत्र का भारत, ऋषियों की भूमि है यह, ऋषभ देव के पुत्र का भारत, राजा दुष्यंत के विजय के आनंद का भारत, भरत जैसे ही वीर भरत के भाई राम का भारत, निर्धन सुदामा के मित्रानुयायी घनश्याम का भारत, सती अनसुईया के मातृत्व के अभिमान का भारत, सती अनसुईया के मातृत्व के अभिमान का भारत, सती सावित्री के पति सतव्रती सत्यवान का भारत, अपाला गार्गी लोपा मुद्रा के परम ज्ञान का भारत, किसानों मजदूरों कलाकारों के सम्मान का भारत, यह वही भारत है जिसने गोरी गजनी के अत्याचार को देखा, यह वही भारत है जिसने गोरी गजनी के अत्याचार को देखा, यह वही भारत है जिसने नादिर तैमूरी हिंसक वार को देखा, यह वही भारत है जिसने राणा की स्वाभिमानी तलवार को देखा, यह वही भारत है जिसने शिवा की तीव्रतर खरधार को देखा, खिलजी से जली पद्मिनी के अरमान का भारत, खिलजी से जली पद्मिनी के अरमान का भारत, प्रथम राष्ट्रभक्त मंगल पांडे के सम्मान का भारत, लक्ष्मीबाई के प्राण पर बलिदान का भारत, आजाद भगत सुभाष के स्वाभिमान का भारत, यह वही भारत है जहाँ गांधी ने गोली खाया, यह वही भारत है जहाँ बंटवारों ने लहू बहाया, यह वही भारत है जहाँ बंटवारों ने लहू बहाया, यह वही भारत है जहाँ हर दल में दल दल आया, यह वही भारत है जहाँ कुछ ने खाकर गुर्राया, गंगा जमुना सरस्वती चिनाव का भारत, गंगा यमुना सरस्वती चिनाव का भारत, वाल्मीकि तुलसी कबीर नानक रसखान का भारत, मीरा भूषण निराला श्याम नारायण के यशगान का भारत, लाखों सैनिकों युवाओं के बलिदान का भारत, ऐसे भारत को कोई आंखें दिखा नहीं सकता, ऐसे भारत को कोई आंखें दिखा नहीं सकता, ऐसे भारत को सहज कोई आजमा नहीं सकता, ऐसे भारत को कोई आंखें दिखा नहीं सकता, ऐसे भारत को सहज कोई आजमा नहीं सकता, अपनों के धोखा लूट षड्यंत्रों की बातें और है, अपनों के धोखा लूट षड्यंत्रों की बातें और है, वरना मेरे भारत से कोई टकरा नहीं सकता, वरना मेरे भारत से कोई टकरा नहीं सकता।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय नंद तिवारी का काव्य पाठ, और इसी के साथ ही हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं दीप्ति चतुर्वेदी। लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए कबीर दास का ये भजन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दीप्ति चतुर्वेदी के स्वर में गीत और भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं फिल्म दीवाना के इस गीत के साथ। आवाजें हैं कुमार सानू, साधना सरगम की, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

दिल है कि मानता नहीं। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की, गीतकार फैज़ अनवर, संगीतकार नदीम श्रवण।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन का गीत, आवाज़ें थी पंकज उदास, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और एस वी बाल सुब्रमण्यम की। और कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म बलमा का ये गीत, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरल में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी

0: की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
4: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते

0: accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top three. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। भारत ने इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से चलने वाली पहली फ्लेक्स फ्यूल मुसाफिर गाड़ी का आगाज़ किया है। जुनूब मगरबी मानसून केरलम पहुंच गया है। IMD ने आइंदा 7 दिनों में केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर एक खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया घंगास और विश्वनाथ सुरेश टॉप थ्री में पहुँच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरिकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादले ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में शराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रुनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में तशद्दुद के अहद को ख़त्म कर दिया और इस खित्ते को तनाज़ों के एक मरकज़ से बदल कर मौके का मरकज़ बना दिया है। शुमाल मशरकी कौंसिल NEC के 73वें मुकम्मल इजलास में शिरकत के बाद जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि आज NEC खित्ते की तरक्की के लिए कलीदी मनसूबाबंदी के एक इदारे के तौर पर काम कर रही है, साथ ही वो लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फरोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वजीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमन व कानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़ पर तवज्जो करें, क्योंकि शोरिश पसंदी अब एक मसला नहीं रहा है। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो नई नस्लों के लिए मस्नूई जिहानत, मशीनी आमोजिश और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे की तामीर करें। जनाब शाह ने यह भी कहा कि ऊद की लकड़ी, गैर मुल्की तजारत और सेहत से मुतालिक सियाहत के शोबों में शुमाल मशरक के इम्कान तलाश करें। शुमाल मशरकी खत्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہوں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے۔ این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے، جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان، وزرائے اعلیٰ اور پالیسی ساز شامل ہیں۔ اس اجلاس سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے میزبان وزیر اعلیٰ کوناڈ کے

0: हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। यह करारदाद जंग को मुस्तरद करने के कामयाब मुजाहरे में चार रिपब्लिकन अराकीन के डेमोक्रेट्स के साथ शामिल होने के बाद 208 के मुकाबले 215 वोटों से कामयाब रही। ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात को लगाम लगाने की गरज से ऐवान के जरिए यह चौथी कोशिश है, जिसके लिए बकौल तनकीद निगारों के कांग्रेस की मंजूरी का फुकदान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक का एक निज़ाम वजा किया है ताकि इम्तिहान के अमल की सालमियत को बेहतर बनाया जा सके और असल की जगह फर्जी फर्द के जरिए इम्तिहान देने की रोकथाम की जा सके। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िदा सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इब्तदाई इम्तिहान 2026 के दौरान कामयाबी के साथ चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक के अमल को नाफिज किया। चेहरे की तस्दीक का प्रोटोकॉल इस बात को यकीनी बनाता है कि दरखास्त फॉर्म पुर करने के वक्त उम्मीदवार का जो फोटो अपलोड किया गया था वो उम्मीदवार वही है जो इम्तिहान देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ इम्तिहान देने पहुंचा है। एक भारतीय निजात दिल के इमराज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ज्ञाना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये टेली सर्जरी ग्याना में जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और इंदौर में IRCAD इंडिया के दरमियान रिमोट तरीके से अंजाम दी गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाक़े में ज़ख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने ज़ख्मी अफराद और उनके कुंबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और अहदेदारान को सभी ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाक़े में हलाक होने वालों के कुंबों को 10-10 लाख रुपये की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुनूब मगरबी मानसून आज केरलम पहुंच गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान केरलम और कर्नाटक में ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। कल माहे पुडुचेरी और कराईकल में बहुत और बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और शुमाल मशरक़ी रियासतों में बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खत्े में आज तेज़ बारिश हुई जिसके सबब गर्मी और हब्स की सूरत हाल से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आज रात हल्की और बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की है जिसमें बिजली की गरज चमक भी शामिल है। जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई शिंग को 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है, जबकि सिंगल जुमरे में PV सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम खत्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जा बंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं, जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगास 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप 3 में पहुँच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर 1 का अपना मकाम बरकरार रखा है, जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، نیز توانائی، تجارت اور

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशा। लीजिए सुनिए कुछ चुनिंदा गजलें। कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में सईद राही की ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में बशीर बद्र का ये कलाम। और लीजिए अब सुनिए अहमद नदीम काजमी की ये गज़ल। आवाज़ें हैं आशा भोसले और हुला मलिकी।

बहुत दिनों की बात है, फ़ज़ा को याद भी नहीं। ये बात आज की नहीं, बहुत दिनों की बात है। शबाब पर बहार थी, फ़ज़ा भी खुशगवार थी। न जाने क्यों मचल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा। किसी ने मुझे रोक कर, तेरी अदा से टोक कर, कहा था लौट आइए, मेरी कसम न जाइए, न जाइए।

अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज़ में शकील बदायूनी की ये गज़ल, और इसी के साथ ही कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म इज्जत के इस गीत के साथ। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार थे शकील बदायनी, संगीतकार थे नौशाद। और लीजिए अब सुनिए फिल्म एक नज़र का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ, लेकिन श्रोताओं जाते जाते एक दुखद सूचना हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। आज 4 जून 2026 को मशहूर फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी जी का देहांत हो गया। आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CBFC के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत ही यादगार फिल्में आपने दी हैं। हम पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गौरी शंकर का क्लेरिनेट वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गौरीशंकर का क्लियरिनेट वादन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।

ग्यारह बजकर 10 मिनट हुए हैं। इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5 बजकर 55 मिनट पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें